अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में सुन रहे थे प्रवर टंडन का बांसुरी वादन राग ललित में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया।

दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वे 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर 6:10 15 सेकेंड होने को हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे राकेश कुमार झा की लिखी हुई वार्ता महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।
2: महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु मानव जीवन में सुख और दुख का विश्लेषण है। उनके विचारों ने जीवन के मूलभूत प्रश्नों जैसे सुख क्या है और दुख का कारण क्या है को गहराई से समझने में हमारी सहायता की है। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन उनका दृष्टिकोण यह था कि दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रस्ताव रखा। राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा में उन्होंने यह महसूस किया कि जीवन में दुख अनिवार्य है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें सबसे पहला सत्य है दुख का अस्तित्व। उनका कहना था कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अलगाव और इच्छाओं की पूर्ति न होना, यही सब जीवन के दुख के आधार हैं। उन्होंने कहा कि दुख के बिना जीवन की वास्तविकता को समझ पाना कठिन है, क्योंकि दुख ही वह मार्ग है जो हमें आत्म जागृति और मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य में दुखों के कारणों की बात की। उनका मानना था कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा अर्थात इच्छा है। यह तृष्णा केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक इच्छाओं का भी हिस्सा है। हम जीवन में अस्थायित्व और नश्वरता के बीच संतुलन नहीं बना पाते, शायद इसीलिए हम दुख का अनुभव भी करते हैं। महात्मा बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य में दुख से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। उन्होंने कहा कि दुख का अंत संभव है और इसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं का समर्पण और मन की पूर्ण शांति। जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हम दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि इस मुक्ति को पाने के लिए आंतरिक जागरूकता और ध्यान आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को शुद्ध भी कर सकते हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग अर्थात दुख से मुक्ति का मार्ग का सिद्धांत दिया, जिनमें उन्होंने कई सारे आर्य सत्य बताए हैं। यह मार्ग हमारे लिए जीवन में संतुलन और सद्गुणों को लाने का साधन है। इनके 8 तत्व हैं। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि अर्थात सही दृष्टिकोण हो। किसी भी चीज़ के प्रति आपका जो नज़रिया हो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प सही इरादा, यानी किसी भी व्यक्ति का जो इरादा हो, जो उसके सोच हो, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी, यानी आपकी जो वाणी हो ओजस्वी हो, मधुर हो। सम्यक कर्म, आपका जो कर्म हो, जो कार्य हो, वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीविका सही जीवन यापन हो, यानी कि व्यक्ति जो अपनी आजीविका ले वो भी काफ़ी अच्छा हो। सम्यक प्रयास यानी कि सही प्रयास, व्यक्तियों के द्वारा सही प्रयास भी किया जाना चाहिए, सही दिशा में अपने कार्य को अग्रसरित करना चाहिए। सम्यक स्मृति, इसके माध्यम से हम सही ध्यान करते हैं। और अंतिम है सम्यक समाधि सही ध्यान की अवस्था। सही ध्यान की अवस्था, महात्मा बुद्ध का कहना था कि आप सही ध्यान की अवस्था में रहेंगे तो भी आप दुखों के सागर से दूर रहेंगे। इन 8 मार्गों का पालन करके हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और जीवन में अस्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह मार्ग केवल आध्यात्मिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका भी है, जो हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है।
0: चिंतन कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर।

विचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे बालकांड भाग 87।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गई। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले संस्कृत, फिर हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना अरण्या मुखर्जी के गाए भजन। आपका साथ दे रहे थे हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, सितार पर अकील अहमद और तबले पर प्रदीप महाराणा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:32 होने को हैं और ये समय है कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। और आज के गीतों भरे सफर में मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं कि छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। तो अपने आज में हम सभी को खुश रहना है।

जी हाँ श्रोताओं, ये जिंदगी भी बड़ी अजब पहेली है। कहते हैं कि जिंदगी वही है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं, या जिंदगी वो है जिससे हम किसी और के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे सामने, जैसे कि मधुबन खुशबू देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप अपने विचारों से, अपनी बातों से दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है।

कहते हैं आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त एक ऐसा खूबसूरत वक्त होता है जब हम दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं, और ऐसे में सकारात्मक सोच वो हमारे पूरे दिन को बदल देती है। तो हमें यूं ही पॉजिटिविटी के साथ रहना है।

शबे इंतजार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चराग चला दिया, कभी एक चराग बुझा दिया। दोस्तों, आपसे बात करते करते धीरे धीरे हम अंतिम पड़ाव पर आ गए कार्यक्रम के, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियमवेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट

0: इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
2: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
4: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
3: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
5: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे पूरे देश में ट्रेन चले।
3: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है।

0: महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्य उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बर्तिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हममनसब रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। 52वीं जी सरबराह 7 कर्ब कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जेवर में नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। अब खबरें।

0: तफसील से। अमेरिका और ईरान ने 107 दिन से जारी जंग खत्म करने और आबनाए हुरमुज खोलने के मकसद से एक समझौते को कतई शक्ल दी है। आबनाए हुरमुज एक तंग आबी गुजरगाह है जहां से आलमी तेल सप्लाई का पांचवा हिस्सा गुजरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल पर एक ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। इस अमन मुआहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे, जहां ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज इस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद जुमे को खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत पूरे खित्ते में अमन व सलामती कायम होगी। इस मुआहदे में अमरीका और ईरान से कहा गया है कि वो ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी और उसकी इंतहाई ताकतवर यूरेनियम के खात्मे पर 60 दिन के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि लिबनान समेत सभी महाजों पर फौजी कार्रवाई आज रात से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी आ गई है। ब्रंट खाम तेल में आज सुबह 4% की कमी वाकई हुई, जबकि अमेरिका का वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट 4.6% से भी ज़्यादा गिर गया। इधर एशिया में स्टॉक मार्केट में उछाल आया है। दुनिया के रहनुमाओं ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन समझौते का खैर मकदम किया है और इसे एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है, जिससे मगरबी एशिया में अमन की बहाली में मदद मिल सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फिको के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी स्लोवाकिया के सदर पीटर पेरेगिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद स्लोवाकिया के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रतिस्लावा पहुंचे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का एक अहम मौका फराहम करता है और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के नए मौके तलाश करने में मददगार साबित होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी ने यह भी कहा कि वह स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेगिनी और वज़ीर आज़म रॉबर्ट फिको के साथ सूदमंद मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर आज़म का इस मुल्क के लिए यह पहला दौरा है। वज़ीर आज़म की यह दौरा अप्रैल 2025 में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे के बाद हो रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात राजधानी ब्रतिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के वज़ीर खारजा जुराज ब्लेनर ने शानदार खैर मकदम किया। किसी भारतीय वज़ीर आज़म का स्लोवाकिया का यह पहला सरकारी दौरा है। ब्रतिस्लावा पहुंचने पर गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के लोगों ने नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। स्लोवाकिया के मौसीकारों ने वज़ीर आज़म के पहुंचने पर वंदे भारत वंदे मातरम की धुन बजाई। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा इस्तकबालिया दिया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज़ से स्मृति एम पलुर्ती की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू हो रही है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में G7 के सभी रुकन ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। अरकान के अलावा फ्रांस ने आउटरीच शराकतदार मुल्कों की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में भारत, ब्राज़ील, मिस्र, केनिया, जनूबी कोरिया, कतर, सऊदी अरब, मुल्क शाम, यूक्रेन और मुत्तहदा अरब अमारात को भी मदऊ किया है। ये 13वां मौका होगा जब भारत एक शराकतदार मुल्क की हैसियत G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की शिरकत से आलमी जुग्राफियाई सियासत में भारत का अहम रोल उजागर होता है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब दुनिया को जुग्राफियाई सियासी कशीदगी, माशी गैर यकीनी सूरतेहाल और नई टेक्नोलॉजी की तेज़ी से इर्तका के चैलेंज दरपेश हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जैसे ही इजलास शुरू होगा तो आलमी अदम तवाज़ुन को कम करना मेज़बानी करने वाले मुल्क की G7 सदारत सबसे अहम तरजीह बन जाएगा। सरबराह कॉन्फ्रेंस के सरकारी फ्रेमवर्क के मुताबिक G7 के रहनुमा जुग्राफियाई सियासी चैलेंजेस, बैन अलाक्वामी अमन और सलामती, बाहमी इख्तिसादी तरक्की और अहम आलमी बहरान पर तबादले ख्याल करेंगे। ये तबादले ख्याल बंद कमरों में होंगे जो आज से शुरू हो रहे हैं। सरबराह इजलास में भारत की शिरकत आलमी जनूब की तरजीहात और तशवीश को उजागर करने के लिए एक मौका फराहम करेगी, जबकि अहम आलमी मसाइल पर भी मुजाकरात होंगे। फ्रांस से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में वाक़ नोएडा

0: अक्वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं। जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए पहली परवाज ने थोड़ी देर पहले उड़ान भरा। इस परवाज में एमएलए धर्मेंद्र सिंह 20 खवातीन समेत 172 किसानों के साथ हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए हासिल की गई थी। लखनऊ पहुंचकर ये किसान वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इंडिगो एयरलाइन की पहली परवाज लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट के लिए सुबह 7:05 पर रवाना हुई। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली बाकायदा कमर्शियल परवाज चलाई जाएगी।
1: यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का इफ्तिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी तकरीबन 3300 एकड़ जमीन हासिल की गई है। पहले मरहले में 1,20,00,000 मुसाफिरों की सलाहियत वाले इस एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में 22,50,00,000 मुसाफिरों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी रियासतों के लिए एक नई हवाई कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो की परवाजें लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज्यादा शहरों के लिए शुरू होने वाली हैं। दीगर एयरलाइंस की परवाजें भी जल्द शुरू होंगी। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए हवाई अड्डे से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें 90 जनरल और 10 डबल डेकर बसें शामिल हैं। लखनऊ से खबरनामे के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
0: इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट तिब्बी तालीम के दाखिले के लिए नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की सरकारी वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराए जाएंगे, जो दोपहर 2 से शाम 5:15 तक होंगे। एनटीए ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते की तफसीलात की तस्दीक करें। उसने उम्मीदवारों को यह भी मशवरा दिया है कि वह हिदायत पर अमल करें और साथ ही इतिलानामे पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। भारत में पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के वसूलों पर मबनी काबिले ज़िक्र तब्दीलियां हुई हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदामात किए गए। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के मौजू के उन्वान से एक खसूसी फीचर नशर कर रहा है। आज हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के तसव्वुर के साथ जदीद बुलंद ढांचा तामीर करने के सरकारी इकदामात पर नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: किसी मजबूत और जदीद मुल्क की तामीर आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे पर मबनी होती है। पिछले 12 साल में भारत ने यकसर तब्दीली का एक बेमिसाल सफर तय किया है, जिसके तहत बुनियादी ढांचे पर सरकारी अखराजात में 6 इजाफा किया गया है। इस तरह 2014-15 ये अखराजात 2,00,000 करोड़ रुपए के थे, जबकि रवा माली साल में ये अखराजात 12.2 लाख करोड़ रुपए के हो गए। मुल्क के शहरी ट्रांसपोर्ट में एक इनकलाब लाया गया। भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क को तकरीबन 5 तौसी दी गई। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली की अलीशा ने, जो दिल्ली मेट्रो से रोज़ाना सफ़र करती हैं, अपने सफ़र के तजर्बे के बारे में बताया।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत में आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। कौमी शाहराह नेटवर्क में इजाफा करके इसे 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। रेलवे के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां नुमाया हैं। भारतीय रेलवे से मुतालिक बजट में तकरीबन 9 इजाफा कर दिया गया है, जिससे इस पूरे नेटवर्क में जदीदकारी की गई है और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात मुहैया की गई हैं। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए लखनऊ से वंदे भारत की एक मुसाफिर पूजा ने कहा कि ये ट्रेन बहुत आरामदेह है, जिससे वक्त की भी काफ़ी बचत होती है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि सफर करने में टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे भी पसंद आए, क्योंकि इसकी वजह से यात्रियों की सुरक्षा बनी रहती है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। 19वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। शाम को मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में

0: फिल्म फेस्टिवल की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद होगी, जबकि सुबह से ही फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। इस साल मुकाबला जाति जुमरे में 52 बैनुल अक़वामी और 92 कौमी फिल्मों में समेत कुल 144 फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 13 मुल्कों के फिल्म साज फिल्म फेस्टिवल में नुमाइंदगी कर रहे हैं। गैर मुकाबला जाति जुमरे में शिरकत करने वाले 46 मुल्कों की 106 बैनुल अक़वामी फिल्मों और 96 कौमी फिल्मों समेत कुल 202 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। फौजदारी तहकीकती महकमे ने तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक बैनर्जी से 9 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के जाली दस्तखत के एक केस में उनकी मुबैना तौर पर मुलविस होने के सिलसिले में की गई है। बर्मिंघम में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के पहले मैच में भारत ने कल रात रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा था, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 17 ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे, जिसमें स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आकाशवाणी की खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नष्ट होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे योगा से मुतालिक प्रोग्राम नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन सेहत और योगा से मुतालिक इस मौजू पर अपने सवाल टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 011-233-1048-1 011-237-1116-1 1-2-3-7-1-7-1-0-6। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस को अहमियत के साथ शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने आलमी सरमायाकारों मुहक्किकीन और सनअतकारों को भारत के साथ मिलकर काम करने की दावत दी। भारत के खलाई शोबे में नुमाया तब्दीली, ये हमारे कौमी शऊर का अहम हिस्सा बन चुकी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अमेरिका और ईरान फौजी कार्रवाई खत्म करने, आबनाए हुरमुज खोलने और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रतिस्लावा में स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे। 52वीं G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस आज फ्रांस के शहर इवान में शुरू होगी। वज़ीर आज़म मोदी कल आउटरीच सेशन में शिरकत करेंगे। जौर में नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आज सुबह कमर्शियल परवाजें शुरू हो रही हैं। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। ये इम्तिहानात इस महीने की 21 तारीख को होंगे। और क्रिकेट में बर्मिंघम में एजबेस्टन में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नदीम अहमद खां का गाया राग अलहिया बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आपने सुना नदीम अहमद खां का गाया राग अलहिया बिलावल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम अवर गेस्ट। आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे है। ये दिन हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। आइए आज इस विशेष अवसर पर सुनते हैं श्री यानिन अवाना से बुजुर्गों के अधिकार पर बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे हैं श्री नितिश अरोड़ा।

कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे राग बहादुरी तोड़ी। कलाकार होंगे जयाश्री पटनाकर। महिला कार्यक्रम का समय रहेगा घर आंगन दिन में 12:10 पर। दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे हिंदी फिल्म सुजाता के कुछ गीत। समाचार सुने जा सकते हैं दिन में 2:00 हिंदी में और 2:15 पर अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा। एक ही कलाकार आज इस कार्यक्रम में आमिर खान पर फिल्माए कुछ गीतों का संकलन होगा जिसे आप सुन सकते हैं। समय रहेगा दिन में 2:30 पर। उर्दू मजलिस कार्यक्रम कहकशा सुना जा सकता है दिन में 3:30 पर। 4:15 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंजनी 5:10 पर और हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी होगा 5:30 पर। तो ये थे आज हमारे दिन में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 9:30 हुए जाते हैं। ये वक्त है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके मैं हाजिर हाँ हरजीत कौर। अज दे प्रोग्राम च असी तुहानू डॉक्टर जसविंदर कौर बिंदरा दी वार्ता सुनवावांगे, ना को बैरी नहीं बेगाना ते शब्द सरवण करांगे। श्रोतियो, अज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी विश्व बुजुर्ग माड़ा व्यवहार जागरूकता दिवस है। ये दिन हर साल 15 जून नूं मनाया जाता है। इस दिन का मुख मकसद बुजुर्गों नाल होण वाले शरीरक मानसिक ते आर्थिक माड़े व्यवहार ते बुजुर्गों की अणगहली बारे सारे विश्व के लोगों नूं जागरूक करना है। अजकल तुसी वेखते ही हो तकरीबन घरां च बुजुर्गों नाल माड़ा व्यवहार हो रहा है। उन्हां दे बच्चे पुछ गिछ नहीं करते, कल्ले रहिंदे बुजुर्गों की सुरक्षा का भी सवाल है। ये समस्यावां सिर्फ भारत देश च ही नहीं हन, सारे संसार के बुजुर्गों नाल किते ना किते वितकरा ते माड़ा व्यवहार हो रहा है। इस दिन नूं मनाउण दा मकसद समाज दा ध्यान इस विषय वल दोणा है। बुजुर्ग साडे लई माणयोग हन, इन्हां ने सानूं जन्म दिता, पालना कीती, आत्म निर्भर बनाया ते अज कुछ घरां च बच्चे भी उन्हां नूं शरीरक तौर ते मार कुट रहे ने जां मानसिक परेशानियां दे रहे ने। उन्हां दीआं बुनियादी लोड़ां तां पूरियां करदे नहीं, उन्हां दी जायदाद ते नज़र है। ये गल्लां अज तकरीबन हर घर च हो रही ने। सोचणयोग गल ये भी है कि उम्र वधण दे नाल नाल बीमारियां ते शरीरक दिव्यांगता भी वधदी है ते अजिहे बुजुर्गां नूं वधेरे सुरक्षा ते वधेरे देखभाल की लोड़ हुंदी है। इहदे लई लोकां नूं सुचेत करना ही काफ़ी नहीं, मजबूत कदम चुके जाण दी लोड़ है जिहड़े बुजुर्गों नाल हुंदे माड़े व्यवहार नूं रोक सकण, ताकि बुजुर्गों का माण हक ते आज़ादी कायम रह सके ते सेहत सेवावां अते चंगी खुराक मिलती रहे। सानूं अपने पद्धर ते भी घर च रहिंदे बुजुर्गों का आदर ते देखभाल करनी चाहीदी है। कल नूं असी भी ते बुजुर्गों की श्रेणी च आउणा है ना, फिर आसे पासे जे कोई बुजुर्ग इकल्ले रहिंदे ने ते उन्हां नूं थोड़ा समां दे दईए तां इह बहुत वड्डी सेवा होएगी। कहिंदे ने जिन्हां ने वड्डे ताए उन्हां कदी ना सुख पाए, इह गल सही है, पर असीं अजिहा करिए कि इह गल साडे ते लागू ना होवे। बुजुर्गां दी कीती सेवा बिरथी नहीं जांदी, सगों असीसां ही मिलदियां ने। ते हुण असीं तुहानूं सुणवा रहे हां इक वार्ता, ना को बैरी नहीं बेगाना। वार्ताकार ने डॉक्टर जसविंदर कौर बिंदरा।
1: इस ब्रह्मांड विच विचरदे अनेका वर्तारे, आकाश गंगा, ग्रह नक्षत्र, सूरज चन्न, तारे ही नहीं, विशाल धरती ते कुदरत दा आनंद पसारा एक शक्ति अधीन चलदे होए कदे अपने नेम तो परे नहीं जांदे। इसे करके लखां करोड़ां सालां तो यह सृष्टि अपने आप ही चलते हुए विद्यमान है। यह सब कुछ अणकहे ते अणलिखित नियमानुसार जारी है। सारा ब्रह्मांड एक अनुशासन अधीन अपने कार्य ही जुटिया होया है। किसी नूं किसी दूजे नूं ना कुछ कहण दी लोड़ पैंदी है, ना मंगण दी ते ना ही विरोध करन दी, क्योंकि यह सारा वर्तारा अपने आप ही मगन है, लीन है। उस नूं सर्वव्यापी शक्ति ने जो भी कार्य सौंपिया है वह लखां सदियां तो उसे नूं पूर्ण करन दे आहर विच लगा होया है। असी कदे पढ़िया सुनिया है कि चन्न ने सूरज नाल लड़ाई करके उसनूं कहा होवे, तू मेरे तो वड्डा क्यों है, तू दिन वेले क्यों हुंदा है ते मैं रात वेले क्यों। किसे ग्रह नक्षत्र ने एक दूजे नूं कहा होवे, तैनूं मेरे तो वड्डा मनिया जांदा है, फलाने नूं शुभ मनिया जांदा है ते मैनूं नकारिया जांदा है। ये छड्डो, इन्हां तक मनुखी पहुँच संभव नहीं, पर साडी धरती ते दिसदे कुदरती नज़ारे, दरिया, पहाड़, बनस्पति, फल, बूटे, कदे किसे ने दूजे नूं देख के कदे तनज नहीं कसिया, कदे सुंदरता या बहुती समृद्धि देख के ईरखा नहीं कीती, सब अपनी मौज विच खुश, दूसरे तो बेपरवाह, पर जान बुझ के किसे दे काम विच रोड़ा अड़ाण या काम खराब करन बारे सोचते भी नहीं। आखर है तो वह भी जिंदा धड़कते जिया वाग साडे वाग। इस सारे बरतांत नूं जान के तुरंत कहा जाएगा कि साडे मनुखां विच ये बेपरवाही, मौज विच रहना ते अपने काम विच लीन रहन की कमी क्यों दिसदी है। इत्थे दा लोग एक दूजे नूं देख के सुखांदे नहीं, हर कोई दूजे तो अगे निकलण दी होड़ विच रहिंदा है। हर दूजा बंदा अपने आप नूं श्रेष्ठ समझदा होया दूजियां नूं नीवा दिखाण दे यतना विच रहिंदा है। अनेकां सदियां तो धरती उत्ते मनुख नां दे जी दी आमद रही, कई युग बीत गए, पर बंदे अंदरों दूजे प्रति ईरखा दी भावना, दूजियां तो अगे वधण ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਧਨ ਸੰਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ, ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਤੋੜ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ, ਤੂਫਾਨ, ਮੌਸਮ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹਨ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

पर यह दुनिया चल रही है, सृष्टि ते कुदरत आपो अपने राह ते तुर रहे हैं। इसका की कारण हो सकता है? दुनिया के गर्क हो जाने के बावजूद बंदे अंदर जीण की इच्छा खत्म नहीं होंदी। वह बहुत मुसीबत परेशानियां त्रासदियां ते विपतावां के बावजूद मरना नहीं चाहता, जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। भावें कोई सुखी होवे भावें दुखी, लोग जीण नूं ही तरजीह देंदे हन। इंसानियत का कुछ ना कुछ अंश जरूर मौजूद रहिंदा है। ये दुनिया इसे करके कई सदियां ते युगां तो चल रही है, जिस विच मनुख की मनुखता बहुत अहम भूमिका निभाती है। जो इस गल उत्ते यकीन रखती है कि दुनिया चार दिनों का मेला है, इत्थे किसे सदीवी नहीं रहना, फिर कद दा झेड़ा झगड़ा, जो कुछ करन नाल किसे दा भला हो जाए उही चंगा है। गुरबाणी दी सुख ना को बैरी नहीं बेगाना जे भाव नूं असे अनेकां वार देखदे आए हाँ। जे गल करिए गुरु नानक दी, तो उन्होंने पिता वल्लों कारोबार लई दित्ते पैसिआं नाल भुखे गरीब साधुआं नूं बिना उन्हां दे कहे ते मंगे उन्हां दी हालत देख के आप ही उन्हां नूं भोजन खवाया। गुरु नानक भोजन खवाण तो ना पहला ना बाद विच उन्हां तो धर्म जात पुछिआ। उन्हां दी नज़र विच उह भुखे गरीब साधु सन जिन्हां नूं उस वेले भोजन की लोड़ सी। बाद विच जदों गुरु जी एक अजिही थां उत्ते पहुँचे जिथे पहले ही बहुत सारे तांत्रिक ते पहुँचे हुए साधु सन, उन्हां सारयां ने गुरु जी नूं दुध दा भरिया प्याला भेजिआ, जिसका अर्थ सी कि इत्थे तुहाडे जे फकीर लई थां नहीं, ये पहला ही अनेकां गुणी जनां नाल भरिया होया है। गुरु नानक ने उस भरे प्याले उत्ते फुल रख के उस नूं वापस भेज दिता ते यह संदेश दिता कि मेरा किसी ना कोल वैर विरोध नहीं, मैं अपने मार्ग उत्ते चलण लई आया हाँ। कहा जा सकता है कि वह तो गुरु सन, उन्हां विच वडियाई सी, जाणी जाण सन, पर आम बंदियां विच यह सब कित्थे देखण नूं मिलता है? याद करिए तो देखांगे बिजली, टैलीफोन, साइंस, पुलाड़ ते तकनीक की खोज करन वालियां ने कदे ये नहीं सोचिया कि इस खोज नूं वरतण दा हक सिर्फ उस दे देशवासियां या उस दे धर्म कौम वालियां नूं है। दुनिया की तरक्की लई हुंदियां सारियां काढ़ां ते खोजां नूं सारी दुनिया के लोग अपनाउंदे ते वरतदे हन। कई बार जिस ने उह काढ़ कीती हुंदी है उस नूं जींदे जी ये सब लाभ फायदे देखण नूं भी नहीं मिलता कि उसने की करामात कर दिखाई है। ये काढ़ां ते खोज करन वालियां लई सारे बराबर हैं, कोई विशेष नहीं। जिस समाज विच असी रहिंदे हाँ उत्थे कदम कदम ते साडी रोज़ाना जिंदगी नूं सवारन वाले अध्यापक, डॉक्टर, दुकानदार, कारीगर साडे आस पास ही मौजूद हुंदे हन, जो बिना किसे जाण पछाण दे भी अपनियां सेवावां प्रदान करदे हन। किधरे कोई अपवाद मिल भी सकदे हन, पर वड्डे पद्धर उत्ते रेल, बस, मैट्रो, हवाई जहाज़ दे चालक या होर सेवा प्रदान करन वाले उन्हां नूं सौंपे गए कर्तव नूं निभांदे हन, भावें नौकरी वजों ही सही। उस कारज विच किसे नाल वैर विरोध कढ़न दे उपराले नहीं हुंदे। इसका सब तो वड्डा उदाहरण मनोरंजन जगत ते खेडां दे रूप विच देखिया जा सकता है। किसे चंगे खिडारी दी खेड नूं सारी दुनिया दे लोग मानते हन। उस वेले कोई वैर भाव, जातिगत भावना मूहरे नहीं रहिंदी। अपने ही देश दे खिडारियां दे नाल दूजे देशां ते होर खेडां दे खिडारियां लई खुश हो के ताड़ियां मारियां जांदियां हन। इस तरह ही फिल्मां, टीवी, ग्लैमर जगत दीयां हस्तियां ते कलाकारां नूं खुले मन नाल सराया जांदा है। बिना किसे भेदभाव, उम्र, खेतर दे गाण वालियां दे सुरीलेपन नूं माणिया जांदा है। कलाकार, चंगे शायर, सुरीले गायक गायिकावां नूं माणन दा हक सारियां कोल हुंदा है। देशां दीयां सरहदां उत्ते रोक हो सकदी है, पर प्रशंसकां दे दिलां अंदर वसण तों किसी कलाकार नूं किसे तरह नाल रोकिया नहीं जा सकता। वैसे भी जदों दा नैटवर्किंग ते सोशल मीडिया दा दौर शुरू होया है, मनोरंजन, ग्रैमर, फैशन, खेडां सब दा दायरा सारे हदा बन्ने टप चुका है। करोना काल विच संकट दे बिपता दी मारी सारी दुनिया ने मानवता दे कई रूप देखे। लोकां ने अपनी समर्था अनुसार लोड़वंदां दी सहायता, अनाज, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडरां ते होर चीज़ां दे के ही नहीं कीती, सगों अनेकां ने बिना किसे डर ते खौफ दे सस्कार भी कीते। इंसानियत दा वड्डा चेहरा ज़्यादातर मुसीबत ते बिपता संकट वेले देखण नूं मिलदा है। जंग वेले वड्डियां संस्थावां, NGO, विभिन्न देश ते निजी पद्धर उत्ते लोग मदद दा हथ अगे वधाउंदे हन। अजे वेलियां उत्ते मानवता दा ओह रूप देखण नूं मिलदा है
ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ

शब्द गायन कर रहे सन भाई हरजिंदर सिंह रागी ते उन्हां दे साथी। इस शब्द दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। अगले प्रोग्राम च फिर मिलांगे। हुण हरजीत कौर तुहाडे तों इजाजत चाहुंदी है।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी की महक। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 10 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मूज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मूज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होर्मूज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों

0: देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The United States and Iran has finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Kaumudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
2: UN Secretary General Antonio Guterres has welcomed the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, reopening of Strait of Hormuz, as well as a framework for further negotiations. Secretary General spokesperson Stefan Zurich said that this represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also

संदेशों का सिलसिला पूरी तरह से शुरू हो चुका है। जो पहला संदेश मुझे अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी का, और इन्होंने अपनी पसंद हमें भेज दी है। हरजिंदर सिंह का संदेश हमें न समझ में आता है, कहते हैं कि आदरणीय उद्घोषक जी सप्रेम नमस्कार, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जमशेदपुर से लिखने वाले हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया।

आपकी पसंद के आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नवीन सक्सेना। ढेर सारे ईमेल इस समय हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मालियान सरधाना मेरठ से, अनिल जैन और साथ में संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन, इनका संदेश हमें मिल चुका है। राजेंद्र नारंग का संदेश हमें मिला है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से। राजेंद्र नारंग, अंशु नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग और उनके सारे बहुत सारे साथी हैं। मोहम्मद अब्बासी ये लिखते हैं हमें ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अवान और उनके ढेर सारे साथी जो हैं इस कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आप सबके लिए उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

आप इस समय सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद, जो बेस्ड है आपके अपने ईमेल पर। आदरणीय उद्घोषक जी नमस्कार, किसी भी गीत में हमारे नाम शामिल करें। ये लिखने वाले हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और इनके साथ हैं भाई सुच्चा सिंह। बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ इन्होंने हमें ये मैसेज लिख कर भेजा है। दीपेश वर्मा का खत और ईमेल हमें मिल चुका है, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का

ऋजु मल्होत्रा का संदेश भी हमारे पास आ चुका है। संदीप मक्कड़ ये लिखते हैं कि हमारा नाम ज़रूर शामिल कीजिएगा और गीत चाहे कोई भी सुनवा दीजिएगा। देखिए, गीत भी आपके पसंद का होता है और नाम भी आपकी पसंद के होते हैं, और कोशिश करते हैं कि उन तमाम गीतों को हम आपको सुनवा सके जो आप हमें भेजते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, तेरे ना होने का मुझको मलाल एक तरफ, तेरे ना होने का मुझको मलाल एक तरफ, तू मेरा क्यों ना हुआ ये सवाल एक तरफ, यकीन मान मैं खुश हूँ मगर तू जब संग था, वो पल वो दिन वो महीना वो साल एक तरफ। देखिए एक बार फिर हमारे पास ढेरों ईमेल आ चुके हैं, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, देवी कव्या और जस सिंह।

गुलाब पर ये चटक रंग चढ़ेगा भला कैसी। मैं बैठा सोचने रख के गुलाल एक तरफ, जहां भर के है मंजर मेरी नजर में, मगर उस एक शख्स का दिल में ख्याल एक तरफ। हजार शिकवे शिकायत तुझे है मुझसे, मगर वो कुछ दिनों की तेरी देखभाल एक तरफ। खूबसूरत संदेश हमारे पास आ चुका है एक विचार के साथ। ये लिखने वाले हैं हमें चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। कहते हैं कि जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग हैं। बहुत सुंदर बात लिख के हमें भेजी है, और हम भी कोशिश करते हैं कि अपने गीतों से आपको खुश रखें, ताकि आपका दिन बिल्कुल बिल्कुल सीधे तरीके से, शांत तरीके से गुजर जाए मुस्कुराहट के साथ। लिखने वाले हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और उनके साथ ही परिहार साहब का हमें संदेश मिल चुका है। कहते हैं कि हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, किसी भी गीत में फरमाइश शामिल कीजिए, एक से बढ़कर एक बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं। लिखने वाले भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहार। सुदर्शन मुखी का संदेश हमें है, साथ में है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, और ये लिखा है इन्होंने शांति नगर सोनीपत से। आदरणीय नवीन सक्सेना जी, सादर प्रणाम। क्या बात है, आपने वो ही अपने वो ही होते हैं जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में भी साथ खड़े होते हैं। बहुत सुंदर बात आपने लिख के भेजी है। कार्यक्रम AKP यानी आपकी पसंद में कृपया ये गीत ज़रूर सुनवाएं। बिल्कुल आपकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। आप इतने दिलदार तरीके से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप मन लगा के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो बनता है ना कि हम आपकी पसंद का गीत ज़रूर सुनवाएं।

अगले आधे घंटे तक आपकी भी रेडियो से नजरें नहीं हटेंगी, आप रेडियो को देखेंगे भी और रेडियो को सुनेंगे भी, क्योंकि तमाम खूबसूरत गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपके संदेशों के साथ। लिखने वाले हैं तुलसी मस्कीन और ऑफिस में सुन रहे हैं लवली गज़ल होश वालों को, बहुत खूब लिखने वाले हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा चंडीगढ़ से ये ईमेल हमें भेजा है राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना ने। संदीप मक्कड़ का संदेश हमें मिल चुका है, ज्योति मक्कड़, बन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कहाँ से लिखा है इन्होंने, जालंधर पंजाब से इन्होंने हमें ये संदेश भेजा है। गुलाब दास मानिकपुरी लिखने वाले हैं और लिखते हैं कि नवीन जी नमस्कार, नमस्कार, आगे लिखते हैं कि नज़र की इलाज, नज़र का, देखिए का लिखना चाहिए, नज़र का इलाज तो हो सकता है लेकिन नज़रिए का इलाज संभव नहीं। बिल्कुल बहुत सही बात, बिल्कुल, हर किसी का सोचने का, देखने का, समझने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, और अपने तरीके से सोचिए और फिर जैसा आप सोचेंगे ना और वैसे ही आपको नज़र भी आने लगेगा। बहरहाल लिखने वाले हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, साथ में हैं राजा दास और रानी मानिकपुरी। अगला संदेश हमें मिला है अहमद साहब का, कहते हैं आदाब नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, हमें निराश और नज़रअंदाज मत करना। बिल्कुल हम आपको निराश और नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका मेल हमने शामिल कर लिया है, कार्यक्रम आपका है तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं। नमस्कार लिखने वाले हैं कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, कहते हैं कि हमारा मेल जो है शामिल कर लीजिए। मोहाली से लगता है इस समय सभी लोग हमें चंडीगढ़ में ज़्यादा सुन रखे हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिखने वाले हैं जी जी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा।

प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप सिंह। भवानी प्रसाद मिश्र का एक कथन है जिसे मैं आज आपके साथ बांटना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतने सोच समझ कर बोलोगे चलोगे, कभी मन की नहीं कहोगे, सच को दबाकर झूठे प्रेम के गाने गाओगे, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बंजर हो जाओगे।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं आपकी पसंद के गीत जो हमें मिलते हैं ईमेल के थ्रू। फिलहाल इस समय हमें जो ईमेल मिला है वो है सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, करुला और मुरादाबाद से अयूब खान का। लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ का लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी पसंद संगीत और मधुर प्रस्तुतियों का एक ऐसा सुंदर संगम है जो श्रोताओं के मन को आनंद और नई ऊर्जा से भर देता है।

है। कार्यक्रम में मनभावन गीत होते हैं, आकर्षक प्रस्तुति होती है जो दिन भर की थकान को दूर कर मन में ऊर्जा का संचार करती है। और पूरी टीम को इस शानदार कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई, आपको भी बधाई, क्योंकि गीत वही होते हैं जो आपकी पसंद के होते हैं और आपकी पसंद के गीत इतने खूबसूरत होते हैं कि दिन भर आपका दिन बना देते हैं। संतोष भाकरे, सुनैना भाकरे और सुकन्या सविता भाकरे लिखने वाले हैं शाहजी नगर देगलूर ज़िला नांदेड़ महाराष्ट्र से। आपका मेल हमने शामिल कर लिया है। संजी धैया का हमें मेल मिल चुका है, राशिद हुसैन का मेल है। इसके अलावा एक और मेल इस समय जो हमारे पास आ रहा है वो सीताराम कांगड़ा का है, एकता कॉलोनी रोहतक से। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, नमस्कार जी, हमारी पसंद का गीत सुनवा दीजिए। राशिद हुसैन जी का हमने मेल शामिल कर लिया है। रमेश चंद्र कांबड़े साहब ये लिखते हैं, सादर नमस्कार, लाजवाब गीतों का लुफ्त ले रखे हैं, कृपया हमें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए। बनाया ना हमने आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा कांबड़े साहब, साथ में है करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। लगातार एक के बाद एक संदेश हमें आ रहे हैं, अगर किसी का संदेश मिस भी होता है तो चिंता मत कीजिएगा, बहुत सारे आज आकाशवाणी के दिन भर के ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें आपका नाम शामिल हो सकता है। सप्रेम नमस्कार, कोई गीत हमें सुनवा दीजिए। छत्तीसगढ़ पलारी से लिखने वाले हैं प्रकाश, प्रिंस, निखिल और यशस्वी वर्मा। एसएम जावेद का संदेश हमें लग रहा है सामने, और ऐसे लगते हैं सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है हमारा, ऐसा कैसे हो सकता है, सब सामने हैं और जो नहीं सामने हैं वो आपके दिल में बसे हुए हैं, अकेला मत समझिए। और हाँ, कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो रेडियो का वॉल्यूम तेज़ कर दीजिए, हम हैं ना जावेद साहब आपके साथ। लिखने वाले हैं गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता और अंजुम। सीताराम कांगड़ा जी का संदेश हम पढ़ चुके हैं, देखिए बार बार आप हमें मेल करेंगे लगातार तो जो मेल हम पढ़ना चाहते हैं लोगों के वो मिस हो जाते हैं, तो जिनका नाम हम पढ़ चुके हैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेल मत कीजिए। नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन, ये लिखने वाले हैं मांगेराम जी। नवीन सक्सेना जी, सभी श्रोताओं के ईमेल कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, किसी को निराश नहीं कर रखे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे ईमेल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कैसे आपके ईमेल को हमने नज़रअंदाज किया, देखिए पढ़ रहे हैं ना, हमारा ईमेल नींद में है क्या, हमारे ईमेल इतनी, बहुत अच्छा ईमेल आपने लिखा है और बहुत अच्छे गीत की फरमाइश की है, ज़रूर हम आपके गीत को शामिल करेंगे आप सबकी पसंद पर। ये एक और खूबसूरत गीत, इसीलिए सीधे आपको हम पहाड़ों में लिए चलते हैं।

शायरों का अंदाज भी क्या खूब है, जब उनकी कलम चलती है तो न जाने क्या क्या लिख जाते हैं। देखिए ना, लिखते हैं कि मैं चांद तो तोड़ कर लाने से रहा, अगर वो जिद करेगी तो मैं आईना ला दूंगा। कितनी खूबसूरत बात कही है। एक और शायर साहब है, वो लिखते हैं कि कोई गजल सुना कर क्या करना, यूं बात बढ़ा कर क्या करना, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना। वाकई आपकी पसंद आप हमारे हैं, आपकी पसंद हमारी है, ये दुनिया को बता के हमें क्या करना। लेकिन हाँ, आपका नाम आपकी पसंद आप तक पहुँच जाए इतना तो हम बता ही सकते हैं ना। सिसपाल वरदान ये लिखते हैं गाज़ियाबाद से, इनका ईमेल हमें मिल चुका है। अनुज वर्मा का ईमेल इस समय मुझे अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। साथ में है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा और इनके बहुत सारे साथी जिन्होंने संदेश हमें लिख के भेजा है। अगला संदेश हमें मिला है किशन वजनानी का, इनका भी संदेश हम शामिल कर रहे हैं। रुपेश संघाई का हमें संदेश मिल चुका है महाराष्ट्र से, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश इनके साथ में है और इनका पूरा परिवार। अगला संदेश हमें है मुकेश कश्यप का, ज़िला मुरादाबाद से। सोनू कश्यप साथ में है, राजपाल, पंकज, काजल, सीबा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी और इनके बहुत बहुत बहुत सारे साथी। हीरामन शेंडे का हमें संदेश है।

देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखते हैं। कहते हैं कि हमारे शब्द से कितनी ऊर्जा है कि वो हमारे भाग्य निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। जब हम दूसरों को तकलीफ देने के लिए या उनका अपमान करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इस तकलीफ और अपमान की ऊर्जा हम तक गुणों को हमारे वापस ले जाती है और वैसे ही स्थिति का निर्माण होता है। आते हैं शब्द नाप तोल कर ही बोलिए। सही बात है, शब्द नाप तोल कर ही बोलिए। लिखने वाले हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ गुंडाड़े। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की है। जब भी इनके संदेश हमें मिलते हैं, कोई ना कोई ऐसा शब्द, कोई ना कोई ऐसा विचार होता है जो हम अपने दिल में उतार लेते हैं। अगला संदेश हमें मिला है सोनम अली फातिमा अली का, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। याकूब कुरैशी का हमें संदेश मिल चुका है। पीएस नावकर, ये है नावकर हैं, लिखने वाले नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। इनके साथ हैं निर्मला नावकर, विशाल नावकर, सोपान और नारायण इंगले। इन्होंने हमें संदेश भेजा है। भारत भूषण का हमें संदेश मिल चुका है। लिखते हैं कि सुना है कि आज समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती वाले जिधर तूफान आया है।

इस समय आपके शहर का मौसम कैसा है आप ही जाने, लेकिन दिल्ली के स्टूडियो में जहां हम बैठे हैं वहां से अगर बाहर देखें तो मौसम वाकई ही आशिकाना है। सुबह से ही आज हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं जो कह रहे हैं, जनाब घर से निकलिए, जरा बाहर देखिए कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, कितने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपने दोस्त नवीन सक्सेना के साथ। लिखने वाले हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, इनका संदेश हमने शामिल कर लिया है। अगला संदेश मुझे नज़र आ रहा है बोधराज खोरवाल खोरवाल साहब का, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। बोधराज जी, जब भी आप हमें संदेश लिख के भेजते हैं, सिर्फ आप फिल्म का नाम भेजते हैं और अपने नाम भेजते हैं, आप कभी कभी अपने विचार भी तो हमारे साथ साझा कीजिए ना, हमें भी तो पता चले कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए ना, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। ये लिख रहे हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती वर्मा, विनीता और रुद्र वर्मा। लालगिरी साहब का संदेश हमें मिल चुका है, रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से। कार्यक्रम पेशकर्ता जी आदरणीय नमस्कार, हमें आपका कार्यक्रम पसंद आ रहा। देखिए, हर किसी के संदेश में एक बात तो कॉमन होती है कि हमें आपका प्रोग्राम, हमें आपका कार्यक्रम पसंद आ रहा है। कार्यक्रम देखिए आपका है, आपके खूबसूरत पसंद है, आपके खूबसूरत गीत हैं, तो अगर कार्यक्रम अच्छा है तो भी आपके लिए है, और अगर थोड़ा बहुत बुरा है ना तो वो हमारी वजह से है। बहरहाल मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, ये मध्य प्रदेश से हमें इन्होंने लिख भेजा है संदेश, और ज़िला कहाँ का था ये नहीं भेजा है। साबरी साहब का मैसेज हम पढ़ चुके हैं, सुभाष योगी जी को हम पढ़ चुके हैं। एक और संदेश मुझे इस समय नज़र आ रहा है नीटू मल्होत्रा का। नीटू मल्होत्रा जी लिखते हैं, नमस्कार जी, आपको हमारा नमस्कार। लगता है आप हमें शामिल नहीं करेंगे, क्यों आपको शामिल क्यों नहीं करेंगे भाई, इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, इतने खूबसूरत संदेश हैं, बस आपको हमारे इस कार्यक्रम को पूरा सुनना है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपका नाम ज़रूर आएगा ना। लिखने वाले हैं खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, डुग्गू भावी सिक्का। देखिए, हमने आपका संदेश पढ़ा ना, तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं। और भी बहुत से संदेश हमारे पास आ रखे हैं। आर कुमार साहब का, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, आपका संदेश भी हमने पढ़ चुके हैं। डोल जियो एल राना, अब डॉल राना है, नमस्कार, गाने और प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन लग रहा है। जी बी राना, नेहरू विहार दिल्ली से, तो दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, देश का कोई भी कोना हो, अगर संदेश आ रहा है तो संदेश पढ़ा जाएगा, संदेश कैसे भूला जाएगा, है ना। देखिए, आप ही के संदेश हैं, आप ही का प्रोग्राम है, आप ही का कार्यक्रम है, हम तो एक बीच की कड़ी हैं जो आप तक आपकी पसंद के गीत पहुंचा देते हैं। तुम आना दशक बाद मुझसे मिलने के लिए, एक मैं ही तुम्हें बता पाऊंगा कि तुम आज कितनी कितनी खूबसूरत हो।

वाकई वो घड़ी आ गई है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। लेकिन चलते चलते भी बहुत से दोस्तों का नाम जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रखे हैं उनका नाम मैं पढ़ना चाहूँगा। नवीन जी हम भी लाइन में लगे हैं, देखिए आपका नंबर आ गया ना। हमारा नंबर कब आएगा? आ गया ना आपका नंबर। इस प्रोग्राम में हम आपको शामिल कर रहे हैं, पंकज शर्मा जी का संदेश हमने शामिल कर लिया और उम्मीद है कि आपकी नाराज़गी हमसे ख़त्म हो गई होगी। पंकज जी देखिए एक के बाद एक लगातार मेल आते रहते हैं, जैसे ही हम आपका मेल क्लिक करते हैं से पहले दूसरा मेल हमारे सामने आ जाता है। अब ऐसे ही बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल हमें इस समय नज़र आ रहा है, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से इन्होंने लिखा है। साथ में हैं रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता और नन्हे मुन्ने अम्बिका बेबी, इनका संदेश भी हमने इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संदेश हम शामिल कर सकें। आपकी प्रस्तुति अच्छी लगती है नवीन जी, नमस्कार। आपकी आवाज़ नहीं एक जादू है जो बंद आँखों से भी ख्वाबों को बुन देता है। कोई बैठा हो दुनिया के किसी कोने में ये सीधे दिल के तारों को छू लेता है। बबलेश पवार जी का संदेश हमें मिल चुका है, हमारे नए श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहरहाल अब वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता है मैं अपने इस कार्यक्रम को शामिल करूं बहुत सारे गीतों को, बहुत सारे नामों को। चलते चलते मैं नवीन सक्सेना आपसे इजाज़त ले रहा हूँ और इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ।

0: आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे।

0: औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23985 पर कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वसनीय विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवड़ी के पास हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. The agreement calls for the U.S. and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. UN Secretary General

0: नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़िया में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें। इसके लिए आप हमारा नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। और यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
1: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। हम आज देखते हैं कि लोग, खास तौर पे माता पिता, आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ, बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी। तो सर, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद प्रियंका, और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: सर, आज हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं एक आम परेशानी बन चुकी है। हमारे बच्चों का रवैया, जो कि बहुत ही अजीब होता जा रहा है। ज्यादातर बच्चे या तो बहुत गुस्सा करते हैं, या बात ही करना पसंद नहीं करते, या एकदम से अपने बड़ों को पलटकर जवाब दे देते हैं। और सर, कई बार बच्चे अनजाने में या जानबूझकर अपने माँ बाप को लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका, पर आपको ये जानना होगा कि ये परेशानी हमारे समाज में क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। प्रियंका, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं, तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं, तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
1: जी हाँ,

0: होते हैं और ये हमें बच्चों में नज़र आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनमें आने वाला हार्मोनल चेंज। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। और हार्मोनल बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं तो ये एक तरह का द्रव होता है जो बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब उनमें उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक दशा है और इस प्राकृतिक रूप से होता है। जब ये बदलाव होने लगता है, बच्चों के अंगों में बदलाव होता है, उनके शारीरिक संरचना जो है उसमें बदलाव आने लगता है, उस बदलाव के कारण हम बच्चों में देखते हैं कि वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बातों को टालना सीख जाते हैं, वो बातों को सुनना नहीं पसंद करते, या लोगों की, बड़ों की बातें जो हैं उन्हें लगता है कि हमें क्यों डांट रहे हैं, ये कि हमें क्यों बोल रहे हैं, और वो उलटकर कभी कभी जवाब भी दे देते हैं।
1: मतलब ये नेचुरल है सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सभ्य बन जाएं या ठीक हो जाएं या इन चीजों से बाहर आ जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं? क्योंकि कारण कोई भी हो सर, माँ बाप का दिल इन बातों से बहुत दुखता है। बच्चे नहीं समझते पर उनका ये व्यवहार माँ बाप के दिल को बहुत दुखी कर देता है। कितना कुछ करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना दुख सहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब से बच्चा दुनिया में आता है तब से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं, पर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं तो सोचिए कि क्या उनके हृदय में बीतती होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका, माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही समझते हैं। माँ बाप का दिल इससे दुखता है, माँ बाप को इससे दर्द महसूस होता है अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव को देख करके, और वो सोचते हैं कि ऐसा बदलाव क्यों मेरे बच्चे में आ रहा, मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी की, जब भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें दिया, फिर ये बदलाव बच्चे में क्यों आ रहा है। बच्चों में ऐसे बदलावों के कारण ही वो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक जरूर बड़ा कारण है, पर प्रियंका हमारे श्रोताओं एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल के बच्चे हैं, उनमें ये बदलाव हम देखते हैं जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं। उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है, और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या हाथ उठाना, कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली

0: पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज़ को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको उनका पीठ थपथपा देते हैं, वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और उन चूँकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
1: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व तो पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती और माँ बाप अगर किसी चीज को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है, और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे

बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड़ ही न करें, बचपन से, जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की ज़रूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा, और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा, डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं, और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे को बचाने की

0: कुछ ऐसी बातें जो हम माता पिता को समझने की जरूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, एक बार एक ईशान नाम का लड़का था। उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उसको करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वही किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों, एक बार जिंदगी में वो वक्त आया जब वो पिता बना और वक्त ने करवट ली। जी हाँ, कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। ईशान की जिंदगी में वक्त आया कि जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था अब उसके साथ होने लगा था। अब ईशान को उसके बच्चों का रहन सहन, उनकी बातें, उनके शब्द और उनका उसको पलट कर जवाब देना, ये सब तीर की तरह चुभने लगा। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप के साथ व्यवहार किया था। दोस्तों, हम बच्चों को भी यही चीजें सीखना जरूरी है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी समझदार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमको हो, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जी हाँ, याद रखिए, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों, याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ लीजिए। दोस्तों, जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे सारा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों, आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों, एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है।
1: तो श्रोताओं, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें अवश्य बताइए और इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8527449955। जी हाँ, 8527449955। और यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और अब मुझे यानी प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियाँ, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज और डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर 11:30 हुए जाते हैं। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी। सुरमंजरी के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बहादुरी तोड़ी में गायन। कलाकार हैं जय श्री पतंकर।

0: अभी आप सुन रहे थे राग बहादुरी तोड़ी में ख्याल। कलाकारां थी जयाश्री पातंकर। इसके साथ ही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दोपहर 1:10 पर आप सुन सकेंगे एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म सुजाता के कुछ गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 12 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले

0: किंजराप्पू रामन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three

दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जो शायद आपने सुनी भी है, पढ़ी भी है और टाल भी दी है। कबीर दास जी ने 500 साल पहले कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। यानी जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। यही है कबीर की चेतावनी। आज के ज़माने में तो टालना और भी आसान हो गया है, कई बहाने हैं, और हमारे सपने, हमारे रिश्ते, हमारे ज़रूरी काम सब कल पर टंगे रह जाते हैं। कबीर का जवाब सिर्फ एक शब्द है, और वो है अब। पूरा काम नहीं तो बस एक छोटा सा कदम उठाइए, बस शुरुआत करिए, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत है। तो आज इस शो के बाद एक काम जो आप टालते आ रहे हैं वो कर डालिए, हमें मेल भेजिए और हमें बिना देर किए बताइए, और हम भी आपको बिना टाले एक प्यारा सा गीत सुनवाई देते हैं।

आशा भोसले को अभी आप वक्त फिल्म में सुन रहे थे। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे हम अक्सर घर की चार दीवारी में छुपा देते हैं, जिस पर बात करना ज़रूरी है लेकिन हम बात ही नहीं करते। आपने कभी सोचा है कि वो हाथ जिसने आपको पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी हाथ को सहारे की ज़रूरत है। आज 15 जून है और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 में इस दिन को इसलिए मान्यता दी क्योंकि दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या बन चुकी थी। अब सवाल उठता है कि दुर्व्यवहार होता क्यों है? दोस्तों, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार सिर्फ मारपीट नहीं होता, ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक कई रूपों में होता है। किसी बुजुर्ग माँ को घर के कोने में बिठा देना, उसकी बात न सुनना, ये भी दुर्व्यवहार है। बुजुर्ग पिता की पेंशन पर कब्जा कर लेना, ये भी दुर्व्यवहार है। उन्हें बोझ समझना, उनकी दवाइयाँ न देना, उन्हें अकेलेपन में छोड़ देना, ये सब उसी के रूप हैं। और सबसे दुखद बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में हर 6 में से एक बुजुर्ग किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार का शिकार होता है, और अधिकतर मामलों में ये दुर्व्यवहार करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि घर का कोई अपना ही होता है। 50% बुजुर्ग किसी न किसी तरह के दुर्व्यवहार का सामना करते हैं और इनमें से अधिकांश इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, बेटे की बदनामी होगी। ये चुप्पी ही सबसे बड़ी समस्या है। वो बुजुर्ग जो अपनी तकलीफ बताने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 14567 शुरू की है, जो पूरी तरह मुफ्त और गोपनीय है। हेल्पलाइन एक बार फिर नोट कर लीजिए, 14567। तो दोस्तों, इस दिन का संदेश बहुत सीधा है। अपने घर के बुजुर्ग को देखिए, सुनिए, समझिए, उनकी थकी हुई आँखों में झांकिए, शायद वो कुछ कहना चाहते हों जो आपने आज तक नहीं सुना। जिस पेड़ की छांव में आप पले बड़े हैं, उस पेड़ को अब आपकी देखभाल चाहिए। आज के दिन बस एक काम कीजिए, अपने घर के बुजुर्ग के पास जाइए, उनका हाथ थामिए, उनसे पूछिए आप कैसे हैं, और सच में इस बार उनकी सुनिए, क्योंकि जो आदर आज हम उन्हें दे रहे हैं वही संस्कार हमारी अगली पीढ़ी सीखती है। ख्याल रखिए अपना भी और अपने बुजुर्गों का भी।

दूरियां फिल्म में अभी आप भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौड़वाल को सुन रहे थे। श्रोताओं, आज मैं आपसे एक ऐसी विरासत की बात करना चाहती हूँ जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज के भागदौड़ भरे ज़माने में पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। सुबह की पहली किरण, खुली हवा और बस कुछ पलों की शांति, यही तो है योग का असली स्वागत। दोस्तों, योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है। जब हम हर सुबह 20 मिनट भी प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। एक रिपोर्ट बताती है कि नियमित योग से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि योग हमें खुद से मिलवाता है, उस शांत कोने से जो हमारे भीतर है, लेकिन शोर और तनाव में दब गया है। यदि आप योग प्रशिक्षक हैं तो आप योग से अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं, लेकिन योग का काम सिर्फ चटाई तक सीमित नहीं है, ये समाज को भी बदलता है। जब एक इंसान भीतर से शांत होता है तो वह घर में प्रेम से बोलता है, दफ्तर में धैर्य रखता है और समाज में सहयोग की भावना लेकर चलता है। सोचिए, अगर एक मोहल्ले में कुछ लोग मिलकर सुबह पार्क में योग करें तो न सिर्फ सेहत बनेगी बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे। यही कारण है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आज स्कूलों, जेलों, अस्पतालों और कॉरपोरेट दफ्तरों तक में योग अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज बनाता है। तो दोस्तों, बस एक संकल्प लीजिए, कल से नहीं, आज से, अभी से 5 मिनट का ही सही या 25 मिनट का ही सही, बस शुरुआत कीजिए योग से। क्योंकि योग कोई धर्म नहीं, कोई फैशन नहीं, ये एक जीवन शैली है जो आपको अंदर से मजबूत और बाहर से सुंदर बनाती है। जैसा हमारे ऋषियों ने भी कहा है, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। तो श्रोताओं, क्या है योग करने के सरल नियम, कैसे किया जा सकता है सरलता से योग, आइए जानते हैं योग प्रशिक्षक देविका से। इनसे बातचीत कर रही हैं रश्मि कुकरेती।

घर आंगन के सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। चैनल है आपका अपना आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम वही जाना पहचाना घर आंगन, जिसमें होती है घर की बातें और घर से जुड़े कई मुद्दों की बातें। तो अगर हम कहें कि आप अपने घर में खुशियां समेटना चाहते हैं, बड़े बड़े काम आप करना चाहते हैं जिंदगी में, तो सबसे जो जरूरी है वो है स्वस्थ रहना। और अगर हम स्वास्थ्य की बातें करें तो बहुत जो जरूरी चीज है वो है व्यायाम करना, तो चाहे वो जिम में जाके हो चाहे बाहर दौड़ भाग के हो। लेकिन एक जो स्वस्थ जीवन शैली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है योग का सहारा लेना। योग से

0: जुड़ना। तो योग का अर्थ ही है जुड़ना। जब आपका मन प्राण आत्मा एकाकार होते हैं तो होता है योग। तो योग के बारे में और जानने के लिए और योग द्वारा हम किस प्रकार अपने तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है देविका श्रीवास्तव को, जो कि योग की अध्यापिका हैं, योग सिखाती हैं और काफी समय से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। देविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: हरिओम सभी को। मेरा नाम देविका श्रीवास्तव है, मैं योग शिक्षक हूँ, साथ ही साथ एक योगा विद्यार्थी भी हूँ। क्योंकि योग ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कुछ सर्टिफिकेट्स में समेट सकते हैं या कुछ हिस्सों में समेट कर पूरा सीख सकते हैं। हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है योग, इतनी बड़ी चीज है उसको सीखने और समझने के लिए। तो आज हम जो बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि योग है क्या
0: जी।
1: योग एक प्रतिक्रिया कह सकते हैं, योग को आप एक ऐसा मार्ग कह सकते हैं जिसके सहारे आप अपनी पूरी जिंदगी चलना सीख सकते। सुबह उठने से लेके आपके रात में सोने तक की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, पूरे दिन की आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपके शरीर का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रकृति को समझिए कि वो आपके शरीर से कैसे जुड़ा है, योगा से उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। योगा इज टू बियॉन्ड देन एक्सरसाइज। योगा में आपका मन, आपके भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी संस्कृति, आपका नेचर, सब कुछ आता है।
0: यानी कि पूरा एक जो जीवन जीने की शैली है, जो हमारा कर्म करने का कौशल है, मैं ये कहूँ कि ये जीवन यापन कैसे करना चाहिए, ये जो हमें सिखाता है वो है योग जी। क्योंकि कार्यक्रम है घर आंगन और जो घर की जो धुरी होती है तो देविका जी वो सबसे पहले होती है घर की महिला। हाँ, तो उसका स्वास्थ्य और उसका मन बिल्कुल सही रहना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्यों ना उसी के बारे में बात की जाए। तो हम देखते हैं कि जो आजकल की महिलाएं हैं, चाहे वो घर में काम कर रही हो चाहे बाहर काम कर रही हो, उनके लिए एक समस्या हो जाती है कि वो काम से थोड़ा सा अपने आप को कैसे हटा पाए कि वो वापस योग से जुड़े या अपने स्वास्थ्य को, वो थोड़ा सा देखभाल में कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो आप क्या कहेंगी, कैसा होना चाहिए उनका एक लाइफस्टाइल, वो कैसे समय निकालें अपने लिए और योग से जुड़े ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे।
1: आपका शरीर सही है तभी आप अपने घर का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे, तभी आप अपना अच्छे से काम अपने ऑफिस में कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है। हमेशा यही सुनने को मिलता है कि मैम टाइम नहीं होता। 90%
0: तो समय कैसे निकाले।
1: राइट, समय की परेशानी सबसे ज्यादा होती है वुमेन्स के साथ, इफ दे आर वर्किंग और इफ दे आर नॉट वर्किंग। घर में भी बहुत काम होता है, स्टिल वो गिना नहीं जाता, बट उसमें बहुत काम होता है। सोने के टाइम पे आप अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा निकाल सकते हैं।
0: पर ऐसे नहीं कहा जाता देविका जी कि सोते हुए, थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा है ये सुनते कि खाना खाने के बाद कैसे व्यायाम करें हम।
1: बिल्कुल, सोने के बाद टाइम निकालने से मतलब ये है कि उस टाइम आप व्यायाम तो नहीं करेंगे, लेकिन सोने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज योगा की है, प्राणायामा का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट योग निद्रा का है, जिसको करने के बाद आपकी पूरे दिन की थकान उस आधे घंटे में मिट जाएगी।
0: हाँ, क्योंकि निद्रा की अगर आप बात कर रहे हैं तो नींद तो औरतों की शायद ही पूरी होती है। मुझे लगता है औरतें क्या, किसी भी घर में अगर हम बात करें, आजकल बच्चे भी देर देर तक जाग कर काम कर रहे होते हैं, तो ये नींद की कमी तो सभी जगह है। पर ये अच्छी बात बता रही है, इसके बारे में और बताएं।
1: तो पूरे दिन का अगर आपका दिनचर्या ऐसे है कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट सोने से पहले आप 10 मिनट आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे तो वो पूरे दिन की थकान मिटाने वाली नींद आपको मिल जाएगी। सुबह आप एकदम रिफ्रेश होके उठेंगे।
0: तो ये प्राणायाम कौन सा करना चाहिए?
1: उसके लिए आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में सब अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। प्रॉपर प्रतिक्रिया के साथ उसको नासाग्र मुद्रा के साथ आप कर सकते हैं। 10-15 रेपिटेशन आप उसके करेंगे, लेकिन पूरे अवेयरनेस के साथ।
0: अच्छा,
1: आपने कभी देखा होगा पार्क में कई बार लोग ऐसे करते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं एंड दे आर कीप प्रैक्टिसिंग नासाग्र मुद्रा। प्राणायाम का सबसे बड़ा एक ही रीजन है, वो प्राणायाम आपके शरीर बेनिफिशियल होगा जब आपकी अवेयरनेस उसके साथ होगी।
0: यानी कि पूरा जुड़ाव होना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपको महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर की वो श्वास कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है। आपको A to Z एक्टिविटी आपकी बॉडी की फील होनी चाहिए। आप किस तरह की सांस ले रहे हैं ड्यूरिंग प्राणायाम, आप जब अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हैं तो राइट से आप इनहेल कर रहे हैं या उल्टा छोड़ रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं।
0: यानी ध्यान से तो प्राणायाम करें। और खाना खाने के कितने घंटे बाद हम कर
1: कोशिश
0: सकते
1: कीजिए, आप आधे घंटे से एक घंटे का डिफरेंस तो रखिए। अगर बिल्कुल नहीं रख पाते हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे का तो रखिए, 20-25 मिनट का डिफरेंस रख के फिर आप प्राणायाम तो कर सकते हैं। व्यायाम करने के लिए अगर आपने पूरा खाना खाया है, आपका अपने
0: वैसे तो कहते हैं खाना पचने में 2 घंटे लग जाते हैं अगर हम व्यायाम की
1: पूरा खाना लिया है तो फिर आपको एटलीस्ट 2-3 घंटे का गैप

0: ना चाहिए, पर हाँ आपने सिर्फ डिनर किया है,
1: हल्का खाना खाया
0: अगेन
1: है,
0: कहते
1: हाँ
0: हैं ये
1: जी
0: कि डिनर में कम खाना चाहिए,
1: जी
0: तो डिनर आपका डिपेंड करता है। बहुत फैमिलीज अब ऐसी हैं कि पूरे दिन का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि एंड में ही रात में ही सब बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, तब वो उल्टा हैवी खाते हैं।
1: जी
0: तो अगर ऐसा कुछ है, आप ऐसी कंडीशन में हैं, तो पहले आप अपने दिनचर्या को सुधारिए, पहले आप अपना डाइट को आप मेंटेन कीजिए, फिर आप धीरे धीरे अपने व्यायाम को भी शिफ्ट कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: अगर हम ये मानते हैं कि उसने 7 बजे 8 बजे खाना खा लिया, तो 1.5-2 घंटे बाद अगर वो चाहें तो रात को सोने से पहले कम से कम 10-15 जो आप बता रही हैं प्राणायाम और योग निद्रा, मैं चाह रही थी कि उसके बारे में अगर आप बताएं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ
0: जी
1: लग
0: बिल्कुल,
1: रहा है।
0: इवन ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। सही तरीके से सोने का तरीका समझ सकते हैं
1: जी
0: कि आपकी अवेयरनेस आपके सोते टाइम भी आपके साथ हो, उसे आप कच्ची नींद भी नहीं कहेंगे
1: जी
0: कि जैसे किसी ने भी एकदम से आपको टच किया या आपको आवाज लगाई तो आप झटके से उठ गए। नहीं, अवेयरनेस से मेरा कहने का मतलब था, सोते समय आप अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, आप अपने मेंटल थॉट्स पर ध्यान दीजिए, किसी भी थॉट को पकड़ कर नहीं रखना है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है।
1: कई बार ऐसा होता है ना, नींद आती है लेकिन हम सवेरे जो है वो
0: फ्रेश
1: ताजापन
0: नहीं
1: महसूस
0: होते,
1: नहीं करते, हमें लगता है कि बड़ा रात को बहुत से सपने आए, हम कसमसाते रहे,
0: बिल्कुल
1: परेशान रहे, ढंग से नींद नहीं आई, अभी भी वो तनाव लेकर उठ रहे हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ आप कहना चाह रही हैं कि नींद
0: बिल्कुल
1: हो पर भरपूर हो।
0: बिल्कुल, कहते हैं पूरे दिन में एक बार सोचे कि आपने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, पर उसको सोच के वहीं छोड़ दीजिए, फिर आप कोशिश कीजिए कि आपको अच्छी और शांत नींद आए, हैप्पीली सोएं। तो उसके लिए आप 5 मिनट भी अगर आप प्राणायाम करके सोते हैं, फिर आप लेटने के बाद शवासन में लेटकर फोन नहीं चलाना है, तो उससे आपको बहुत शांत और अच्छी नींद 5 मिनट के अंदर ही आ जाएगी। क्योंकि बहुत लोगों को होता है कि उनको नींद बहुत देर में आती है, वो नहीं होगा, आपको टाइम से अच्छी नींद आएगी, तो सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे।
1: जी और जब हम ताजगी की बात करते हैं तो, और मन शांत की बात करते हैं, तो संगीत भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है सुनना। तो क्यों ना, योग की तो बातें करेंगे आगे, लेकिन चलते चलते एक गीत सुन लेते हैं यहाँ पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: अभी हम बात कर रहे थे जो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपने बताया कि योग निद्रा और बातचीत की, कि इवन हम सोने से पहले भी चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद। इस प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। देविका, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप योग प्रशिक्षक देविका से बातचीत सुन रहे थे। रश्मि कुकरेती जी बातचीत कर रही थी इनसे योग के बारे में, सरल बातें सरल नियम आप जान रहे थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही कि जो आपके घर की चार दीवारी के भीतर हर वक्त चल रहा है लेकिन आप उसे देख नहीं सकती। जी हाँ, वो आपके घर का वाईफाई है। आज के दौर में वाईफाई सिर्फ इंटरनेट चलाने का ज़रिया नहीं, बल्कि इससे आपका बैंक अकाउंट जुड़ा है, आपकी तस्वीरें जुड़ी हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई जुड़ी है और आपकी निजी जानकारियां भी इससे जुड़ी हैं। भारत में साइबर क्राइम के मामले हर साल तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार अधिकतर साइबर हमले असुरक्षित होम नेटवर्क के ज़रिए होते हैं, यानी आपके घर में जो वाईफाई लगा है। तो आइए जानते हैं कि अपने घर के वाईफाई को सुरक्षित कैसे बनाएं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है पासवर्ड। दोस्तों, अगर आपके राउटर का पासवर्ड अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है और आपका नाम है या आपकी जन्मतिथि है, तो समझ लीजिए आपका दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है। हमेशा एक मजबूत पासवर्ड रखिए जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, अंक और स्पेशल करेक्टर्स हों। दूसरी बात, अपने राउटर की सेटिंग में जाकर नेटवर्क का नाम यानी SSID बदल दीजिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नाम हैकर्स को आसानी से बता देता है कि किस कंपनी का राउटर है और उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। तीसरी बात, अपने राउटर में VPA3 या WPA2 एनक्रिप्शन ज़रूर चालू रखिए, क्योंकि ये आपके डेटा को एक सुरक्षा कवच देता है। अब बात करते हैं कुछ और ज़रूरी उपायों की। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, उन्हें आपका मुख्य वाईफाई पासवर्ड देने की बजाय आप राउटर में गेस्ट नेटवर्क यानी अतिथि नेटवर्क चालू कीजिए। ये सुविधा लगभग आजकल हर आधुनिक राउटर में होती ही है और इससे आपका मुख्य नेटवर्क जो है वो सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हर 3 महीने या 6 महीने में अपने वाईफाई का पासवर्ड बदलने की आदत डालिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो ये कि अपने राउटर का फर्मवेयर यानी उसका सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट करते रहिए, क्योंकि कंपनियां इन अपडेट में सुरक्षा की कमियां दूर करती हैं। तो दोस्तों, घर का वाईफाई सुरक्षित रखना उतना ही ज़रूरी है जितना घर का दरवाज़ा बंद रखना। डिजिटल ज़माने में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी निजी जानकारियां हैं और उनकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। इस बात को समझिए। बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी जागरूकता आपको और आपके परिवार को साइबर खतरों से बचा सकती है। तो संजो रखिए अपने डिजिटल घर को।

और श्रोताओं, अब समय है आपकी कुछ मेल्स पढ़ने का। एक मेल अभी हमारे पास आई है, उग्रसेन यादव जी ने लिखी है नई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि आपको मेरा दिल से सप्रेम नमस्कार। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो एक तरह से एक ज्ञान की किताब हैं, और आज की जेनरेशन चाहे तो आधे से ज़्यादा जीवन जीने की कला उनसे जान सकती है, अपने घर में अपने बुज़ुर्गों से। जीवन आसान हो जाएगा अगर इनकी बातों और इनके दिल की बताए हुए गुरों पर गौर किया जाए। तो देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। इसके साथ ही हमें एक मेल आया है सुदर्शन मुखी जी का। एक मेल हमको लिखा है गौरी शंकर जी ने, और ये लिख रहे हैं कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मेल हमें राजू अग्रवाल जी ने लिखा है, ये भी बुज़ुर्गों की बात पर लिख रहे हैं, क्योंकि आज हमने बताया था कि बुज़ुर्गों से दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस है। तो इन्होंने लिखा है कि जो बुज़ुर्गों के लिए अगर कुछ बच्चे करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि बुज़ुर्गों के घर में मार्बल न लगाएं, क्योंकि इससे फिसलने का डर रहता है और बुढ़ापे में हड्डियां जुड़ती नहीं हैं। तो प्रोग्राम तो हमेशा अच्छा होता ही है। बस ये एक प्रार्थना है जो हमारी आप सब तक सुनवा दें। और एक हमें गौरी शंकर जी ने एक मेल लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जब घर की जिम्मेदारियां बड़े ही निभाते हैं तो कामयाबी भी मिलती है, और इसीलिए बच्चों को बड़ों की इज्जत करना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कहा। और अब समय समाप्ति का है, तो श्रुतिपुरी को आज का घर आंगन कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: 최근
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: चार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and the UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
2: The G7 summit under the French presidency has chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online, and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds immense significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
3: Prime Minister Narendra Modi has said the middle class of the country have contributed to nation building in countless ways and the NDA government is privileged to be working towards fulfilling their aspirations. In a social media post, Mr. Modi noted that over the last decade, governance has increasingly focused on improving the quality of life of ordinary citizens. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal.
4: This year, because of the El Nino, I think we are preparing for not so good a monsoon. Of course, we have enough buffer stocks. Since last year, we've maintained, so there shouldn't be a food shortage. But for farmers, it will have an impact because this year, his income will be stressed out.
3: Union Ayush Minister Pratap Rao Jadhav today said the main national event of International Day of Yoga 2026 will be held in Kolkata on the 21st of June, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations. Addressing the curtain raiser press conference for the International Day of Yoga 2026 in New Delhi, the minister noted that the theme for International Day of Yoga 2026 is Yoga for Healthy Aging, which addresses one of the most significant challenges of the modern era. The United States and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the afternoon session today. Following the announcement of a peace deal between the United States and Iran, the Sensex climbed 922 points to 76,450, while the Nifty rose 287 points to 23,910 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
5: Yeah. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। आज की इस सुरीली दोपहर में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कालजयी फिल्म की जिसने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज को सोचने पर भी मजबूर किया है। एक ऐसी संवेदनशील फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा की एक अलग ही कहानी को रचा है। जी हाँ, आज प्रोग्राम एक ही फिल्म में एक ऐसी ही फिल्म जो कि 1959 में रिलीज हुई थी लेकर आई हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप भी मेरे साथ इस सफर में जुड़ सकते हैं अपने संदेशों के जरिए। और आपको पता है संदेश भेजने का माध्यम क्या है? मेल। मेल के लिए हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। इस माध्यम से आप मेरे इस सफर के हम सफर बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ एस टी बर्मन साहब की आवाज़ में।

जिसका नाम है सुजाता। निर्देशन बिमल रॉय ने किया था, जिसमें नजर आई नूतन, सुनील दत्त, साथ ही शशिकला, ललिता पवार, सुलोचना लटकर, तरुण बोस ने भी सहायक भूमिकाएं निभाई। सुबोध घोष की इसी नाम की बंगाली लघु कहानी पर आधारित फिल्म थी और ये फिल्म भारत में जाति व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती है। संगीत जो अभी आपने सुना इस गीत के जरिए

स्वतंत्रता के बाद के भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म सुजाता आधुनिकता और समानता की ओर बढ़ते देश के बावजूद जाति व्यवस्था की मौजूदा वास्तविकताओं को उजागर करती है। 2 बीघा जमीन और विराज बहू जैसी सामाजिक रूप से जागरूक फिल्मों के लिए जाने जाने वाले बिमल रॉय सुजाता के माध्यम से उस समाज के पाखंड की आलोचना करते हैं जो लोकतंत्र और प्रगति का ढोंग करते हुए भी शुद्धता और अपवित्रता की पुरातन धारणाओं से चिपटा हुआ है।

सुजाता ने उस दौर में जाति भेद और छुआछूत जैसी संवेदनशील विषय को बड़े ही साहस और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। यही कारण है कि ये फिल्म आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी अपने समय में थी। नूतन इस फिल्म में सुजाता के रूप में नजर आई थी, सुनील दत्त अधीर के रूप में नजर आए थे, शशिकला ने रामा चौधरी का किरदार निभाया था, ललिता पमार ने गिरिवार का किरदार निभाया था, वहीं उपेंद्र चौधरी बने थे तरुण बोस, चारुमती चौधरी के रूप में नजर आए थे सुलोचना लाटकर, और असित सेन जो कि पंडित भवानी शंकर शर्मा के रूप में थे, और इसके साथ ही कई सारे ऐसे छोटे छोटे कलाकार थे जिनके झोली में जो भी किरदार आया उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उस किरदार को निभाया था। अब हम बात करेंगे इस फिल्म की कहानी की, लेकिन उससे पहले तलत महमूद की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो शायद आप सबकी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो उसको सुनते हैं।

फिल्म सुजाता। कहानी है एक अनाथ बच्ची सुजाता की, जिसे एक उच्च जाति का परिवार यानी कि ब्राह्मण दंपति उपेन और चारू, ये इनका पालन पोषण करते हैं। परिवार उसे प्यार तो देता है, लेकिन उसके अछूत जन की सच्चाई हमेशा उसके और उसके परिवार के बीच एक अदृश्य दीवार की तरह से बनी रहती है। समय के साथ सुजाता बड़ी होती है और आदर्शवादी युवक अधीर उससे प्रेम करने लगता है, लेकिन समाज की जातिगत सोच इस रिश्ते के सामने खड़ी हो जाती है और अंत में एक ऐसी घटना घटती है जब सुजाता का रक्त उसकी पालक माँ की जान बचाता है। तभी परिवार को एहसास होता है कि इंसानियत किसी जाति से बड़ी होती है।

आपको बता दें कि निर्देशक बिमल रॉय सामाजिक मुद्दों पर यथार्थवादी फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। सुजाता उनकी सबसे संवेदनशील फिल्मों में मानी जाती है। फिल्में नूतन के अभिनय की इतनी तारीफ हुई कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये फिल्म 1960 के कानन फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित गोल्डन पाम के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची फिल्म उस दौर में भारतीय फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तक जो पहुंचना था वो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन सुजाता को इसमें मौका मिला जाने के लिए और इस तरीके से भारत का मान भी बढ़ा था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार

जीता था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार निर्देशक का पुरस्कार बिमल रॉय ने जीता था। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार नूतन के झोली में गया था। सर्वश्रेष्ठ कहानी सुबोध घोष के पास गया था। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तृतीय यानी कि तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान फिल्म सुजाता ने पाया था। एक कहानी जिसने बिमल रॉय को झकझोर दिया था। निर्देशक बिमल रॉय ने जब ये कहानी सुजाता पढ़ी थी तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे फिल्म के रूप में बनाने का निश्चय किया था। उस दौर में छुआछूत जैसे विषय पर फिल्म बनाना काफ़ी साहस का काम था। नूतन जो बहुत ही खूबसूरत लगी थी और उनकी एक जो ग्लैमरस भूमिका थी उससे हटकर उन्होंने इस फिल्म में एक बिल्कुल सीधी सादी महिला का किरदार निभाया जो कि दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह उस किरदार ने अपनी जगह बना ली थी। और कहा जाता है कि बिमल रॉय चाहते थे कि दर्शक नूतन की सुंदरता नहीं बल्कि उनके चेहरे के भाव और अभिनय देखें। इस तलत महमूद जी की आवाज़ में जो गीत हमने आपको सुनवाया था जलते हैं जिसके लिए, इस गीत को पहले सुनने में तलत महमूद साहब को ये गीत इतना पसंद नहीं आया था जब SD बर्मन साहब ने लेकिन उनको विश्वास दिलाया कि ये गीत फिल्म की पहचान बनेगा और उसके बाद तलत साहब इस गीत को गाने के लिए राज़ी हुए और हुआ भी ऐसा ही कि ये गीत फिल्म की पहचान बन गया। एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जो सुनील दत्त साहब का किरदार था अधीर का, वो बहुत उन्होंने सादगी के साथ निभाया। फिल्म में उनके चरित्र उस समय की जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं उसको चुनौती देने वाला था और उस दौर के नायकों के लिए ये एक अलग तरीके की भूमिकाएँ थी। और सुनील दत्त साहब इसमें 100 में से 100 मार्क्स लेने में सफल रहे।

आपकी ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच गए हैं और वक्त है उन संदेशों को हम शामिल कर लें। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। इंदिरानगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू और जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश अजीत भावसर जी का आया हुआ है जो कि प्रमीला भावसर

सर और जेमिन भाप सर सनी के साथ वीरन गांव गुजरात से जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है, आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन जी, पहांदा, पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमल अनेजा जी हमें सुन रहे हैं। और मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, कृष्णा, पीहू, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना जी हमें सुन रहे हैं। ये संदेश भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू करण चंपा जी का आया हुआ है। नितेश कुमार दीवानगंज जी का एक और पलारी से संदेश हम तक पहुँचा है। ये अगला संदेश कवि रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, जयदेव तुषार डोली बेबी पूजा का आया है। संजय कुमार साहू जी पोठियाल कला दुर्ग से हाँ प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और ये है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठावाड़ से सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वेश और इनके ढेर सारे दोस्त। बबलेश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डैनी पवार मनीष जी के साथ गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। और बबलेश जी, आपने भी बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारी हमसे शेयर की है, लेकिन वक्त की कमी है। और इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम जी का संदेश है। भटिंगखेड़ा पंजाब से मिंजू टॉमस, पिंकी लवली, आरती जी हैं। गाँव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम इंदिरा जी हमारे साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से पूनम गंगनेजा जी हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला विशाल सोपान जी जुड़े हुए हैं। समडी नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु जी हैं। और ये संदेश हमारे पास सुरेश जागव अनीता जी का आया है। नेहरू चौक पैठण से संबलपुर काकेर से फागुन राम, ज्योति, ओजस्वी जी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी जुड़े हुए हैं। गंज डुंडवारा से हमारे साथ शमशुल कमर राही जी, बहुत दिनों के बाद आपका संदेश आया है, शुक्रिया आपका। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से। और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजीत छिंदा, जसवीर जस्सी जी हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम जी जुड़े हुए हैं। राजू मिगलानी जी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू के साथ दुर्गा कॉलोनी हांसी से जुड़े हुए हैं। बीरन गांव गुजरात से अजीत कुमार भापसर जी हमारे साथ हैं। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता जी दतरेंगी से हमारे साथ हैं। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र, मनोज और हिमांशु सुथार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी, ज्योति मक्कर जी के साथ जालंधर से हमारे साथ हैं। और नागरकोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत और इनके ढेर सारे दोस्त हमारे साथ हैं। गांव पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार और आदर्श सार्थक जी हैं। संदीप मक्कर जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। अगला संदेश ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, परवीन शनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान और परिवार के सभी सदस्य हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, पूजा परिहार जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, नीता मुखी, सिमरन जी, शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास पहुँचा है बड़ा बम चौक खंडवा से बमता संजय बेबी किट्टू जी का। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मधुम नायक जी के साथ हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। शायद कुछ और संदेश भी हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। ये हमारे साथ बसंत कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, शिवानी कुमार साहू मुन्ना, ये पीहरा बाजार झुमरी तिलैया से। और उसके बाद अगला संदेश पटियाला पंजाब से सोमदत्त, केरब, ज्योति, गुरमत, मनु जी का है। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा जी हैं। कमलकांत गुप्ता जी हमारे साथ पिपरिया से दीपा रिमझिम गुप्ता जी के साथ जुड़े हुए हैं। पटियाला रोज गंज डुंडवारा से हमारे साथ एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी आराध्या हैं।

तो दोस्तों सुजाता फिल्म केवल एक फिल्म नहीं बल्कि उस दौर के समाज से पूछा गया एक सवाल थी कि क्या इंसान की पहचान उसकी जाति से होती है या उसके कर्म और उसकी इंसानियत से। शायद यही वजह है कि 1959 में बनी ये फिल्म आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। और अब आपकी और मेरी मुलाकात दोपहर 3 बजे होगी। सुनना ना भूलिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, 3 से 3:30 बजे तक हम अपने फिल्मी सिनेमा के उस दौर में आपको लेके जाएंगे, उन गीतों को।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बराती सलावा में सलावाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। 52वां G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट का उछाल आया है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मौसम के एतवार से एल नीनो के असर के बावजूद मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक होने का यकीन दिलाया है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज शाम अमरीका में अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला केबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सलवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में सलवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम मोदी को सलवाकिया के उनके हम मनसब की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत और सलवाकिया के रिश्तों को मजीद उसत देने और दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन के नए इम्कान तलाश करने का मौका फराहम करता है। वजीर आजम मोदी सदर पीटर पिल्लीगिरिनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के शहर नीस के अपने दौरे का पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद सलवाकिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सलवाकिया के सदर पीटर पिल्लीगिरिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फीको के साथ सूदमंद मुजाकरात के मुंतजिर हैं। 1993 में सलवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आजम का इस मुल्क का यह पहला दौरा है। वजीर आजम का यह दौरा पिछले साल अप्रैल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सलवाकिया के दौरे और सलवाकिया के सदर पीटर पिल्लीगिरिनी के रवां साल फरवरी में भारत में मुनाकिदा AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत के बाद हो रहा है। ये दौरा तिजारत, सरमायाकारी, ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत और सलवाकिया के दोतरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा करता है। 52वां G7 सरबरा इजलास आज फ्रांस के शहर ईविया में शुरू हो रहा है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हो रही है जब एक अहम मुस्बत वाकया ये पेश आया है कि अमरीका और ईरान ने 107 दिन से जारी लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते को हतमी शक्ल दे दी है। दुनिया की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी आबी गुजरगाह से होकर जाता है। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और इटली समेत G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। एक मुशतरका बयान में फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इटली के लीडरों ने कहा कि गैर मशरूत तौर पर आबनाए हुरमुज को फौरी तौर पर फिर से खोलना और बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ ज़रूरी है। फ्रांस के शहर ईविया के साथ साथ जनेवा और लेक जनेवा खित्ते में G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जो बुध के रोज़ तक जारी रहेगी। सरबरा कॉन्फ्रेंस के मकाम के अतराब पूरे इलाके को रेड और ब्लू जोन में बांटा गया है और वहाँ QR कोड पर मबनी कंट्रोल निज़ाम के जरिए दाखिल होने को मुनज़बित किया जा रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। इन मुल्कों में अमरीका, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूरोपीय कौंसिल और यूरोपीय कमीशन के सुदूर भी इसमें शामिल होंगे। भारत, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को साझेदार मुल्कों की हैसियत से सरबरा कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की सदारत में मुनक्किद होने वाली G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस ने रवा साल के लिए चंद अहम तरजीहात का इंतखाब किया है। वसी तनाजुर में

0: इनमें आलमी मईशत में हद से ज़्यादा मौजूदा अहम तवाज़ुन को कम करना, मुश्तरका इक्तसादी तरक्की को फ़रोग देना और बैनुल अक़वामी शराकत दारों को मजबूत बनाना शामिल है। इसके अलावा अहम मादनियात और ज़रूरी अशिया की आलमी सप्लाई चैन को ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाने, ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और बड़े जुग्राफियाई और सियासी बहरान के हल पर भी तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ़्रांस के शहर एवियन पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म ये दौरा फ़्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की दावत पर कर रहे हैं। ये दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आलमी रहनुमाओं के साथ ऐसे अहम उमूर पर बातचीत करने का मौका फराहम होगा जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे आलमी खित्ताए जनूब के लिए भी अहम है। काबिले ज़िक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की ये 17वीं और वज़ीर आज़म मोदी की मुसलसल 7वीं शिरकत होगी। फ्रांस के शहर एवियन से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू ख़बरों के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका और ईरान ने 107 दिन से जारी लड़ाई खत्म करने और अबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने के लिए एक समझौते को हतमी शक्ल दे दी है। दुनिया की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा इसी आबी गुजरगाह से होकर गुजरता है। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया और कहा कि अमरीका ईरान की बंदरगाहों पर अपनी बहरिया की नाकाबंदी भी खत्म कर देगा। इस अमन समझौते पर स्विट्जरलैंड में इस महीने की 19 तारीख को दस्तखत किए जाएंगे। सर ट्रंप ने कहा कि मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत होने के बाद आबनाए हुरमुज को जुमे को ही खोल दिया जाएगा। मज़कूरा समझौते में कहा गया है कि ईरान के एटमी अफजूदगी प्रोग्राम पर अमरीका और ईरान बातचीत करेंगे। उधर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि लबनान समेत सभी महाजों पर जंग और फौजी कार्रवाई मुस्तकिल तौर पर रोक दी जाएगी और ये सिलसिला आज रात से शुरू हो जाएगा। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है जिसकी वजह से दुनिया भर में संगीन इक्तसादी मुजमरात मरतब हुए हैं और कई मुल्कों में लोगों की अमवात हुई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मुफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट आमदोरफ्त हो सकेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के ऐलान के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट का उछाल आया है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि मुल्क के मुतवस्सित तबके ने बेशुमार तरीकों से मुल्क की तामीर में अपना रोल अदा किया है और एनडीए सरकार उनकी उमंगों की तकमील के लिए काम कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान हुक्मरानी में आम शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मुल्क में अनाज का वाफिर स्टॉक मौजूद है और मौसम के एतबार से एनिनो के असरात के बावजूद गजाई अशिया की कोई किल्लत नहीं होगी। आज नई दिल्ली में माइंड माइन सरबरा कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की बारिश नॉर्मल से कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश के जेवर में वाक़ नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाज़ों की खिदमात आज से शुरू हो गई हैं जो मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक अहम संग मील है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के एक मैच में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 1-5 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन के खिलाड़ियों ने वक्फे के बाद के खेल में अपना दबदबा बरकरार रखा और आसानी से जीत हासिल की। आज के दिगर मैचों में अमेरिका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी बराती सलवा में सलवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फीको के साथ बातचीत कर रहे हैं। 52वां G7 सरबराह इजलास फ्रांस के शहर ईविया में आज शाम शुरू हो रहा है। वजीर आजम मोदी कल राबता इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने ईरान और अमरीका के दरमियान अहम समझौते का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के तनाजुर में खाम तेल की आलमी कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट का उछाल आया है। مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے موسم کے اعتبار سے نینو کے اثر کے باوجود

0: प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक

0: में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमेरिकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
2: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे

0: संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
1: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले रज त्योहार के दूसरे दिन रज संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। रज का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक रजपान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है आपके रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार का। आदाब सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार। तो आज का ये आधा घंटा समर्पित है बॉलीवुड के उस अभिनेता उस कलाकार को जिन्हें लोग प्यार से मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं, जिन्होंने न केवल अभिनय में बल्कि निर्देशन, प्रोडक्शन और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सोच को यानी कि हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं इस फिल्मी सफर को रोचक किस्सों, दिलचस्प किस्सों और यादगार नगमों के साथ, मेरे साथ, आपके साथ। लेकिन उससे पहले रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। जल्दी से फोन उठाएं, गेस करें और बताएं कि हम आज किस कलाकार के बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हिंट हम दे सकते हैं आपको, छोटा सा हिंट। ये है, हिंट दूं, आसान दूं या मुश्किल दूं? चलिए आसान मुश्किल आप पर छोड़ देते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिंट आपको दे देते हैं कि वो है उनका एक फिल्म का डायलॉग बता देते हैं। काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। ऑल इज वेल, दूसरा भी हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ। तो हिंट आपको मिल चुके हैं, जल्दी से हमें फटाफट मैसेज कीजिए और हमें बताइए कि कौन है आज का हमारा कलाकार। और जो हमें सबसे पहले गेस करके संदेश भेजेगा, आप जानते हैं वो हमारे इस आज के लाइव प्रोग्राम का फेवरेट श्रोता होगा। तो जल्दी से फोन उठाएं, मैसेज करें और हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये भी हमें बताएं।

हमारा ईमेल आईडी, यस हमारा ईमेल आईडी क्या है? ip radio delhi@gmail.com, ip radio delhi@gmail.com। जल्दी से हमें मैसेज कीजिए।

जी हाँ, क्या बात है, ढेरों मैसेजेस के साथ आप सभी का प्यार हम तक पहुंच रहा है। इसके लिए रैना तवर का तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को। और आज सब जिसने भी गेस्ट किया है उनका नाम हम बता देते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से अनिल मोहन और उषा मोहन जी, आपको आज का हमारे इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का इनाम यानी कि कहते हैं ना, घोषित किया जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको हमारी ओर से ढेरों बधाइयाँ। और सभी श्रोता निराश ना हो, क्योंकि एक दिन सबका आता है तो आपका भी आएगा। बस करना क्या है, आपको हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है और सुनते रहना है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आप ही का कार्यक्रम, एक ही कलाकार। तो अभी आपने सुना 1988 में आई फिल्म अभी आपने सुना फिल्म जो गाना था चांद सिफारिश, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना। और हम आज जो कलाकार लेकर आए हैं वो तो आपको पता चल ही चुका है और आपने बता दिया है, लेकिन हम फिर बता देते हैं, हमने नहीं बताया, आमिर खान साहब। जी हाँ, आज के कलाकार हैं आमिर खान, जिनका पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। इनका जन्म 14 मार्च 1965 में बॉम्बे में फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन और जनित हुसैन के घर हुआ था। और अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं और इतने गुरमीत जी ने हमें मैसेज किया है शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल साउथ एक्सटेंशन, गुरमीत जी ने मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से हमें प्यार भेजते रहिए, मैसेज करते रहिए। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से हमें मैसेज किया है राजकुमार जी ने, फरासी जिला हिसार से राजकुमार हुडी, प्रमोद कुमार हुडी जी ने किया है, ऐसे पुरुषोत्तम झा जी ने किया है, फारूक अली खान जी ने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, हम बात कर रही हैं आमिर खान साहब की। तो अभी आपने सुना 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक का रोमांटिक सॉन्ग, जिसने आमिर खान को रातों रात स्टार बना दिया। इनके निजी जीवन और शुरुआती करियर की अगर हम बात करें तो इनका ताल्लुक फिल्मी पृष्ठभूमि से ही रहा। इनके पिता एक फिल्म निर्माता और इनके चाचा नासिर हुसैन साहब भी एक जाने माने निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने अपने चाचा की फिल्म यादों की बारात में एक बाल कलाकार के रूप में पहली बार पर्दे पर कदम रखा था। और जहां तक इनके निजी जीवन की बात की जाए तो इनकी पहली शादी रीना दत्ता से, जिनसे दो बच्चे हैं, और बाद में एक फिल्म निर्माता किरण राव से हुई, जिनसे एक बेटा है। एक रोचक बात बताएं तो ये है कि ये एक अच्छे टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं। इसके अलावा इन्हें रूबिक्स क्यूब सुलझाने में भी महारत हासिल है। तो सुनते हैं इनसे ही जुड़ा एक और प्यारा सा नगमा।

है लाखों माँ, बहुत सारे मैसेजेस हमें आ चुके हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है हमें ये प्रोग्राम, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिएगा, प्रोग्राम कैसा लग रहा है और कैसा आप चाहते हैं वो भी हम आपका इसमें शामिल करेंगे। और अगर मैं किसी का नाम शामिल ना कर पाऊँ तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगली बार ज़रूर लेंगे। पटेल नगर से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया और गगनदीप आरजू और गुड्डू ने मैसेज किया है। ऐसे आर कुमार जी ने वर्डिंग पंजाब से, मिंटू थॉमस और पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी ने एक ही कलाकार के कार्यक्रम में बहुत सारे मैसेजेस हमें आए हैं, पंजाब से गाँव नथाना। और हरिजिंदर छिद्दा, जसविंदर जस्सी और सीता गीता। इसी तरीके से बहुत सारे पुरुषोत्तम झा जी ने मैसेज किया है, सोमदत्त जी ने जिला पटियाला पंजाब, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमुत कौर। और तुलसी मस्किन जी ने कहा है कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है उनको हमारा। चंडीगढ़ से बहुत सारे मैसेज आए हैं, शादरा से, दिल्ली से, बिहारी कॉलोनी से, तुलसी मस्किन, वबीना, आशीष राजा, चैतन्य चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता, केशोर सिरिधान खुराना और रणवीर कपूर, ये सभी जो भी हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हम बता दें कि हम जब बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें बता दें कि फिल्म है हमारा जो ये सफ़र है, फिल्मी सफ़र, एक ही कलाकार, मैं हूँ तवर, और आज के इस कार्यक्रम के कलाकार हैं जाने माने सुपरहिट सिनेमा जगत के परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब। दोस्तों, इन्हें परफेक्शनिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ में परफेक्ट हैं। वो चाहते थे कि वो चाहे वो एक कलाकार के रूप में काम करें या एक निर्देशक के रूप में काम करें, लेकिन उनकी पूरी मेहनत उसमें वो पूरा जान डाल देते थे, हर किरदार में अपनी जान डाल देते थे। और चाहे वो कोई भी फिल्म हो, उनकी किसी भी फिल्म को ले लें, दिल फिल्म हो, सीक्रेट सुपरस्टार हो या फिर लगान हो, और अंदाज अपना अपना हो। कॉमिक की बात की जाए तो एक अलग ही अंदाज उनका होता था। देशभक्ति की बात करें, रंग दे बसंती और मेरा मन, जो मन फिल्म का गाना है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। तो सुनते हैं ये वाला नगमा।

जी हाँ, मेरा मन भी आप सभी को बहुत चाह रहा है क्योंकि आप हमें मैसेज पे मैसेज भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 2001 आमिर खान के करियर का बेहद महत्वपूर्ण साल रहा है। फिल्म लगान हो, दिल चाहता है आमिर खान की 2007 में, और तारे ज़मीन हो निर्देशन किया था। बड़े और बच्चों की जो सीखने की समस्या है, उन्होंने इस बड़े संवेदनशील इस मुद्दे को समाज के सामने उजागर किया। 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स ने भारतीय सिनेमा में पूरी हलचल मचा दी। इस फिल्म का संदेश काबिल बनो काबिल, जो ये कामयाबी खुद ब खुद पीछे भागेगी का ये डायलॉग था, बहुत ही फेमस रहा। इस फिल्म के बाद जो अपनी जिंदगी करियर को लेकर कंफ्यूजन जो रहती है, और जो युवा बहुत कंफ्यूज रहते थे, वो उससे बाहर आए, और जो माता पिता बच्चों को अपनी उम्मीदों को आप बोझ और सपनों का टोकरा उन पर डाल देते हैं, इस फिल्म को देखने के बाद समझ गए होंगे कि कामयाबी ऐसे नहीं आती, लादी नहीं जाती, नंबरों से कुछ वैल्यू नहीं होती। असली जो कामयाबी होती है उनके रुचि से, उनके जुड़े काम से होती है ना दोस्तों। और ये बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना कि हमें अपनी चीज़ें बच्चों पर नहीं लादनी। बच्चे जो करना चाहते हैं वो हवा में उड़ते रहें और अपनी कामयाबी सिर्फ अपने स्किल्स के माध्यम से करें तो बहुत बेहद होगा, अच्छा होगा।

उदयपान भानपाल जी ने हमें मैसेज किया है, जय भीन दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश, और उसी तरीके से तुलसी मस्कीन जी ने मैसेज किया है, और उदयपान हमारे अनिल मोहन जी ने मैसेज किया है, और बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं। संदीप मक्कर जी ने हमें मैसेज किया, इंदिरा भान सिंह जी ने, अनुभव ऋषभ राम सरोवर नारायण प्रसाद दिनेश कालिंद्री और मोहम्मद सईद अब्बासी जी ने हमें मैसेज किया है, इसी तरीके संदीप मक्कर जी ने किया है, पी एस नावस्कर की जी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और निर्मला विशाल सोपान नारायण इंगले और पी एस नुहाकर, इन सभी ने हमें मैसेज किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फागुराम यादव जी ने हमें मैसेज किया है, ज्योति ओजस्वी जी ने मैसेज किया है, थैंक यू।

तो अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो दोस्तों सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, हर आवाज कुछ कहती है। मेरे दोस्तों अगला कार्यक्रम आपका मैटिनी मेलोडी जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमारी दोस्त हैं जो इसे प्रस्तुत कर रही हैं, करेंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्यार बना के रखती हैं। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि कभी भी जिंदगी में हार ना माने और एक अच्छा सभ्य नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने, और किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और किसी का बुरा ना करें तो ये भी आपकी खुद की मदद है। और सड़क पर वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा सबकी सुरक्षा है। और सभ्य और एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा ऐसा एक नेक काम करें जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके चेहरे पर दे और आपके दिल को दे सुकून। तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है। मेरे दोस्त तो आवाज़ तो सुननी बनती है। फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ, नए यादगार के साथ, और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। तो जिसका नाम अगर मैं लेना भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस कार्यक्रम से रहना तब को दीजिए इजाज़त। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। तो अब यानी कि समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय होने चला है हमारा अगले कार्यक्रम का, जिसका नाम है मैटिनी मेलोडी।

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। जी हां, आज हम आपको लेके चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जिसे भारतीय फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी कि गोल्डन इरा। ये वो वक्त था जब गीत केवल फिल्मों का हिस्सा नहीं होते थे बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा भी बन जाते थे। 1950 और 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का सबसे श्रमबद्ध और दौर माना जाता था। उस समय गीतकारों की कलम से कविता थी, कविता निकलती थी, संगीतकारों की धुनों में आत्मा थी और गायकों की आवाज़ में ऐसा जादू था कि गीत सीधे दिल तक पहुंच जाते थे। और वही गीत चुनकर आज मैं लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो गीत ज़रूर पसंद आए होंगे। आप भी मेरे साथ इस सफ़र में हम सफ़र बन सकते हैं, और उस दौर का आपका जो भी फेवरेट गीत रहा हो वो आप मुझे संदेश के ज़रिए लिखकर भेज सकते हैं। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो फ़िलहाल आपके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में चुनकर लाई हूँ ये गीत। फिल्म है सूरज।

1950 और 1960 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का सबसे खूबसूरत दौर। ये वो दौर था जब शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरूर सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी और हसरत जयपुरी जैसे गीतकार शब्दों का जादू बिखेर रहे थे। वहीं नौशाद, सचिन देव बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रोशन और ओपी नैयर जैसे संगीतकार सुरों की दुनिया को नई ऊंचाइयां दे रहे थे। और जब इन धुनों को लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, आशा भोसले और मन्ना डे जैसी आवाज़ें मिलती थी तो गीत अमर हो जाते थे। चलिए सुनते हैं आशा जी की आवाज़ में फिल्म वक्त से ये खूबसूरत सा गीत।

और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो लता दी और रफ़ी साहब की आवाज़ में है। मुकेश जी की भी आवाज़ आपको नज़र आएगी। फिल्म है श्री 420। राज कपूर की ये खूबसूरत सी फिल्म भारतीय आत्मविश्वास और सादगी का एक प्रतीक थी। विदेशों में इस फिल्म का गीत जो मेरा जूता है जापानी, फिलहाल हम ये गीत आप तक नहीं पहुंचा रहे, इसी फिल्म का दूसरा गीत हम आपको पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो गीत था जो राज कपूर साहब पर फिल्माया गया था मेरा जूता है जापानी, ये बेहद लोकप्रिय हुआ था और भारतीय सिनेमा की पहचान बन गया था। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है, और आज भी ये गीत अपनी रोमांटिक गीतों की सूची में सबसे ऊपर गिनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक मधुर गीत लता जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप दोपहर 3:30 तक, यानी कि आधे घंटे तक आप आनंद ले सकते हैं प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का, हिंदी फिल्मों के सुनहरे दौर के मधुर सदाबहार और लोकप्रिय गीतों का ये विशेष कार्यक्रम है, जिसमें आप सुनाएंगे पुराने दौर के यादगार नगमे, दिल को छू लेने वाले मधुर गीत, संगीत के सुनहरे सफर का आनंद, सब कुछ आपको मिलेगा। कहाँ? इस ही प्रोग्राम में। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि आप इस नए प्रोग्राम को भी वही प्यार दे रहे हैं जो आप दूसरे प्रोग्राम्स को देते हैं। अगला गीत जो हमने आपके लिए चुना है वो 1960 की एक खूबसूरत सी फिल्म, नाम दिल अपना और प्रीत पराई। जी हाँ, जीवन और रिश्तों की उलझनों को बेहद सरल शब्दों में प्रस्तुत करने वाली ये फिल्म और इसके गीत हर पीढ़ी को अपना बना लेते हैं। सुनते हैं लता जी की आवाज में इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

लता और डिम्पल जी हैं और लिख रहे हैं कि इस प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये नया कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और अगला जो संदेश है हमारे पास वो वीरन गांव गुजरात से जीत कुमार भापसर और प्रमिला भापसर जी का है। लिख रहे हैं कि 1950 से 1960 के दशक का गीत फिल्म CID से रफ़ी और शमशाद आसफ भोंसले की आवाज़ का ये गीत सुनना चाह रहे थे। कोशिश करेंगे कि किसी और दिन इस प्रोग्राम में आपकी पसंद हम ज़रूर पूरी करें। ऊपरकोच मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी, निगत परवीन शहनवाज, सरफराज फरदीन, अरजान अबान और परिवार के सभी सदस्य प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ज्योति मकर, मन्नत और संदीप मकर जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं। इस नए प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि सुर बदल सकते हैं, दौर बदल सकते हैं, लेकिन दिल को छू लेने वाले गीत कभी पुराने नहीं होते। यही कारण है कि हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग यानी कि गोल्डन ईरा आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में जीवित है। और इसी के साथ अब मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजु पांडे आपसे अनुमति लेती हूँ, फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

उर्दू मजलिस के सभी सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। पेश खिदमत है प्रोग्राम कहकशां। सामईन, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार उसके शहरियों की मेहनत और

रुपये होगी। फेज़ 2A का मकसद एयरपोर्ट तक बिला रुकावट राबता कायम करना और अहम रिहायशी व तजारती इलाकों को मौजूदा अहमदाबाद गांधीनगर कॉरिडोर से जोड़ना है। इस मंसूबे से राबते में बेहतरी आएगी, माशी सरगर्मियों और सियाहत को फ़रोग मिलेगा, शहरी नकल व हमल मज़ीद आसान होगी। इसके अलावा रिवायती ईंधन पर मबनी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले कार्बन के अखराज में भी नुमाया कमी लाने में मदद मिलेगी। मंसूबे की तामीर के दौरान तकरीबन 2,000 अफराद को रोज़गार मिलने और ऑपरेशन व देखभाल के मरहले में तकरीबन 500 अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा होने की तवक्को है। हुकूमत ने टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के राउंड

0: कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में जल जीवन मिशन देही इलाकों में पीने के पानी के शोबे में बड़ी तब्दीली लाई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 में पानी की मुसलसल फराहमी, नल कनेक्शन की फ़ालियत, पानी के मेयार और आबी ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत के मुताबिक ये इकदाम हर घर निरंतर नल से जल के विज़न को पूरा करने की जानिब एक अहम कदम है। इससे विकसित भारत 2047 के हदफ के मुताबिक तवील मुद्दती आबी तहफ़्फ़ुज़ को भी फ़रोग मिलेगा। देही रोज़गार, मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ और देहात की तरक्की को नई रफ़्तार देने के लिए मरकज़ी हुकूमत 1 जुलाई 2026 से एक बड़े मालियाती और पॉलिसी पैकेज पर अमल दरामद करने वाली है। विकसित भारत जी राम जी के नफाज के सिलसिले में रियासती वज़राए देही तरक्की के इजलास से ख़िताब करते हुए ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये सिर्फ़ एक स्कीम की मुंतकली नहीं बल्कि करोड़ों मजदूरों के रोज़गार और ज़िंदगी से जुड़ा मामला है। उन्होंने ये वाज़े किया कि मुंतकली के दौरान एक भी मजदूर बेरोज़गार नहीं रहना चाहिए और ना ही उजरत की अदायगी या कानूनी हुकूक में किसी किस्म की रुकावट आनी चाहिए। मरकजी वजीर ने बताया कि मनरेगा के तहत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं, जबकि रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए 95,692 करोड़ रुपए की अबूरी रकम जारी की गई है। इस तरह मजमूई मालियाती फराहमी 1.25 लाख करोड़ रुपए से तजावज़ कर गई है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह ने कहा कि ये फंड मुल्क की तकरीबन 2,80,000 ग्राम पंचायतों तक पहुँचेगा और नए फ्रेमवर्क के तहत ग्राम पंचायतें देही तरक्की के अगले मरहले की क़यादत करेंगी। मंसूबों का इंतखाब ग्राम सभाओं और पंचायतों की सिफारिशात की बुनियाद पर होगा ताकि रोज़गार की फराहमी और देही असासों की तामीर को यकीनी बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और साइंस और टेक्नोलॉजी व अर्ज़ियाती उलूम के मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुश्तरका तौर पर लखनऊ में नए इलाकाई मौसमियाती मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के मौसमियाती बुनियादी ढांचे में बेमिसाल तौसी हुई है, जिसके नतीजे में ज़्यादा दुरुस्त, मकाम से मखसूस और असरात पर मबनी मौसमियाती खिदमात फराहम करना मुमकिन हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2014 में मुल्क में सिर्फ 17 डोपलर वेदर रडार थे, जबकि अब उनकी तादाद बढ़कर 50 हो गई है। उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के तहत मज़ीद 50 रडार नस्ब किए जाएंगे, जिसके बाद अगले 2 बरसों में मुल्क में तकरीबन 100 डोपलर वेदर रडार मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती पेशगोई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई है और अब शहरियों को मुख्तसर मुद्दत और मकामी सतह की ज़्यादा दुरुस्त पेशगोइयाँ दस्तयाब हैं, जिससे बेहतर मंसूबा बंदी और आफात से निमटने में मदद मिल रही है।
1: सफ़र मंजिलों का सामिन, अभी आप इस मौजू के तहत मुल्क की तरक्याती सरगर्मियों का अहवाल सुन रहे थे। पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद इरफान। सामिन, शुक्रगुजारी एक ऐसा एहसास है जो खुद ब खुद दिल की गहराइयों से उभरता है। उसको हम महज एक जज्बाती रद्द अमल नहीं कह सकते,

0: नहीं सकती। लिहाजा जिस अमल में कामयाबी की लगन शामिल हो वो जिंदगी को खुशगवार और शख्सियत को पायदार बनाता है। जिंदगी और शख्सियत दोनों की तामीर में इंसानी ख्यालात को बहुत दखल है। इस सिलसिले में नेपोलियन हिल का ख्याल है, ख्यालात ही इंसानी जिंदगी को बनाते और बिगाड़ते हैं। अगर आप गुर्बत, फाका कशी और बीमारी के ख्यालात को अपने जहन में जगह देंगे तो यही चीज़ें आपको ज़िंदगी में हासिल होंगी। अगर आप इसके बरक्स सोचना शुरू करें तो हालात खुद ब खुद बदलते चले जाएंगे। ख्यालात शख्सियत को बनाने या बिगाड़ने में पूरी शिद्दत से काम करते हैं। आप जिन चीज़ों का तसव्वुर करते हैं उनके मुताबिक आपकी शख्सियत ढलती चली जाती है। ख्यालात के साथ साथ सेहत का भी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। अगर सेहत ख़राब हो तो अच्छे ख्यालात पैदा ही नहीं हो सकते। चुनाचे जो इंसान बेहतरीन सेहत का मालिक है वही जिंदा है, क्योंकि उसके जिस्म की हर रग में ज़िंदगी की लहर दौड़ रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हर्फ़ ताबिंदा, मौजू था ज़िंदगी का मकसद। और सामईन आइए अब सुनते हैं ये कव्वाली।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को सुधारना होगा।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीब ही सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि वैश्विक संस्थानों को 21वीं सदी की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को रीडिफाइन करना होगा। इस विषय पर हम वैश्विक प्रयासों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे।
1: इस अवसर पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने ब्रातिस्लावा में द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर श्री रॉबर्ट फिको ने भारत द्वारा हासिल की गई आर्थिक वृद्धि की सराहना की। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। भारत ने समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में जोरदार उछाल देखा गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर $83 और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध

सामीन, अभी आप कव्वाली सुन रहे थे। फ़नकार थे जाफ़र हुसैन ख़ान बदायूनी और हमनवा। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम कहकशां। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।

उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: milestone in the country's civil aviation sector. Addressing the inaugural ceremony, Union Civil Aviation Minister K. Ramohan Naidu said the airport will have the capacity to handle 1.2 crore passengers annually in the first phase. The second day of the traditional festival, Raja Sankranti, is being celebrated with great enthusiasm across Odisha today. The festival honors womanhood and Mother Earth. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the citizens on the occasion. The 19th Mumbai International Film Festival will begin at Rabindranath Mandir in the city this evening. This year, the competition section comprises 144 films, including 52 international and 92 national entries, representing filmmakers from 13 countries. And in FIFA World Cup 2026, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in the Group F match in Mexico today. In another match, Spain will play against Cabo Verde in their Group H clash at Atlanta in US at 9:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है हमारे खोई पाई व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद से प्राप्त सूचना में खोए हुए व्यक्ति का नाम है नैना गिरी, पुत्री शिवगिरी, आयु है 17 वर्ष महिला, कद 5 फुट। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया संपर्क करें थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद। अगली सूचना हमें प्राप्त हुई है थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद। खोई हुई व्यक्ति का पूरा नाम गोपाल कृष्ण, आयु 53 वर्ष पुरुष, शरीर की बनावट सामान्य, कद 173 सेंटीमीटर। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त होगी उन्हें पुरस्कृत राशि दी जाएगी 50,000 रुपये। कृपया जिसे भी इनकी जानकारी प्राप्त हो थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद में संपर्क करें। अगली सूचना प्राप्त है थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद। खोई हुई व्यक्ति का पूरा नाम रिया, पुत्री श्री नरेश, आयु 19 वर्ष महिला, कद 5 फुट 1 इंच। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया संपर्क करें थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद। अगली सूचना प्राप्त है थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम चिराग, पुत्र अरुण कुमार, आयु 20 वर्ष पुरुष, कद 5 फुट 3 इंच। घर से काम करने के लिए निकले थे मगर लौटे नहीं। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया संपर्क करें थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद। और संपर्क करने के लिए एक नंबर भी आप लिख सकते हैं, नंबर है 9649 3608 4, नंबर हम दोबारा बता देते हैं 9649 3608 4। अगली सूचना प्राप्त हुई है AHT थाना कमिश्नरेट गाजियाबाद। खोई हुई व्यक्ति का पूरा नाम जानवाज, पुत्र नसीम, आयु है 16 वर्ष पुरुष, कद 4 फुट 9 इंच, रंग सफ़ेद, गोल चेहरा। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया संपर्क करें थाना AHD कमिश्नरेट गाजियाबाद। अगली सूचना प्राप्त है थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद। खोई हुई व्यक्ति का पूरा नाम है नगमा, पुत्री मोहम्मद शफी सिद्दीकी, आयु है 20 वर्ष महिला, कद 5 फुट 2 इंच। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो इस नंबर पर कृपया संपर्क करें, नंबर है 9818875252, दूसरा नंबर है 7618134008। अगली सूचना प्राप्त

है थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद। खोई हुई व्यक्ति का नाम सुदेश उर्फ रिंकू, आयु है 19 वर्ष पुरुष, कद सामान्य है और खोई हुई व्यक्ति की जानकारी जिसे प्राप्त हो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9649360184। और आखिर में थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम अर्जुन, आयु है 23 वर्ष, कद सामान्य, 5 फुट 6 इंच, शरीर की बनावट भी सामान्य। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो संपर्क करें 8400749609, थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद। अभी आप जानकारी ले रहे थे खोए पाए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं की, और अब समय हुआ है युवाओं से जुड़ा कार्यक्रम, कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार युवा साथियों, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी साथी श्रेया शुक्ला।
1: और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट यश नारायण शर्मा। और आप जुड़ चुके हैं युवाणी से।
0: हर दिन की तरह आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं।
1: अच्छा श्रेया, जैसे?
0: यश, आज हम बात करेंगे इतिहास पर, युवाओं की कहानियों और चार्जर के बारे में।
1: चार्जर श्रेया?
0: हाँ यश, चार्जर। हम अपने फोन की बैटरी को चार्जिंग पे लगाना तो नहीं भूलते, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं अपने मन के चार्जर को।
1: खैर श्रेया, आज मंडे तो हम दिल की बात

0: अरे वाह, ऐसा लगता है मौसम और बेहतर हो गया ये गाना सुन के।
1: यश, कभी आपको ऐसा लगता है कि समय हमसे थोड़ा ज्यादा तेज भाग रहा है?
0: बिल्कुल ऐसा लगता है। अभी कल नए साल के गोल बनाए थे, देखते देखते आधा जून भी निकल गया और ये भी गुजर जाएगा।
1: सही कहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर नया दिन हमें एक फ्रेश स्टार्ट का मौका देता है।
0: हाँ श्रेया, मुझे यही लगता है कि यही शायद युवा पीढ़ी की ताकत भी है कि वह एक नए स्टार्ट को, मतलब कई ही बार हम अपने आप को नई नई चीज़ों में उतार कर देख सकते हैं। युवा की यही ताकत है।
1: यश, आज 15 जून है। दिल्ली का मौसम तो कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, कभी तो बहुत तेज गर्मी और कभी अचानक से बारिश।
0: श्रेया, पर तुम शायद ये नहीं जानती कि ये मौसम आम का होता है और आम किसको नहीं पसंद।
1: हाँ, ये तो तुमने सही कहा, कहीं से भी आओ और आम खा लो, और या फिर बढ़िया ठंडा सा मैंगो शेक या आमरस पी लो, सारी थकान उतर जाती है।
0: ये बात तो है। वैसे तुम्हें कौन सा आम पसंद है? मुझे तो दशहरी और मुझे सफेदा आम बहुत पसंद है।
1: यश, मुझे तो सारी आम बहुत पसंद है, और दोस्तों उम्मीद है आप लोग भी गर्मी का लुत्फ उठाने में और गर्मी का जोर थोड़ा कमजोर करने में आम का ही सहारा लेते होंगे।
0: जी हाँ, आप दोस्तों देखिए, आप आम को तो लुत्फ़ उठाइए पर आप ढेर सारा पानी भी पीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव्स हैं, तो आप स्टे हाइड्रेटेड और आम भी खूब खाइए।
1: जी, स्टे हाइड्रेटेड। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आम के लुत्फ के साथ एक प्यारा सा गीत। मैं हूं झूम झूम झुमरू, फिल्म झुमरू से।

0: अरे वाह, ऐसा लगता है कि कोई किशोर कुमार का और मौसम का अलग सा नाता है। इतना अच्छा लग रहा है इस गाने को सुनने के बाद। वैसे श्रेया, आजकल हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम अपने रिलेशंस को वैल्यू ही करना भूल गए हैं।
1: बिल्कुल यश, इसी वैल्यू को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम मन से माइक्रोफोन के सेगमेंट में सुनेंगे एक बातचीत राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत और संतोष द्विवेदी के बीच।
0: इस बातचीत में आप सभी जानेंगे सोशल मीडिया और संबंधों का मनोविज्ञान क्या है। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज एक नए विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है सोशल मीडिया और संबंधों का मनोविज्ञान। श्रोताओं, सोशल मीडिया ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। कहीं पर इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं तो कहीं पे इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां भी हैं जिससे कि संबंधों पर असर पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत जी को। डॉक्टर लोकेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: लोकेश जी, सोशल मीडिया जो आज के दौर में है, तो आज की जो पीढ़ी है उसके जीवन में कल्पना करना भी मुश्किल है कि सोशल मीडिया के बगैर भी दुनिया होती है। जैसे वो दुनिया आपने देखी है, हमने देखी है, हमारे सारे पूर्वजों ने देखी है। पर आज सुबह होती है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो कि अब एक्स है, उसके नोटिफिकेशन से, और रात होती है तो उससे। तो जीवन में जो बदलाव आया है उसको आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, वैसे तो सोशल मीडिया एक तरह से जरिया है लोगों से सोशलाइज करने का, कनेक्ट करने का, पर सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि सोशल मीडिया हमारा इतना समय जो है वो ले जाता है दिन का, कि उसमें जिन लोगों से हमारी संभावना थी भावनात्मक जुड़ाव करने की, वो नहीं हो पाता। कई बार लोग सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, पर जब उनसे पूछते हैं कि आप कितने लोगों से भावनात्मक रूप से, कितने लोगों से आपका मन का लगाव है और जिनके साथ आप अपने दिल की बातें, अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें, अपने सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपनी उंगलियों पर गिन पाना। तो सोशल मीडिया से एक ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर रिश्ते बहुत नज़र आते हैं, परंतु जो भावनात्मक जुड़ाव जिनसे, जिनके साथ हम अपना समय बिता सकते हैं, वो अभी कम नज़र आता है।
2: मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आज के जो रिश्ते हैं वो पहले जो आत्मीयता थी उसमें वो कहीं ना कहीं अब सतही तौर पर हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ है?
3: सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों के पास समय कम है, काम बहुत करे जा रहे हैं। जो समय हम लोगों को सोशलाइज करके सामाजिक रिश्ते निभाने में बिताया जाता था, आजकल वो समय मोबाइल फ़ोन पे बिताया जाता है बहुत बार। और मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का लोगों ने उसको अपनी सेल्फ वर्थ जिसको कहते हैं, अपनी वैल्यू या अपना आत्मसम्मान जिससे जैसे जुड़ा हुआ है, कि किसी ने सोशल मीडिया पे अपना कुछ पोस्ट किया, कितने लोगों ने उसको लाइक किया, कितने लोगों ने नहीं किया, ये सब उनके दिमाग में चलने लगता है। वो लाइक करने वाले लोगों की लिस्ट वो देखते रहते हैं, वास्तव में कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, मेरी रिश्तेदारी में, जो मुझे वास्तव में पसंद करते हैं, बजाय कि जो सोशल मीडिया पे लाइक्स हैं। बड़ी समस्या एक और आई है कि लोग अपने आप को बूस्ट करने के लिए, सेल्फ वर्थ करने के लिए, लोगों को बताने के लिए मैं अभी कैसा काम कर रहा हूँ या कैसा मेरा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है मेरी कितनी बड़ी है, इन सब चीज़ों के लिए मैं कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, इन सब के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा लोग हैं, वो अपने इम्पल्स में, आवेग में कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं कि वो रिश्तों को अच्छा करने की बजाय बिगाड़ देता है, तो बनाने की बजाय बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। अब सोशल मीडिया पे बहुत पुराना दोस्त है, अगर स्कूल का एक साथी है और मिल गया आपको कहीं पे, तो जो आप एक बार उसके मिल के अपने ताजा करेंगे स्कूल के दिनों को, जो आपके चेहरे पे भाव आएगा, आंखों में चमक आएगी, जो आपका गले मिलने की इच्छा होगी और यादें

0: साझा करेंगे, वो आपको वास्तव में कनेक्ट करता है, जोड़ता है और भावनात्मक लगाव बनाता है। पर वो आपकी सोशल मीडिया लिस्ट में तो 10 साल से हैं, पर कभी आपकी उससे चर्चा नहीं। सोशल मीडिया मैं नहीं मानता कि बहुत ही अच्छा जरिया है। हाँ, कभी अगर आपको पुराना दोस्त ढूंढना है, ये इसके लिए
1: जी
0: सोशल
1: बिल्कुल,
0: मीडिया
1: जैसे
0: काम आ सकता
1: कि
0: है।
1: शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें, जब सोशल मीडिया शुरू हो रहा था तो निश्चित तौर पर बहुत सारे आपके ऐसे मित्र स्कूल समय के मिले होंगे जिनसे आपका कनेक्शन शायद नहीं रह पाया था, क्योंकि उन दिनों मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तो
0: बिल्कुल
1: उनसे बना। ये तो इसका सकारात्मक पक्ष रहा। पर आज की तारीख में जब हम बात करते हैं तो एक नई प्रजाति का जन्म हुआ है, ट्रोलर्स जिन्हें बोलते हैं, वो आपको ऑनलाइन ट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ विषय पे कोई आपकी अभिव्यक्ति दी, आपका वक्तव्य उन्हें नहीं अच्छा लगा, तो वो आपको कमेंट करते हैं, वो आपको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वो कई बार अपशब्द तक लिख देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी मानसिक शांति जाती है। अब इसमें है क्या, कोई व्यक्ति जो मानसिक तौर पर उतना मजबूत नहीं है वो उससे बहुत ही प्रभावित हो जाता है। तो आप बेहतर बता पाएंगे कि ये जो ऑनलाइन ट्रोलर्स हैं, लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कई बार तो अतिशयोक्ति के स्तर पर, या तो वो बहुत खुश हो जाते हैं प्रशंसा पा करके, या कई बार वो इतना ट्रोल हो जाते हैं कि मानसिक रूप से अवसाद का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि फ़ोन एक बहुत अच्छा जरिया है। कोशिश करें कि अपने दोस्तों से, अपने लोगों से फ़ोन पर बात करें और उनसे मिलने का समय निकालें। सोशल मीडिया से आपका कभी भी स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बन सकता है, वो बात नहीं बनेगी। दूसरा, जो वैल्यू है खुद की, उसको कभी भी सोशल मीडिया के लाइक्स और क्रिटिक्स से ना जोड़ें। अगर किसी ने आलोचना की है, ये उसका व्यू पॉइंट है, और किसी ने अगर आपको अच्छा कहा है, वो भी उसका व्यू पॉइंट है। उससे अपने आत्मसम्मान को नहीं जोड़ें। कभी कभी ऐसा देखा गया है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई है, आपने भी सुना होगा, जिसमें किसी को इसलिए ट्रोल किया गया और उस ट्रोल से वो इतना परेशान हुआ कि उसने बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी लोग गए हैं। इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म जब हो जाता है तो उनको आलोचना को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये दूसरे लोगों का व्यू पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है।
1: जी बिल्कुल, जैसे एक चीज और आजकल देखने में आती है डॉक्टर लोकेश, आपने देखा होगा कि कई बार मान लीजिए दो मित्र हैं, तो या तो ये है कि उनमें शायद गहराई मित्रता की उतनी नहीं है, पर सपोज दो मित्र हैं और वो आपस में देखते हैं कि फला व्यक्ति के रील पे इतने व्यूज आए, इतने कमेंट्स आए, तुलनात्मक रूप से वो देखते हैं, तुलना करते हैं वो, तो जो मित्रता है, मित्रता में कहीं ना कहीं वो असर डालता है। तो जो एक वास्तविक मित्र था, आपने एक आभासी दुनिया की एक घटना से, उसमें भी एक कंपटीशन एक पैदा हो गया है, ये ऐसा क्यों है?
0: मैं जनरली लोगों को कहता भी हूँ, हमारे जो भावनाएं हैं, जिसको कहते हैं ईर्ष्या और जलन, द्वेष, ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। अब क्या होता है कि जब दो दोस्तों में कहते हैं ना कि बहुत अच्छी गहराई है, पर एक अगर अच्छे मार्क्स ला रहा है, दूसरा कम ला रहा है, तो वो उसको लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, ये कैसी दोस्ती हमारी। पर ये जो दूसरों के लाइक्स से कंपैरिजन करके और फिर हम दोस्ती के बीच में लाना, ईर्ष्या को बीच में लाना, उसको हमें हमेशा हटा के रखना होता है। दोस्तों के बीच में अगर ईर्ष्या आ जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, कई बार लोग किसी ट्रिप पे गए और अपना फोटो डाला, मुझे लगता है कि ये जो हमारा सिर्फ और सिर्फ कि हमने ये किया दूसरे लोगों को बताना, सोशल मीडिया के तौर पे दोस्तों को बताना, अच्छा जरिया नहीं है लोगों तक मैसेज देने का। ज्यादातर लोग के मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं बात, इसकी बजाय मैं लोगों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि वो कुछ सामाजिक मुद्दों पे, कुछ दोस्तों पे या अपने पारिवारिक मूल्यों पे, इस तरह की चीज़ों पर अगर वो कुछ अपना फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो ज्यादा बेहतर है।
1: जैसे कि आजकल हमने ये भी देखा है डॉक्टर साहब, कि जैसे कोई दिन विशेष आता है, माँ का दिवस, मदर्स डे, पिताजी के लिए कोई दिवस, फादर्स डे, तो ऐसे दिनों में एक होड़ सी आ जाती है सोशल मीडिया पे, हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट उसके माता पिता के तस्वीरों से भरा रहता है। पर वास्तविकता में अगर हम देखें तो ओल्ड एज होम्स में जितने लोग हैं, तो ये तो समाज की दूसरी तस्वीर बयां करता है। तो ये समाज ऐसा क्यों हो रहा है, इतना खोखलापन क्यों आ रहा है?
0: रिश्तों में जो हम कर रहे होते हैं और जो हम दूसरों को दिखा रहे होते हैं, दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है। जो वास्तविकता में अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें सोशल मीडिया पे जरूरत पड़ती है। लोग जरूर आंकते हैं लोगों को, ये बहुत गलत भी है कि इस इंसान ने अपने फादर्स डे के ऊपर अगर फादर के साथ फोटो नहीं डाली या नहीं डाली, इसका मतलब ये अपने फादर को उतना वैल्यू नहीं करता होगा। परंतु जो वैल्यू की जाती है वो अंदर से की जाती है, इंटरनल इमोशंस के साथ की जाती है, वो बाहर में दिखावे से नहीं की जाती है। जो दिखावा है सोशल मीडिया आने से ये बड़ा है, और उसको लोगों ने अपनी सोशल इमेज को करेक्ट करने का जरिया भी बना लिया है कि मेरी इमेज कैसी बन रही है, अच्छा ऐसी बन रही है तो मैं इस तरह के पोस्ट डालूंगा तो शायद मेरी इमेज अच्छी हो जाएगी। दुखद बात यह है कि जो

0: नेगेटिव चीजें हैं उनको बहुत जल्दी से ट्रोल किया जाएगा, पर जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको लाइक्स भी कम मिलते हैं, उनको वैल्यू भी कम मिलती है। सामाजिक तौर पे ये ठीक नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, आपने मूल्यपरक बातें हमारे श्रोताओं को बताई। सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे हम नकार नहीं सकते। यह हमें जोड़ता भी है और कभी कभी दूर भी करता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद संतोष
2: जी। दोस्तों, एक बहुत ही प्रेरणादायक बातचीत सुनने के बाद हम इतना तो समझ गए हैं कि खुद को अवसाद से बचाने के लिए, अपने संबंधों को अवसाद से बचाने के लिए ज़रूरी है स्क्रीन टाइम को अनफ्रेंड कर देना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। गीत का नाम कावा कावा, फिल्म मॉनसून वेडिंग से।

0: बेहद ही जोशीला गाना सुखविंदर जी द्वारा, मज़ा ही आ गया। सफलता कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं होती, उसके पीछे लगातार मेहनत और सीखने की इच्छा होती है। वैसे श्रेया, एक बात ये भी मुझे जाननी है कि हमने कोई चार्जर की बात करी थी इस शो की शुरुआत में।
1: हाँ यश, चार्जर। हम अपने फ़ोन की बैटरी लो होते ही चार्जर तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब हमारा मन थक जाता है तब हम क्या करते हैं?
0: शायद हम उसे इग्नोर कर देते हैं।
1: जी, और यही वजह है कि आज मेंटल वेलनेस पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है।
0: कॉलेज, करियर, सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशन, ये सब भी तो है श्रेया।
1: बिल्कुल सही। कई बार सब कुछ हैंडल करते करते हम खुद को समय देना भूल जाते हैं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ स्ट्रेस ना होना नहीं है, बल्कि इमोशनली, मेंटली और सोशली बैलेंस्ड महसूस करना भी है।
0: कभी किसी दोस्त से खुल के बात करना, कभी थोड़ा वॉक करना, कभी अपना पसंदीदा गाना सुनना, ये छोटी छोटी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से हीलिंग का काम करती हैं।
1: बिल्कुल यश, और शायद इसी एहसास को गुलजार साहब बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
0: अरे वाह श्रेया, याद रखिए, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश।
1: इसी के साथ ये भी याद रखिए कि इस गर्मी में खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखना भी सेल्फ केयर में ही आता है। इसी के साथ हम सुनेंगे अगला गीत, जिया रे, फिल्म जब तक है जान से।

0: कितना खूबसूरत गाना था, नीति मोहन ने बहुत ही अच्छा गाया। वैसे श्रेया, अगर मैं कहूँ कि आज भारत सिर्फ बदल नहीं रहा बल्कि दुनिया को इंस्पायर भी कर रहा है तो?
1: मैं बिल्कुल मानूंगी यश, आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इको सिस्टम्स में से एक है। डिजिटल पेमेंट्स, इनोवेशन, AI, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में भारतीय युवा अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: यानी फ्यूचर आने वाला नहीं, फ्यूचर अभी बन रहा है।
1: जी, अटल जी की पंक्तियां याद आती हैं कि आओ फिर से दिया जलाएं, मतलब जो हमारा युवा है वो साथ मिलकर दिया जला रहा है।
0: क्या बात।
1: इसी के साथ हम सुनते हैं एक और गीत, गीत का नाम रिहा, जिसे स्वर दिया है अरिजीत सिंह ने।

0: यश, हम जब भी मेंटली रिलैक्स्ड होने के बारे में सोचते हैं तो अपने बचपन को जरूर याद करते हैं। तुम अपने बचपन का कोई किस्सा सुनाओ।
1: जी श्रिया, जब मैं सुकून के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि बचपन का ही वो समय था कि जब मैं सुकून महसूस कर पाता था, या जब मेरे को अंदाज़ा हुआ शायद यही सुकून है। तो मैं जब अपने नानी के यहाँ जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे नाना जी मुझे कहानियाँ सुनाते थे, मेरी नानी मेरे को बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, तो बेहद ही मेरे को उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था।
0: यश, मेरे बचपन में तो मुझे दादा अपने बाबा के किस्से सुनाया करते थे और मेरे नाना मुझे चिलबिल खिलाते थे अपने हाथों से। जिम्मेदारी तो हमारी अब उनके प्रति बनती है जिन्होंने हमारे बचपन को संवारा, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर गांव खलिहानों से हमारा परिचय करवाया।
1: और अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन कांपते हाथों को थामें और उनका सहारा बने। जी हाँ श्रेया, तो अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप खूब ख्याल रखिए अपने और अपने परिजनों का, और खूब सारा पानी पीजिए। हम मिलते हैं अगले युवावाणी के शो में, और अब आज के गीत के साथ हम विदा लेते हैं, अभी ना जाओ छोड़कर।

0: और कल हम 4:15 शाम को दोबारा मिलेंगे युववाणी के नए कार्यक्रम के साथ। इसी के साथ मैं श्रेया शुक्ला
1: और मैं यश नारायण शर्मा
0: आप सभी से विदा लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं से संबंधित कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज 810 डीआरएम। आप सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Addressing a joint press conference after the talks, Prime Minister Narendra Modi said India and Slovakia have decided to elevate ties to the status of comprehensive partnership. Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: AI ka bhavishya keval innovation se nahi, balki trust, responsibility और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
4: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, digital transformation and advances in artificial intelligence, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Modi reached Slovakian capital Bratislava last night after concluding his visit to the French city of Nice. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Prime Minister Narendra Modi will reach Avignon tomorrow to participate in the summit. The G7 summit under the French presidency has chosen some key priorities for the current year. These include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth and renewing

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। तो लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर हम हाजिर हैं। इसमें आपको हम भजन सुनवाएंगे, मनोरंजन कराएंगे, लोकगीत भी सुनवाएंगे।
1: जी, तो शीतल, सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं को गोपाल सिंह बर्मन की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: सबसे सुंदर मेरा गांव, मेरे मन को मेरे भाया है।
1: वैसे
0: बिल्कुल।
1: तो हाँ, क्योंकि मैं गांव सबका ही सुंदर होता है।
0: और गांव वाकई सुंदर होता है, क्योंकि इतनी खुली खुली हवा, खुली खुली जगह, और स्वच्छता होती है, हरियाली होती है, मिलजुल कर सब काम करते हैं,
1: स्वच्छ खाना
0: खेती
1: मिलता है,
0: बाड़ी
1: सबसे
0: करते हैं।
1: बड़ी बात
0: हाँ
1: कि आपको आपके खेतों का ताजी
0: बिल्कुल।
1: सब्जी और फल मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है, जो शहरों में रह के नहीं मिल पा
0: नहीं
1: रहा लोगों
0: मिलता।
1: को।
0: तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये लोकगीत। और वाकई सही बात कही है भूपेंद्र ने कि नारी बहुत ही महान है और इतनी सारी विदुषियाँ हुई हैं हमारे
1: जी
0: इतिहास में। जो कहते हैं ना कि नारी अगर खुद जो शिक्षित होती है अपने तक नहीं रहती रखती, उसकी शिक्षा परिवार तक, समाज तक और पूरे देश तक आगे प्रचार
1: जी
0: प्रसार होता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: जैसे आपने कहा कि एक जब नारी शिक्षित होती है, एक लड़की शिक्षित होती है, उससे 3 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं। लड़का अगर पढ़ाई करेगा तो वो सिर्फ ज्ञान उसके तक ही रहता है, लेकिन जब नारी शिक्षित होती है तो अपने बच्चों को और उसके बाद जो बेटी को सिखाती है वो जाके अपने ससुराल में जाके अपने बच्चों को सिखाती है। तो इस कहते हैं कि एक लड़की के शिक्षित होने से 3 पीढ़ियां शिक्षित होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं केशव कुमार की आवाज़ में अगला भजन।

0: श्रोता सुन रहे थे कृष्ण कुमार की आवाज़ में ये भजन, और इसी के साथ हमारा आज का लोकरंजनी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब समय हुआ है दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ विजेता चतुर्वेदी
1: और मैं हूं अनुगुप्ता। और आज हम लेकर आए हैं बड़ी सारी रोमांचक खबरें खेल की दुनिया से।
0: तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की, जहां इंडिया ने पाकिस्तान को दी है करारी मात, और साथ ही बांग्लादेश और नीदरलैंड के गेम के बीच में भी हम करेंगे बात और करेंगे पूर्वावलोकन न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के होने वाले मैच के बारे में।
1: साथ ही सबके दिलों की धड़कन बढ़ाने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी हम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, सभी मैचेस की जो हो चुके हैं और कुछ रिव्यूज उन मैचेस के जो होने वाले हैं।
0: बात करेंगे हॉकी की, FIH प्रो लीग इंडिया वर्सेस नीदरलैंड के बारे में भी जानकारी आपको सुनने के मिलेगी मेंस और वुमेन्स दोनों ही खेमे में से।
1: और एक धमाकेदार खबर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्चरी के मैदान से, लेकिन वो खबर आप सुनेंगे प्रोग्राम में बाद में।
0: इंडियन एथलेटिक्स स्क्वाड का भी घोषणा हो चुकी है कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए।
1: मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि स्क्वैश, जो इस बार पहली बार ओलंपिक में इस खेल को स्थान दिया गया है, उसके भी स्क्वाड की, भारतीय स्क्वाड की घोषणा की जा चुकी है। तो आइए सुनते हैं फीफा की खबर।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और 14-15 जून को खेले गए चार मुकाबलों में फैंस को मिला रोमांच, उलटफेर और गोलों की बारिश। आइए बारी बारी

0: नजर डालते हैं इन सभी मुकाबलों पर। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी बनाम क्यूराकाओ की। ग्रुप ई के इस मुकाबले में ह्यूस्टन स्टेडियम में 14 जून को जर्मनी और क्यूराकाओ का सामना हुआ। ये मैच क्यूराकाओ के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि ये उनका वर्ल्ड कप में पहला ही मुकाबला था और क्यूराकाओ दुनिया का सबसे छोटा देश है जो कभी वर्ल्ड कप में पहुंचा है। शुरुआत में मामला बराबरी का दिखा। फेलिक्स नमेचा ने सिर्फ छठे मिनट में जर्मनी के लिए गोल किया, लेकिन क्यूराकाओ के लिवानो कोमेंसिया ने तुरंत बराबरी कर ली और ये क्यूराकाओ का वर्ल्ड कप इतिहास का पहला गोल बन गया। ये उनके लगभग 185,000 की आबादी वाले देश के लिए बहुत बड़ा पल था, लेकिन इसके बाद जर्मनी ने मैच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। निको शाल्टरबेक के हेडर और काई हावर्ट्ज़ की पेनल्टी से हाफ टाइम तक जर्मनी ने बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में जमाल मुसियाला ने तुरंत गोल दागा, फिर नथानियल ब्राउन ने 68वें मिनट में स्कोर को 5-1 कर दिया और डेनिस उंडाव ने 78वें मिनट में छठा गोल किया। आखिर में हावर्ट्स ने 88वें मिनट में अपना दूसरा गोल करते हुए स्कोर को 7-1 तक पहुंचा दिया। इस मैच में एक और दिलचस्प बात रही कोचों की उम्र का अंतर। क्यूराकाओ के 78 वर्षीय कोच डिक एडवोकाट वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे उम्रदराज कोच बन गए, जबकि उनके सामने जर्मनी के 38 वर्षीय जूलियन नागल्समन इस टूर्नामेंट के सबसे युवा कोच हैं। यानी कोचिंग में सबसे बड़ा उम्र का गैप इस मैच में देखने को मिला, जो लगभग 40 वर्ष का है। फाइनल स्कोर रहा जर्मनी 7-1 और काई हावर्ट्स इस मैच के स्टार खिलाड़ी रहे।
1: आइए चलते हैं दूसरे मुकाबले की तरफ, जो था जापान बनाम नेदरलैंड्स। ग्रुप एफ का ये मुकाबला डलास स्टेडियम में खेला गया और ये दोनों टीमों के लिए ओपनिंग गेम था। पहला हाफ बिल्कुल गोल रहित रहा, लेकिन दूसरा हाफ देखने लायक था। नीदरलैंड्स के विर्गिल वॉन डाइक ने हेडर से टीम को बढ़त दिला दी, लेकिन सिर्फ 7 मिनट बाद जापान के कीटो नाकामुरा ने बराबरी कर ली, जब उनका शॉट जॉन पॉल वॉन हैके के पैर से डिफ्लेक्ट होकर गोल में चला गया। फिर लगा नीदरलैंड्स मैच जीत लेगा, जब क्रिसेनिया समरविले ने बेहतरीन गोल करते हुए नेदरलैंड्स को फिर आगे कर दिया, लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। डाइची कामादा ने 88वें मिनट में एक कॉर्नर के बाद डिफ्लेक्शन से गोल करते हुए मैच को 2-2 से बराबर कर दिया और ये वर्ल्ड कप इतिहास में जापान का सबसे लेट गोल था। आंकड़ों के लिहाज से भी ये मैच ऐतिहासिक रहा। यह पहली बार था जब नेदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप मैच में 2 बार बढ़त ली लेकिन जीत नहीं सके। दूसरी तरफ जापान सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वे 2 बार पीछे रहे लेकिन हार से बच गए। इससे पहले 2018 में सेनेगल के खिलाफ हुआ था। नतीजा रहा नेदरलैंड्स 2-2, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला।
0: और अब बात करते हैं तीसरे मुकाबले के, आइवरी कोस्ट बनाम इक्वाडोर। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में खेला गया ये ग्रुप ई का मुकाबला बेहद कांटे का रहा। पहला हाफ गोल रहित रहा, लेकिन इक्वाडोर ने बेहतर मौके बनाए। जॉन येबोआ और एलन मिंडा दोनों के शॉट क्रॉसबार से टकराए। दूसरे हाफ में भी एनर वेलेंसिया का शॉट भी गोल पोस्ट से जा लगा, यानी इक्वाडोर के लिए ये मैच वुडवर्क से भरा रहा। लेकिन फुटबॉल में किस्मत का खेल भी होता है। 90वें मिनट में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए अमाद डियोल ने बिल्ड फ्रीड सिंगो के पास शानदार फिनिश करते हुए आइवरी कोस्ट को जीत दिला दी। इस गोल ने इक्वाडोर के 19 मैचों के अपराजित सिलसिले को खत्म कर दिया। साथ ही आइवरी कोस्ट की 12 साल में पहली वर्ल्ड कप जीत बनी। फाइनल स्कोर रहा आइवरी कोस्ट 1-0।
1: रोमांचक मैचों की लड़ी में आइए चलते हैं चौथे मुकाबले की तरफ, जो था स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया का। ग्रुप एफ का ये दूसरा मुकाबला मॉन्टेरी स्टेडियम में खेला गया और यहाँ स्वीडन ने धमाकेदार वापसी की। यासीन अयारी, जो ट्यूनीशिया मूल के खिलाड़ी हैं, ने 7वें मिनट में दूर से शानदार शॉट लगाकर स्वीडन को बढ़त दिला दी। इसके बाद ओमर रेकिक ने ट्यूनीशिया के लिए 43वें मिनट में गोल करके बराबरी की कोशिश की, लेकिन स्वीडन ने हाफ टाइम के बाद मैच पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अलेक्जेंडर इसाक ने 30वें मिनट, विक्टर ग्योकेरेस ने 59वें मिनट में गोल किए और फिर आया वो पल जो इतिहास में दर्ज हो गया। मैटियास स्वानबर्ग मैदान में उतरने के सिर्फ 18 सेकंड बाद ही गोल कर बैठे। ये वर्ल्ड कप इतिहास में किसी सब्स्टिट्यूट का सबसे तेज गोल बना। आखिर में यासीन अयारी ने 96 मिनट में दूसरा गोल करते हुए स्कोर को 5-1 कर दिया। इस जीत के साथ स्वीडन ने 1938 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में 5 गोल दागे और ग्रुप एफ में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। तो श्रोताओं, ये रहे 4 मुकाबलों के नतीजे। जर्मनी की दबदबे वाली 7-1 की जीत, जापान नेदरलैंड्स का रोमांचक 2-2 का ड्रॉ, आइवरी कोस्ट की लास्ट मिनट 1-0 की जीत और स्वीडन के धमाकेदार 5-1 की जीत। ग्रुप ई और ग्रुप एफ दोनों में मुकाबले अब बेहद दिलचस्प हो गए हैं।
0: तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज खेले जाने वाले चार बड़े मुकाबलों की ओर। डालते हैं नजर इन सभी मैचों के प्रीव्यू पर। सबसे पहला मुकाबला होने वाला है बेल्जियम बनाम मिस्र का। ग्रुप जी का ये मुकाबला सिएटल के लुमेन फील्ड में खेला जाएगा। ये दोनों टीमों के लिए ओपनिंग गेम है और दोनों ही अपने वर्ल्ड कप कर्ज तोड़ने की कोशिश में है। बेल्जियम वर्ल्ड कप में 15वीं बार हिस्सा ले रहा है और कोई भी यूरोपीय टीम इतनी बार खेलकर भी ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। दूसरी तरफ है इजिप्ट की टीम, पिछले 7 मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। रूडी गार्सिया की कोचिंग में बेल्जियम बीते 13 मैचों से अपराजित है और हाल ही में ट्यूनिशिया को 5-0 से हराया। मिस्र की तरफ से कैप्टन मोहम्मद सलाह पर सबकी निगाह होंगी। सलाह अपने देश के सबसे बड़े गोल्डन रिकॉर्ड से सिर्फ 2 गोल दूर है, जो फिलहाल उनके ही हेड कोच के नाम है। तो ये मैच सलाह के लिए इतिहास रचने का मौका भी हो सकता है। और बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट का ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे खेला जाएगा।
1: आइए आपको लेकर चलते हैं ग्रुप एच के दूसरे मुकाबले की तरफ, जो कि खेला जाएगा सऊदी अरब बनाम उरुग्वे के बीच। ग्रुप एच का ये मुकाबला मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में उरुग्वे को साफ तौर पर फेवरेट माना जा रहा है। उरुग्वे की टीम मार्सेलो बियेल्सा की कोचिंग में खेल रही है, जिन्होंने टीम को एक हाई टेम्पो और अनुशासित खेल वाली टीम बना दिया है। फेडरिको वाल्वर्डे, मैनुएल उगार्ते और डार्विन नूनेस जैसे स्टार खिलाड़ी इस टीम की ताकत है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की टीम के लिए हालात आसान नहीं है। अप्रैल 2026 में हर्वे रेनार्ड की जगह जॉर्जियोस डेनिस को कोच बनाया गया और टीम पिछले 5 मैचों में 4 बार हार चुकी है। हालांकि सलेम अल दोस्री टीम के कैप्टन और सबसे खतरनाक अटैकिंग खिलाड़ी हैं और किसी भी पल कुछ खास कर सकते हैं। इतिहास की बात करें तो 2018 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें भिड़ी थी, जिसमें लुइस सुआरेस के गोल की मदद से उरुग्वे ने 1-0 से जीत हासिल की थी। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 3:30 बजे खेला जाएगा।
0: और चलिए अब नजर डालते हैं कल सुबह 6:30 बजे भारतीय टाइम अनुसार खेले जाने वाले मुकाबले की, जो होगा इनाम बनाम न्यूजीलैंड। ये मुकाबला भी ग्रुप एच का हिस्सा है। दोनों ही टीमें अपने अपने महाद्वीप की क्वालिफायर के जरिए यहां पहुंची हैं और दोनों के लिए ये मैच ग्रुप की शुरुआत के लिए बेहद अहम है। ये मुकाबला उरुग्वे सऊदी अरब के मैच के साथ ही ग्रुप एच की तस्वीर भी साफ करने में मदद करेगा।
1: चौथे मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्पेन बनाम केप वर्डे के बीच होगा, जो कि रात 9:30 बजे खेला जाएगा। ये मुकाबला भी आज के शेड्यूल का हिस्सा है, जहां स्पेन एक मजबूत फेवरेट के तौर पर उतरेगा। केप वर्डे के लिए मुकाबला अपने देश के लिए वर्ल्ड कप में कुछ खास करने का मौका होगा, जो खुद एक छोटे से अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र से वर्ल्ड कप तक पहुंचा एक बड़ा अचीवमेंट मानता है।
0: तो श्रोताओं, आज का दिन फुटबॉल फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। बेल्जियम मिस्र का कांटे का मुकाबला, उरुग्वे का सऊदी अरब के खिलाफ फेवरेट के तौर पर उतरना और ईरान न्यूजीलैंड पर स्पेन केप वर्डे जैसे मुकाबले, कुल मिलाकर आज का दिन रोमांच से भरा रहने वाला है।

0: तो जी हाँ श्रोताओं, आपने सुना फीफा के मैदान में क्या कुछ हो रहा है। आइए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का चल रहा है, वहां से भी एक धमाकेदार खबर आ रही है। उसी खबर पर बात करेंगी विजेता। आइए सुनते हैं विजेता की रिपोर्ट।
1: आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है इंग्लैंड के बर्मिंगम में, और पहले ही दिन फैंस को मिले दो धमाकेदार मुकाबले। आइए डालते हैं एक नजर इन दोनों मैचों पर। सबसे पहले उस मैच की बात करते हैं जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार रहता है, भारत बनाम पाकिस्तान। एजबेस्टन के मैदान पर भरे हुए स्टेडियम के सामने रिकॉर्ड दर्शकों की मौजूदगी में भारतीय महिला टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने स्मृति मंधाना की 68 रनों की पारी, हरमनप्रीत कौर के 36 और ऋचा घोष के 34 रनों की मदद से 6 विकेट पर 170 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। मंधाना ने पारी को 18 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद संभाला और टीम को इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब

0: पाकिस्तान की टीम पूरी तरह बिखर गई। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए 5 विकेट सिर्फ 10 रन देकर लिए और आखिरी 3 विकेट सिर्फ 5 गेंदों में चटका दिए। मुनीबा अली ने 41 रन बनाकर थोड़ी कोशिश की, लेकिन पूरी टीम सिर्फ 106 रन पर ऑल आउट हो गई, यानी भारत को मिली 64 रनों की शानदार जीत। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अपनी इस शानदार जीत पर क्या कहती हैं दीप्ति शर्मा, आइए सुनते हैं।
1: अपने प्लान्स को बहुत सिंपल रखा, सेल्फ बिलीव था कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आएंगी आई हैव टू स्टेप अप। और जैसे विकेट स्लाइटली टर्निंग था तो अपने अच्छे बॉल्स और अपने अच्छे लेंथ पे हिट कर रही थी, जो अच्छे एरियाज हैं उसी पे बैक टू बैक में बॉल डालती रहूं। और पिच पे स्पीड बहुत ज्यादा क्रूशियल था, तो हर एक ओवर में वेरी कर रही थी, तो उस चीज ने मुझे हेल्प किया।
0: साथ ही वो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाली पहली स्पिनर भी बन गई। इस जीत के साथ भारत ग्रुप एक में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है और पाकिस्तान 5वें नंबर पर खिसक गया है। इस पर क्या कहती हैं भारतीय विमेंस टीम की कप्तान, आइए सुनते हैं।
2: इट्स अ वेरी बिग टूर्नामेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फॉर सो मेनी इयर्स टीम इज बीन शोइंग ट्रस्ट ऑन मी एंड इट्स अ वेरी इमोशनल एंड वेरी हैप्पी फीलिंग फॉर मी दैट यू नो आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दिस टाइम गोइंग टू प्ले अ 10th T20 वर्ल्ड कप एंड होपफुली गो विद द सेम माइंड सेट, सेम अप्रोच लाइक हाउ वी वेंट टू द लास्ट ODI वर्ल्ड कप एंड एवरीवन इज वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस टूर्नामेंट एंड होपफुली वी विल गिव आवर बेस्ट।
3: जी विजेता, और अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, बांग्लादेश बनाम नेदरलैंड्स। यह नेदरलैंड का वर्ल्ड कप में डेब्यू मैच था और डच टीम ने बड़ा उलटफेर करने की पूरी कोशिश की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए नेदरलैंड्स ने कप्तान बेबेट लीडे की 50 रनों की शानदार पारी की मदद से 8 विकेट पर 139 रन बनाए। शुरुआत में नेदरलैंड्स की टीम सिर्फ 36 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन डी लीडे ने पारी को संभाला। 140 रनों के लक्ष्य का सामना करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत धमाकेदार रही। ओपनर जुएरिया फरदौस ने 50 रन बनाए और बांग्लादेश को 19.1 ओवर में जीत दिला दी। फरदौस और दिलारा अख्तर के बीच पहले विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई। बीच में नेदरलैंड्स की गेंदबाज कोरोलिन डी लेंगे ने वापसी की कोशिश की और फरदौस समेत 2 विकेट झटके, जिससे मैच थोड़ा रोमांचक हो गया। लेकिन शर्मीन अख्तर के 37 और शोरन अख्तर के 18 रनों की नाबाद साझेदारी ने बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश ने 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बनाकर 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया और ये वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सबसे बड़ा सफल रन चेज बन गया। तो टूर्नामेंट के पहले ही दिन में रोमांच की कोई कमी नहीं रही। भारत की दबदबे वाली जीत और बांग्लादेश का रिकॉर्ड चेज, दोनों को मुकाबलों ने फैंस का दिल जीत लिया।
0: और अब बात करते हैं महिला T20 विश्व कप में 7वें नंबर के मैच के बारे में, जो होने वाला है। न्यूजीलैंड वुमेन्स का सामना श्रीलंका वुमेन्स से 16 जून को द रोज बोल में। न्यूजीलैंड महिला टीम अपने पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज वुमेन्स के खिलाफ मिली करीबी हार के बाद वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। टीम ने शानदार संघर्ष किया था, लेकिन रोमांचक मुकाबले में जीत से चूक गई। अब वो अंक तालिका में अपना खाता खोलने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। वहीं श्रीलंका महिला टीम को अपने पहले मैच में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे उस पर शुरुआती दबाव बढ़ गया। टीम इस मुकाबले में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ उतरकर टूर्नामेंट में अपने पहले 2 अंक हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगी।

0: चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको तीरंदाजी की खबरों की तरफ, जो हमें बता रही हैं अनु गुप्ता।
1: अंतालिया से इस वक्त भारत के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक और गौरवशाली खबर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हां, तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में हमारे भारतीय जांबाजों ने वो कर दिखाया है जो आज तक भारतीय तीरंदाजी के इतिहास में नहीं हुआ था। भारत ने अंतालिया की धरती पर एक ही विश्व कप स्टेज में पहली बार 2-2 सोने के तमगों सहित कुल 4 पदक जीतकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। इस ऐतिहासिक जीत के महानायक रहे हैं हमारे स्टार तीरंदाज धीरज बोम्बादेवरा, जिन्होंने अकेले ही मैदान पर दोहरे स्वर्ण पदक पर सटीक निशाना साधा। मेंस रिकर्व के व्यक्तिगत फाइनल में धीरज के सामने थे दुनिया के सबसे खतरनाक तीरंदाजों में से एक, दक्षिण कोरिया के ली वू सीक। लेकिन धीरज के तरकश के तीरों के सामने कोरियाई दिग्गज ने पूरी तरह घुटने टेक दिए और धीरज ने 7-3 की धमाकेदार जीत के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और श्रोताओं, रोमांच यही खत्म नहीं हुआ। मिक्स टीम इवेंट में भी धीरज और सिर्फ 17 साल की हमारी बेटी कुमकुम मोहोड़ की जोड़ी ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-1 से बुरी तरह धोकर दूसरा गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया। इसके साथ ही हमारी महिला कंपाउंड टीम की स्टार तिकड़ी ज्योति, अदिति और परनीत ने भी सोने की हैट्रिक लगाई, जबकि प्रियांश ने इंडिविजुअल्स कंपाउंड में देश को सिल्वर दिलाया। तो श्रोताओं, तुर्की के अंतालिया से आई ये स्वर्णिम खबर सिर्फ जीतों की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया को ये बताने की हुंकार है कि भारतीय तीरंदाजी अब दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है।

0: तो खेल जगत से बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं स्क्वैश की तरफ, जहां पर एशियाई खेलों के लिए 2026 की टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। आइए जानते हैं कौन कौन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। विजेता से सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: एशियाई खेल 2026 भारत की स्क्वैश टीम टूर्नामेंट, एशियाई खेल जो दो जापान के आईची नागोवा में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे। स्क्वैश में 5 इवेंट होंगे, पुरुष और महिला एकल, पुरुष और महिला टीम और मिक्स डबल्स। पिछला प्रदर्शन की अगर बात करें तो भारत ने स्क्वैश में 5 मेडल जीते थे, जो कि हांगझाउंग 2023 में हुआ था, जिसमें पुरुष टीम इवेंट में गोल्ड और सौरभ घोषाल ने एकल में सिल्वर मेडल जीता था। अब बात करते हैं, अभय सिंह एशियन गेम्स मेडल गेम्स मेडलिस्ट हैं, इंडियन ओपन 2026 में ये शामिल हुए हैं। अनाहत सिंह वर्ल्ड टॉप 20 में पहुंचने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी हैं। सौरभ घोषाल, रमित टंडन, वेलावन संथिल कुमार जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस साल स्क्वैश का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि सिंगल्स के विजेता सीधा लॉस एंजलिस 2028 के लिए क्वालिफाई करेंगे। भारत को अभय और अनाहत से स्क्वैश में अपना पहला ओलंपिक कोटा हासिल करने की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं।

0: चलिए अब खबर लेते हैं हॉकी से, क्या कुछ वहां पर हुआ।
1: रॉटरडैम से आ रही है हॉकी के मैदान की सबसे बड़ी खबर, जहां FIH प्रो लीग के एक हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत और वर्ल्ड नंबर वन नेदरलैंड्स के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली। पूरे 60 मिनट तक चले इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में ओलंपिक चैंपियन डच टीम ने भारत को 3-2 से मात दे दी है। मैच की शुरुआत डच फॉरवर्ड माइल्स बुंकेस के 3rd मिनट में दागे गए मैदानी गोल से हुई, लेकिन हमारे भारतीय शिरों ने भी हार नहीं मानी। 10वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने कप्तान हरमनप्रीत के पास को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद 23वें मिनट में डच टीम के कोएन बिजेन ने गोल कर नेदरलैंड्स को फिर आगे कर दिया, लेकिन तीसरे क्वार्टर के 33वें मिनट में सुखजीत सिंह ने बुलेट जैसी ड्रैग फ्लिक मारकर मुकाबला 2-2 से बराबर कर दिया। आखिरकार 40वें मिनट में तिजमेन रियंगा का पेनल्टी कॉर्नर गोल भारत पर भारी पड़ गया। भले ही आज टीम इंडिया को 2-3 से हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि हमारे स्टार मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने अपना 412वां मैच खेलकर दिलीप तिर्की के सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस जांबाज खेल के लिए टीम इंडिया को हमारा सलाम। रॉटरडैम में भले ही डच टीम के सामने हमारी पुरुष टीम की किस्मत ने आखिरी पलों में साथ ना दिया हो, लेकिन ऑकलैंड की धरती पर अमेरिका के खिलाफ हमारी महिला टीम के इरादे 7वें आसमान पर थे। पुरुष टीम की 2-3 की हार के गम को भूल जाइए, क्योंकि विमेन इन ब्लू ने अमेरिका को 3-2 से धोकर पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया है। ऑकलैंड के नॉर्थ हार्बर हॉकी सेंटर से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर, जहां FIH महिला नेशंस कप के पहले ही मुकाबले में हमारी भारतीय बेटियों ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारत ने अमेरिका को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 3-2 से धूल चटा दी है। श्रोताओं, मैच की शुरुआत में दिल की धड़कनें थमसी गई थी जब अमेरिकी टीम ने मैच के शुरुआती 7 मिनटों में ही 2 बैक टू बैक गोल दागकर 2-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन हमारी विमेन इन ब्लू हार मानने वालों में से कहां है। दूसरे क्वार्टर में शुरू हुई हमारी बेटियों का असली खेल। 17वें मिनट में ड्रैग फ्लिक स्टार दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर रॉकेट

0: जैसे शॉट मारकर स्कोर 1-2 किया और फिर आया 24वां मिनट जब दीपिका ने एक और गगनचुंबी गोल दागकर अमेरिका के होश उड़ा दिए और स्कोर 2-2 से बराबरी पर आ गया। अभी अमेरिकी टीम इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि हाफ टाइम से ठीक पहले यानी 28वें मिनट में नवनीत कौर ने अपनी जादुई स्टिक से तीसरा गोल दागकर भारत को 3-2 की बढ़त दिला दी। इसके बाद पूरे मैच में हमारे डिफेंस ने अमेरिका को एक एक इंच के लिए तरसा दिया। इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने पूल ए में शानदार 3 अंक हासिल कर लिए हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात
0: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, आपको लेकर चलते हैं एथलेटिक्स की दुनिया में, जहां पर एथलेटिक फेडरेशन ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए एथलेटिक टीम का ऐलान कर दिया है। आइए चलते हैं विजेता के पास और जानते हैं किन किन खिलाड़ियों को हमारे स्क्वाड में शामिल किया गया है।

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की एथलेटिक्स टीम का ऐलान कर दिया है। ये गेम्स स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक खेले जाएंगे और इसके लिए AFI ने 32 खिलाड़ियों की टीम तैयार की है, जिसमें 22 पुरुष और 10 महिला एथलीट्स शामिल हैं। इस टीम की सबसे बड़ी हेडलाइन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की वापसी टीम में प्रोविजनल यानी कि अस्थायी तौर पर शामिल किया गया है, क्योंकि वो पीठ की चोट से रिकवर कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपना 2026 सीजन शुरू नहीं किया है। अब बात करते हैं पुरुष टीम की। स्प्रिंट और लंबी दूरी के दौड़ में गुरविंदर सिंह 100 मीटर में, एनिमेश कुजूर 200 मीटर में और गुरवीर सिंह 5000 और 10000 मीटर में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हर्डल्स में तेजस अशोक शीर्षे 110 मीटर हर्डल्स में, जबकि यशस्वी और संतोष कुमार तमिलारासन 400 मीटर हर्डल्स में शामिल होंगे। जंप्स और थ्रोज में भारत का दबदबा देखने को मिलेगा। हाई जंप में सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श रामजे, पोल वॉल्ट में देव मीणा और कुलदीप कुमार, लॉन्ग जंप में बात करें तो एम श्रीशंकर और लोकेश सत्यनाथन, ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु शामिल हैं, शॉटपुट में समरदीप सिंह गिल और तजिंदर पाल सिंह टूर मेडल की उम्मीदें होंगे, जबकि तेजस्वी शंकर हाई जंप के साथ डेकाथलॉन में भी हिस्सा लेंगे। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के साथ रोहित यादव और यशवीर सिंह भी टीम का हिस्सा होंगे। अब बात करते हैं महिला वर्ग की, तो महिला की टीम की पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टील चेस और 5000 मीटर में दौड़ेंगी, पूजा हाई जंप में, मनप्रीत कौर शॉटपुट में और सीमा व निधि रानी डिस्कस थ्रो में चुनौती पेश करेंगी। 10,000 मीटर रेस वॉक में रवीना और प्रियंका शामिल हैं, साथ ही 400 मीटर मिक्स्ड रिले के लिए विशाल टीके, राजेश रमेश, अंसा बाबू और रशदीप कौर और नीरू पाठक को चुना गया है। खास बात यह है कि इस टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने फेडरेशन कप और लुधियाना में हुई इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में क्वालिफाइंग मार्क्स को पार करके अपनी जगह बनाई है। हालांकि पारुल चौधरी और गुलवीर सिंह, मनप्रीत और प्रियंका गोस्वामी जैसे खिलाड़ियों को विदेश में हुए मुकाबले के आधार पर छूट दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि पारुल चौधरी ने हाल ही में फ्रांस में 5000 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो श्रोताओं, ये रही भारत की एथलेटिक्स टीम की पूरी झलक।

0: तो श्रोताओं चलते हैं मुक्केबाजी की रिंग में। मुक्केबाजी की रिंग से आ रहे हैं एक सनसनीखेज खबर जो आपके अंदर के जोश को दुगना कर देगी। HE नागोया 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय मुक्केबाजों की अंतिम फौज तैयार हो गई है। और श्रोताओं इस बार हमारी रिंग की सेना ऐसी है जो एशिया के बड़े से बड़े सूरमाओं के जबड़े ढीले करने का दम रखती है। इस बार की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सनसनी रही है हमारी युवा मुक्केबाज साक्षी चौधरी, जिन्होंने चयन ट्रायल्स में रिंग के अंदर वो गदर मचाया है कि दो दो वर्ल्ड चैंपियंस को बैकफुट पर धकेल दिया है। जी हाँ, निखत जरीन और मीनाक्षी जैसे दिग्गजों को हराकर साक्षी ने 51 kg वर्ग में अपना टिकट पक्का किया है। उनके साथ रिंग में उतरेंगी हमारी सबसे अनुभवी स्टार और ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने 75 kg कैटेगरी में अपनी जगह पक्की कर ली है। पुरुषों में हमारे सुपर हैवीवेट किंग नरेंद्र बेरवाल प्लस 90 kg में विरोधी मुक्केबाज को नॉकआउट करने के लिए तैयार है। तो वहीं सचिन सिवाच और जादूमानी सिंह की फुर्ती रिंग में आग लगाने को बेताब है। पिछली बार के 4 पदकों के रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार इतिहास बदलने के इरादे से उतर रही है हमारी टीम इंडिया। एशियन गेम्स का स्क्वाड तो आपने जान लिया श्रोताओं, लेकिन हमारे इन मुक्केबाजों को रुकने का बिल्कुल वक्त नहीं है। रिंग का रोमांच अब सीधे शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप स्टेज 2 के मंच पर। आज से शुरू हो रहे इस बड़े टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज एशियन गेम्स से पहले दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाने के इरादे से रिंग में उतरेंगे। आइए जाने हमारे मुक्केबाजों के इंडियन स्क्वाड का नाम जल्दी से। हमारी विमेन्स टीम में रहेंगी ज्योति 48 kg, मीनाक्षी, पूनम, प्राची, माही, स्नेह, गितिमोनी, सनामाचा, नैना, अल्फिया पठान। साथ ही पुरुष वर्ग में रहेंगे ऋषि, निखिल, अनमोल, अभिनाश, दीपक, आकाश, जुगनू, हर्ष चौधरी और सवान।
1: और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं विजेता चतुर्वेदी
0: और मैं अनु गुप्ता
1: लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
2: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक

0: स्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico held delegation-level talks in Bratislava today. Addressing a joint press conference after the talks, Mr. Modi said India and Slovakia have decided to elevate ties to the status of comprehensive partnership.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: Prime Minister Modi said both countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. He said an MOU has also been signed on digital technology to open new avenues of cooperation between the two countries. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, digital transformation and advances in artificial intelligence, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Later in a social media post, Prime Minister Modi said his meeting with Prime Minister Fico is a very special moment for the India-Slovakia friendship. In a social media post, Mr. Modi said that the talks between both leaders covered cooperation in sectors like automobiles, railways, advanced manufacturing and green technology. The Prime Minister noted that the India-EU Free Trade Agreement will also add momentum to the India-Slovakia partnership. The French city of Avignon is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of the G7 countries. India, Brazil, South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon tomorrow to participate in the summit. India has welcomed the understanding reached between the United States and Iran on ending the conflict in West Asia and opened the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. In a social media post, Prime Minister Narendra Modi said, India hopes that the

0: परिमाणः शब्दज्ञानपरिणामः इति सिद्धान्तः प्रतिपादितः। प्रथममतानुसारेण यदा वक्तारः मनः श्रोतारम् अर्थं बोधयितुम् इच्छति स्थानेष्वभिहितो वायु शब्दत्वं प्रतिपाद्यते। द्वितीयमतानुसारं शब्दपरिमाणवः मिलित्वा समुदायरूपं समायाति। स्वसक्तौ व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिता अभाणीव प्रधीयन्ते शब्दाख्या परमाणवः इति। तृतीयमतानुसारं शब्दं ज्ञानपरिणामं मन्यन्ते। सृष्ट्यादौ एकं शब्दं तत्त्वमेवासीत् वाक् मनः च द्वे विभागे जाते। मनसः वृत्तिरूपं परिणाम ज्ञानं तस्य चाश्रयत्वात् मनो ज्ञाता इति कथ्यते। एष जाता सूक्ष्मवाक्तत्वेनानुसक्तः शरीरान्तर्गत तेजं वाचं च प्राप्य प्राणवायु मध्ये प्रविश्य तद्रूपो भवति। यथा अग्निना लोहपिण्डे दहक शक्ति सम्प्राप्तः तथा सूक्ष्मस्वरूपः प्राणवायु शब्दात्मकः भवति। यथा पृथ्वी क्रमेण घटादि कार्यरूपेण सम्पद्यते बीजं चाङ्कुरादि क्रमेण वृक्षरूपं प्राप्नोति तथैव सूक्ष्मशब्दः अपि क्रमेण स्थूलशब्दरूपेण प्रकटित न तु एकवारमेव सम्पूर्णरूपेण आगच्छति। समस्तव्याख्यानस्य पश्चात् निष्कर्षं प्राप्तं यत् शब्दस्य नित्यता अनित्यता सम्बन्धी विषये दर्शनमतेषु मतवैविध्यं दृष्टम्। अन्ते च वक्तुमिच्छामि अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। सम्प्रति भवद्भिः शब्द नित्यो अनित्यो वा इति विषये डॉक्टर रश्मि आर्यया द्वारा वार्ता श्रुता।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तः। भारतेन पश्चिम एशियायां प्रचलित संघर्षस्य समाप्तये अमेरिका ईरानयोः संधेः स्वागतं कृतम्। उक्तं च संधेः कार्यान्वयनेन क्षेत्रे शान्तिः स्थिरता च पुनः स्थापिता भविष्यति। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः अवोचत् यत् देशे खाद्यान्नस्य पर्याप्तभण्डारः वर्तते अथ च अलनीनो कारणेन अपि खाद्यान्नस्य नैयून्यं न भविष्यति। उत्तरप्रदेशस्य जेवरक्षेत्रे नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं वाणिज्यिकरूपेण आरब्धम्। अद्यारभ्य तत्र विमानानां सञ्चालनम् अभवत्। अपि च फीफा विश्वचषक स्पर्धायां स्वीडनदेशः अद्य मेक्सिको देशस्य मोंटेरे क्रीडाङ्गणे ट्यूनेशिया देशं 5-1 अंकांतरालेन पराजयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया देशस्य राजधान्यां ब्रातिस्लावा नगर्यां तत्रत्येन प्रधानमंत्रिणा रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह संवादम् अकरोत्। उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्त वार्ताहर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवोचत् भारत स्लोवाकिया देशौ व्यापक सहभागितया संबंधान् समुन्नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयोः रक्षा सहयोगं परस्पर विश्वासस्य प्रमाणं वर्तते। देशद्वयेन रक्षाक्षेत्रे सहयोगं समेधितुम् अपि सहमतिपत्रं हस्ताक्षरितम्।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं न केवलं नवोन्मेषे अपितु मानव गरिमा विश्वासाधारितम् अपि भवेत्। श्रीमोदी अवोचत् यत् प्रौद्योगिकी क्षेत्रे विहित सन्धिः अपि देशद्वयोः मिथः सहयोगं दृढयिष्यति।
2: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम, राम।
1: तो श्रोताओं, ग्राम संसार कार्यक्रम में आपको चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत सुनाएंगे, योजना के बारे में बात होगी जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी है।
0: बिल्कुल, और इसके साथ आपका मनोरंजन तो होगा ही
1: जी। बिल्कुल।
0: तो लेकिन शीतल बहन, सबसे पहले हम बातचीत सुनवा देते हैं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित योग अभ्यास और सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और जो कि जैसे कि अभी 21 जून आने वाला है और हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम लोग मनाने वाले हैं, तो इसमें जो वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए सुरक्षित योग अभ्यास और सावधानियां क्या क्या है ये सुनेंगे। और इसमें हिस्सा ले रहे हैं अरुण कुमार, ये योग शिक्षक हैं सहारनपुर से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। 21 जून को सारा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी संयुक्त राष्ट्र और आयुष मंत्रालय ने एक बेहद खूबसूरत और जरूरी थीम इस वर्ष के लिए तय की है, जो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ और सक्रिय बुढ़ापे के लिए योग। श्रोताओं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर और मन को एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो बिना किसी नुकसान के हमें गतिशीलता और मानसिक शांति दे सके, और यह काम योग के द्वारा बखूबी पूरा किया जाता है। इसी विषय पर गहराई से बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योग प्रशिक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो एक योग प्रशिक्षक के नजरिए से आप इस थीम को आज के समय में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए?
3: बहुत सोच विचार के बाद इस थीम का चयन किया गया होगा, क्योंकि उस उम्र में जाकर हम लोगों के पास समय भी होता है और हमें आवश्यकता भी होती है योग की, तो इसलिए ये बहुत अच्छी थीम है।
2: डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि 60 या 65 की उम्र पार करते ही लोग शारीरिक रूप से खुद को सीमित कर लेते हैं। थोड़ा बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द, बैलेंस और अकेलापन आम समस्याएं हैं, तो योग इन चुनौतियों से निपटने में एक वरिष्ठ नागरिक की किस प्रकार से सहायता कर सकता है?
3: जैसे कि आप

0: आपने कहा वरिष्ठ नागरिक, उस समय हम लोगों का शरीर कड़ापन आ जाता है, क्योंकि उम्र के साथ धीरे धीरे हम लोग अगर अभ्यास नहीं करते तो कड़ापन आ जाता है, और वही एक कारण भी होता है दर्दों का। तो इसलिए योग का एक अंग जिसको हम आसन कहेंगे, आसन से लचीलापन आता है, और लचीलापन होगा तो दर्द दूर रहेगा। इसलिए उस उम्र विशेष के लिए योग की कुछ क्रियाएं, सामान्य लोग तो योग को केवल आसन जानते हैं, और उस उम्र में हम लोग परमात्मा के निकट भी जाना चाहते हैं, जो योग का एक लक्ष्य भी है। तो पहला योग का अंग जो है हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार वो यम और नियम है। यम में 5 कहा गया है, अहिंसा सत्य स्थय ब्रह्मचर्य परिग्रह, और ये सब का पालन हम उस उम्र में यदि करते हैं तो हमारे पहले 2 अंग हमें परमात्मा के नजदीक लाते हैं। ये योग के पहले 2 अंग है।
1: तो जो बुजुर्ग पहली बार योग करना चाहते हैं उनके मन में हमेशा एक डर रहता है कि कहीं कोई चोट ना लग जाए, इंजरी ना हो या कोई नस ना खींच जाए, तो शुरुआती किन आसनों से उन्हें शुरुआत करना चाहिए?
0: सावधानी की अगर बात करें, इस योग के तीसरे अंग आसन और चौथे अंग प्राणायाम को हम लेते हैं। यदि हमारी उम्र 60 से अधिक है तो हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हम किसी अच्छे प्रशिक्षक के साथ अभ्यास करें, क्योंकि योग के विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि देखा दाखी सीखे योग झीनी काया बड़े रोग। अर्थात अगर हम किसी को टीवी में या किसी कैलेंडर में या वीडियो को देखकर योग करते हैं तो उससे लाभ की बजाय हानि होने की संभावना रहती है। तो हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में प्रारंभिक दिनों में हम सीख लें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस उम्र में हमारे शरीर के कुछ अंग, जैसे हमारी कमर होती है, वो पूरी तरह हमारा साथ नहीं देती। तो ये ध्यान रखें कि जिनको कमर की तकलीफ है वो आगे झुकने वाले योग ना करें, और जिनको हृदय की बीमारी है वो बहुत अधिक पीछे झुकने वाले अभ्यास ना करें। अगर शरीर स्वस्थ है तो फिर हम लोग थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर अस्वस्थ शरीर है और कोई तकलीफ है तो उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इस उम्र विशेष के लिए रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कुछ को कमर की तकलीफें होती हैं, तो कुछ हमारे बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो ज्यादा हिलडुल नहीं पाते या उम्र के कारण वो ज्यादा स्टिल ही रहते हैं जिसे कहते हैं, तो चेयर पर बैठकर, हमने कहा चेयर योगा भी होता है, तो उसके विषय में थोड़ा अगर आप बता पाए तो।
0: समय के साथ साथ इन सब प्रक्रियाओं ने जन्म लिया है। हमारे ऋषि मुनियों के समय में तो चेयर योग नहीं था, लेकिन जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ी तो हमने उसको अपने दैनिक जीवन में उतार लिया। अगर हम लोग लेट नहीं सकते, क्योंकि योग के लिए कहा गया है कि नीचे दरी चादर या मैट बिछा लीजिए, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, कोई बूढ़ी माता हैं, अगर वो लेट जाएंगी तो उनके लिए फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए तकत का सहारा लिया जा सकता है, नहीं तो कुर्सी पर बैठकर हम लोग सब अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, ताड़ासन हमारे यहाँ होता है जिसमें हम सीधे खड़े होकर शरीर को श्वास भर के ऊपर खींचते हैं। अब कुर्सी पर बैठकर ताड़ासन हमारे बुजुर्ग कैसे करेंगे? कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, घुटनों से जो हमारे पैर हैं वो 90 डिग्री पर हों, दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, उंगलियां फंसाकर पलट दें और धीरे से ऊपर खींचे। ये खिंचाव हमारी कमर का है, कमर में उस खिंचाव को महसूस करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत सुरक्षित आसन का अभ्यास होता है, जिसमें लाभ की ही संभावनाएं रहती हैं, हानि की नहीं, क्योंकि इस उम्र में हम लोगों को सावधानियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे आसन जो बिल्कुल एक सेफ कैटेगरी में आ सकते हैं बुजुर्गों के लिए, अगर आप उन 2-4 आसनों के प्रक्रिया या कुछ उनके बारे में बता सकें जिससे कि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें और उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना हो।
0: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो योग प्रोटोकॉल बनाया है उसको बहुत एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है, तो उसमें अधिकतर अभ्यास ऐसे हैं जिसको हमारे बुजुर्ग लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडवांस आसन भी हैं। वहाँ क्या ध्यान देना है, हमें प्रारंभ करना है गर्दन से।
1: जी,
0: हम लोग बैठ जाएंगे, श्वास को धीरे धीरे धीरे छोड़ते हुए पीछे ले जाएं और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे धीरे सामान्य स्थिति में ले जाएं। अब यहाँ क्या ध्यान देना है कि कभी कभी हम लोगों को गर्दन दर्द हो जाता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस कहा जाता है। ऐसी अवस्था में गर्दन को आगे बिल्कुल नहीं झुकाना है, श्वास को छोड़ते हुए साइड में ले जाना है और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए बीच में लाना है, फिर छोड़ते हुए दूसरी तरफ ले जाना है। सर से हम लोग प्रारंभ करेंगे, फिर कंधों को उसी प्रकार गोला घुमा लेंगे और ये बैठी हुई स्थिति में आराम से हो सकता है। दोनों हाथ साइड में फैला लेंगे, कोहनियों से मोड़ते हुए अंगलियां मिलाकर कंधों पर रखेंगे, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे धीरे क्लॉकवाइज पांच बार और पांच बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। तो ये सब अभ्यास हमारे उस प्रोटोकॉल में है और उम्र विशेष को ध्यान में रखते हुए इन सरल अभ्यासों को बनाया गया है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी उम्र को ध्यान में रखते हुए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं बनाई हैं, जैसे कि हम लोग पैर को सामने फैला लेते हैं और केवल पैर के पंजों को आगे की तरफ खींचते हैं और फिर बीच में ले जाते हैं, फिर पीछे की तरफ खींचते हैं। ये देखने में सामान्य क्रियाएं हैं लेकिन इनके लाभ किसी आसन से अधिक हम लोगों को मिलते हैं, इसलिए इनको हम लोग सूक्ष्म क्रियाएं कहते हैं। हमारे और कुछ योग के एक्सपर्ट हुए हैं, उन्होंने भी सूक्ष्म एवं स्थूल क्रियाएं उस उम्र विशेष के लिए बनाई है, उनका भी अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। आसन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग लेट जाएंगे और अभ्यास करेंगे। आसन का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है बैठना, किसी विशेष स्थान पर बैठना, और बैठकर हम कुर्सी पर बैठकर, हम तकत पर बैठकर ये अभ्यास कर सकते हैं। जोड़ों के सभी अभ्यास जैसे गर्दन का जोड़, कंधे का जोड़, क्योंकि एक आज आधुनिक बीमारी है जिसको कहा जाता है फ्रोजन शोल्डर, अर्थात कंधों की मांसपेशियों का जम जाना, तो हम अपने कंधों का चालन करें। इस क्रिया को योग में कंधा चालन कहते हैं। हम लोग एक हाथ को ऊपर ले जाएं, मुट्ठी बंद कर लें, फिर उसको नीचे लाएं, दूसरे को ऊपर ले जाएं। इसको हम श्वास के साथ कर सकते हैं, ये हमारे कंधों के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम लोग इसी तरह इसका दूसरी जो क्रिया है, सामने दोनों हाथ ले जाएं, मुट्ठी आपस में मिला लें और गोल गोल घुमाते हैं, उसको कहते हैं चक्की चालन। ये अभ्यास सामान्यतः जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में योग प्रारंभ किए थे तो बैठकर करते थे, लेकिन आजकल हम लोगों के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको कंधों में दर्द है वो बैठकर इसको आराम से कर सकते हैं, इसका लाभ बहुत ज़्यादा है। तीसरा, उस उम्र में प्रोस्टेट की एक समस्या
1: जी
0: आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो हमें कुछ क्रियाओं का पालन करना होगा। जैसे अश्वनी मुद्रा, आपने देखा होगा घोड़ा मल त्याग के बाद अपने रेक्टम मसल्स को, एनस मसल्स को या मल द्वार को अंदर की तरफ खींचता है, फिर उसको ढीला छोड़ता है, अंदर की तरफ खींचता है तो ढीला छोड़ता है। ये बहुत सुरक्षित क्रिया है, इसको हम लोग वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे अपने रेक्टम मसल्स को, मल द्वार को ऊपर की तरफ धीरे से सिकोड़ लें और फिर ढीला छोड़ दें। इसमें गलती कहाँ होती है, सावधानी कहाँ रखनी है कि हम जैसे ऊपर खींचते हैं ऐसे ही प्रेशर के साथ बाहर धकेलते हैं, वो नहीं करना है। बस समझना ये है कि ऊपर खींचना है, ढीला छोड़ देना है, ऊपर खींचना है, ढीला छोड़ देना है। ये हमारे प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखिए योग के साथ एक्यूप्रेशर को जोड़ा जाने लगा है और हमारे ऋषि मुनि तो मर्म चिकित्सा की बात करते थे। महर्षि सुश्रुत ने दो अपने आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में लिखा है जिनको फादर ऑफ सर्जरी उस समय कहा गया है, तो वो हमारी जो कोहनी है, कोहनी से चार अंगुल नाप कर कोहनी को मोड़ लें और अपनी चार अंगुल छोटी अंगुली कोहनी को लगाएं और चार अंगुल के बाद उस जगह को अंगूठे से सुबह शाम 10-10 बार दबा लें, ये प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, थोड़ा विषय से हटते हुए मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ बीमारियाँ होती थी जो पहले ये माना जाता था कि ये बुढ़ापे की बीमारियां हैं, जैसे उच्च रक्तचाप या फिर दिल की बीमारियां, तो आजकल वो देखा जा रहा है कि वो जवान लोगों में भी ये चीज़ें होने लगी हैं, तो ऐसे कौन से आसन हैं या कौन सी क्रियाएं हैं जो हमें इन बीमारियों में नहीं करनी चाहिए?
0: हृदय रोग से संबंधित ये सब बीमारियां हैं, चाहे रक्तचाप का कम होना या रक्तचाप का बढ़ना, और एंजाइना पेन भी इसमें होता है। तो इन सब क्रियाओं में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे तेज गति के साथ कोई भी अभ्यास
1: जी,
0: चाहे वो हमारी शुद्धि क्रियाओं की हम बात करें जिसको योग में षटकर्म का नाम दिया गया है, धोतिर्वस्थि, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति, ये सब हम लोग उसमें रखते हैं। तो कपालभाति सामान्यतः हम लोग करते हैं, तो हमारे बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए कि वो गति को सामान्य रखें, और विद्वान लोग कहते हैं कि 3-4 बार हम लोग कपालभाति करते हैं। तो हम जब एक बार की कपालभाति करें, 10-15 बार, 20 बार श्वास को बाहर निकालें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम वो श्वास, अगर हमारे प्रशिक्षक ने कहा है कि हम इसको 20 बार निकालेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कितनी बार निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के, एक बात। दूसरा, गति को सामान्य रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग उसको करेंगे। तीसरा, श्वास को रोकेंगे नहीं। योग की बहुत सारी क्रियाएँ जैसे कुंभक, श्वास को भरना है और रोकना है, जब दिल से संबंधित हम लोगों की बीमारियां हैं तो उसमें श्वास को नहीं रोकेंगे, कुंभक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। कुंभक मतलब रोकना, पूरक मतलब भरना, रेचक मतलब छोड़ना, तो योग की भाषा में जब हम लोग रोकते हैं उसको कुंभक कहा गया है।

0: तो दो तरह के कुंभक होते हैं, एक श्वास को बाहर निकालना, एक श्वास को अंदर भर
1: अंदर
0: के
1: लेना।
0: रोकना। तो ये दोनों कुंभक हम लोग उस उम्र विशेष में, जब हमें दिल की बीमारियां सता रही हैं, जब हमें हृदय रोग की संभावनाएं रहती हैं, तो हम उसका अभ्यास बिल्कुल ना करें, श्वास को भरें और छोड़ें।
1: डॉक्टर साहब, शारीरिक लाभ तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बुजुर्गों में एंजाइटी या नींद ना आने की भी समस्या काफी होती है बढ़ती उम्र में। तो योग और ध्यान उनके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सहारा देते हैं?
0: देखिए, जब हम लोग योग की अगली क्रियाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए होती हैं। धारणा भी वही करती है, ध्यान भी वही करता है। ध्यान हम लोग बहुत अच्छे से, जिसको मेडिटेशन आजकल कहने लगे हैं, तो वो उसमें हम लोग कोई जप करते हैं या हम कुछ प्राणायाम करते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो भ्रामरी का तरीका क्या होता है कि हम लोग धीरे से श्वास को भरते हैं, फिर हमने अंगूठे से कान को बंद कर लिया, और फिर जो हमारी चार उंगलियां मिली हुई हैं उनको आंखों पर रख लिया। तो जब हम वो चार उंगली आंखों पर रखते हैं, तो अब जो प्रकाश हमारी पुतलियों में पड़ रहा था, तो वो प्रकाश बंद हो जाता। तो ये अभ्यास प्रारंभिक अभ्यास है ध्यान के लिए। जब मनीषियों ने कहा है कि चले वाते चले चित्तम निश्चल निश्चले भवेत, अर्थात श्वास की गति जितनी तीव्र होगी मन उतना चंचल होगा। जब हम प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को साधते हैं, अपने श्वास को साध लेते हैं, तो उस समय हमें शांति का अनुभव तो होता ही है, हमारा मार्ग ईश्वर की ओर चलने के लिए प्रारंभ हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे सभी उन वरिष्ठ नागरिकों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो इस समय आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुन पा रहे हैं?
0: मैं ये सबसे प्रार्थना करूंगा कि योग का समय जो है वो प्रातःकाल रखें, वो ब्रह्म मुहूर्त में रखें, और अगर किसी कारण से, क्योंकि बहुत श्रोता हमारे मेट्रो सिटी में रहने वाले हैं, तो अगर उस समय संभव नहीं है, तो शाम का समय चयन किया जा सकता है। लेकिन एकमात्र मेरी ये प्रार्थना है कि अगर हम सुबह इसका अभ्यास करेंगे, तो उस समय हमारी ऑक्सीजन की प्रतिमात्रा अन्य गैसों के मुकाबले अधिक रहती है, और वो समय भी रहता है योग का जब हमारा मन ईश्वर की ओर अग्रसित होता है।
1: डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे बुजुर्गों के लिए योग के महत्वपूर्ण सुरक्षा नियमों और हेल्दी एजिंग के मंत्र को समझाया। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो श्रोता हैं आज के इस हमारे कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा जरूर बनाएंगे। स्टूडियो में आने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: तो अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित योग अभ्यास और सावधानियां। अरुण कुमार योग शिक्षक सहारनपुर से बातचीत कर रहे थे तुषार पराशर। तो शीतल बहन, योग बहुत ज़रूरी है हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि इससे शारीरिक संतुलन, जोड़ों के लचीलेपन और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभदायक है।
3: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसे कि योग हमारे बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैरों पर ज़्यादा समय तक खड़े रहें, किसी पर आश्रित ना हो और आत्मनिर्भर रहें, उनके हाथ पर इस कदर काम कर सके कि उनकी दिन की ज़रूरतों की चीज़ें हैं, खाना लेना, पानी पीना, और कई बार आपको जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना है या शौचालय जाना है, वो चीज़ें खुद कर पाएँ। क्योंकि क्या होता है, कई बार बुज़ुर्ग क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, नहीं ध्यान देते अपना, या घर वाले ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कहते हैं ना, बुज़ुर्ग खाट पकड़ लिए, ऐसे समय में तो उनकी बहुत सारी चीज़ें वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ श्रोताओं, आज हमारा विश्व हमारा देश विश्व बुज़ुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मना रहा है। इस दिवस का उद्देश्य है बुज़ुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा उन्हें सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। क्योंकि श्रोताओं, बुज़ुर्ग क्या होते हैं, हमारे लिए अनुभव, ज्ञान और संस्कारों के भंडार होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार और समाज के निर्माण में लगाया है, लेकिन बदलती जो जीवन शैली है, आजकल हम क्या देख रहे हैं, लोग बुज़ुर्गों का अपमान करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो तनाव में इतना रहते हैं, चाहे वो उनके काम का तनाव हो, आय का, मतलब घर में आय से संबंधित कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो वो गुस्सा क्या होता है, अपने बुज़ुर्गों पे निकल जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और ये किस प्रकार से हम करते हैं अपने बुज़ुर्गों के साथ, चाहे उनको शारीरिक हिंसा हो रही है, चोट पहुँचा रहे हैं या उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों से बचना है। और आर्थिक शोषण, जैसे उनकी संपत्ति या धन का अनुचित उपयोग नहीं करना है, क्योंकि क्या करते हैं, बुज़ुर्ग अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी आप उनकी जो बेचारे की जो बिचारों की जमा पूंजी होती है, वो अपने बच्चों के लिए एकत्रित करते हैं कि उनके भविष्य में काम आएगी, और अगर उनका दुर्व्यवहार होता है तो उनको वो चीज़ बुरी लगती है। तो इन चीज़ों से बचना है, हमें उनको सम्मान करना है। भले आपको लगता है कि उनकी बातें आपके काम की नहीं है,

0: उनको अच्छे से सुन लें, भले सोच विचार करके उनको बात में समझाएं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ये काम ऐसा कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हम अपने बुजुर्गों के साथ जो होने वाला जो दुर्व्यवहार है, जो हम जाने अनजाने में भी कर देते हैं, वो भी ना कर पाएं।
1: बिल्कुल शीतल बहन, और ये आजकल अक्सर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरेशन गैप कहते हैं ना
0: जी, बिल्कुल
1: उस वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वो सोचे कि कभी हम भी जो आज नौजवान हैं वो भी कभी बुज़ुर्ग होंगे, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, तो अब तो थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना चाहिए। और हमें अपने किसान भाई बहनों को सुनवाते हैं सुरेश चंद्र गोला की आवाज़ में ये प्यारा सी रागनी।

0: तो श्रोता सुन रहे थे सुरेश चंद्र गोला की आवाज में, ये रागिनी यौवन में भरपूर।
1: और हम कई योजनाओं के बारे में बता चुके हैं, और उनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत आम जनता को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 80% तक का कम कीमत पर दवाएं मिलती हैं। और इसकी बहुत सारी विशेषताएं ये हैं कि दवाइयों की उपलब्धता बहुत आसानी से कई केंद्रों पर है और किफ़ायती है, और दवाइयों के अलावा किफ़ायती दामों पर ये जन औषधि केंद्रों में मिल रही हैं। व्यापक नेटवर्क भी है इसका, और इसके बहुत सारे योजना के उद्देश्य हैं। सस्ती दरों पर गुणवत्ता पूर्वक दवाइयां उपलब्ध कराना है, स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना, जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देना है, क्योंकि जो आजकल दवाएँ बहुत महंगी हैं, वो यहाँ पर जन औषधि केंद्रों में बहुत ही सस्ती दामों पर और बहुत अच्छी क्वालिटी में सेम दवाइयाँ मिल जाती हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और जन औषधि केंद्र कहाँ कहाँ है उसके बारे में, दवाएँ दुकानें खोली गई हैं जन औषधि केंद्र कहाँ है, इसके बारे में आप आसानी से पता भी लगा सकते हैं। इन केंद्रों पर जेनरिक दवाइयां बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध होती है। आपके केंद्र कहाँ कहाँ पे, आपके निकटतम केंद्रों के बारे में बहुत आसानी से पता लग जाएगा आपको। और यदि किसी को पता है नहीं है कि जेनरिक दवाएँ क्या होती हैं, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि जो दवाएँ, जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता समान ही होती है, बट ये जो सस्ते मूल्यों पे मिल जाती हैं, इसको कहते हैं जेनरिक दवाइयाँ। जो इसके लाभ तो हमने आपको बता ही दिए, दवाइयाँ सामान्य बाज़ार मूल्य से 50% से 90% तक की सस्ती मिल जाती हैं यहाँ पे।
0: और श्रोताओं, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जन औषधि केंद्र से दवा खरीदने के लिए आपको किसी भी विशेष कार्ड या सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई दुकानदार या कोई भी ऐसा इंसान आपको बोलता है कि आपके पास ये कार्ड होना चाहिए या कोई आपके पास ये सदस्यता होनी चाहिए, तभी आप ये दवाई ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर डॉक्टर का पर्चा है, किसी भी डॉक्टर का या किसी भी अस्पताल का आपके पास पर्चा है, उस पर दवाइयाँ लिखी हुई हैं, तो आप जन औषधि केंद्र जाकर वो दवाइयाँ आराम से सस्ती दरों पर ले सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा आपके पैसों का नुकसान ना हो और अच्छी क्वालिटी की अच्छी दवाइयाँ आप आराम से ले सकें।
1: बिल्कुल। और कुछ जैसे आजकल जो बीमारियां हैं, जैसे जो आजकल आम हो गई, जैसे मधुमेह हो गया, हृदय रोग है, संक्रमण है, एलर्जी हो जाती है, इस तरह की दवाइयां भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं कम कीमत पर।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। समय शाम के 7 बजने को है। ठीक 7 बजे पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
3: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल

0: कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। समय शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम राम।
1: तो कुसुम बहन, अपने श्रोताओं को बता दें कि जैसे कि कृषि से संबंधित कार्यक्रम है, हमारे किसान भाई बहन भी सुन रहे हैं, तो उनसे ही संबंधित एक बहुत ज़रूरी बात है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में एक अत्याधुनिक मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, उसका भूमि पूजन किया गया है हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा, उनके द्वारा किया गया है। आइए पहले इनको सुनते हैं फिर।
2: आज का दिन विदिशा के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज भूमि पूजन किया है। यहाँ जो जमीन है 49 एकड़, इस पर प्रदर्शन के प्लाट लगेंगे। आधुनिक तरीके से खेती इसी सीजन में प्रारंभ करेंगे, खरीफ में ही। हमका बिल्डिंग विल्डिंग बनती रहेगी, लेकिन जो काम बिना बिल्डिंग के हो सकता है वो तो तत्काल करना है। और इसी खरीफ में हम किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। मेरे किसान भाइयों, खेती के तरीके बदलने पड़ेंगे, और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 2.5 एकड़ जमीन में भी अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग खेती ठीक से की जाए तो पूरे परिवार का ढंग से पेट पाला जा सकता है, आजीविका चलाई जा सकती है। और वो सारे सिस्टम का प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। ये केवीके कई तरह के नवाचार करेगा। देश और दुनिया में जो जो चीजें हो रही है वो यहाँ करके आपको दिखाएगा, ताकि आप देखें और सीखें। ये अलग अलग तरह की वैज्ञानिक सलाह आपको देगा, कौन सी समस्या क्या करें उसका समाधान यहाँ से आपको मिलेगा। और किसान भाइयों, हमने मोबाइल पर भी ये सूचना देने की एक व्यवस्था की है। भारतीय अपना भारत विस्तार सिस्टम बनाया है कि मान लो सोयाबीन की पत्तियां पीली पड़ गई, इल्ली लग गई, कहां पूछे तो फोन करके आप पूछेंगे तो तत्काल फोन पर ही आपको सूचना मिलेगी कि आप फलानी दवाई डाल दीजिए या फलानी चीज कर लीजिए। यह आपको जो रिसर्च दिल्ली में होगी, आज हमसे 113 संस्थान आईसीआर के जुड़े हैं, कभी यही कार्यक्रम नहीं हो रहा, और 731 जगह

कृषि विज्ञान केंद्र के लोग जुड़े हैं। जहां जहां नया नवाचार होगा, रिसर्च होगी, जो वैज्ञानिक शोध करेंगे उसकी तत्काल जानकारी किसानों को यहां से दी जाएगी, इस क्षेत्र के किसानों को। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है यहां एक एग्री क्लिनिक बनाया जाएगा, अस्पताल, जैसे आदमी का अस्पताल होता है ना, वैसे ही अब फसलों का अस्पताल यहां खोला जाएगा। इसमें आप अपनी फसल की बीमारी बताएंगे तो यहां से बताया जाएगा कि तत्काल ये उपाय कर लो ताकि पौधा बचाया जा सके। एक बात और होगी, यहां पानी अब बहुत कम है और इस साल अलनीनो आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया के मौसम विज्ञानी ये बता रहे हैं कि कई हिस्सों में पानी कम गिरेगा। अब कम पानी में अच्छी फसल कैसे करें, ये चुनौती हमारे सामने रहेगी। और इसलिए यहां कम पानी में तो जो नई नई पद्धतियां हैं कम पानी की, बाकी वो भी आपको बताई जाएगी। और आजकल एआई का काफी शोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों से पता लगा के कि क्या परिस्थिति बनेगी, उस हिसाब से सलाह देने का काम भी यहां पे किया जाएगा। एक हमने किसान सारथी एग्रीस्टैक और भारत विस्तार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। एक नंबर जरा सब नोट कर ले, मैं नोट करा रहा हूं, 1551-1555-261, ये नंबर है भारत विस्तार। जब आप इस पर फोन लगाएंगे तो उधर से भारती बोलेगी और पूछेगी कि आपकी समस्या क्या है, तो ये डिजिटल समाधान आप फोन पर पूछेंगे और आपको मिल जाए, इसकी कोशिश यहाँ पे होगी। यहाँ सभी किसानों को जिले के कृषि सेवाओं, योजनाओं और सलाह का लाभ यहाँ से मिलेगा। मेरे प्रिय किसान भाइयों, अब हम यहाँ ये भी करेंगे कि जो आपकी जरूरत है उस पर रिसर्च हो। मेरे किसान भाइयों, विशेषकर नौजवान किसान भाइयों से मैं कह रहा हूं, यहां खेती करना सिखाया जाएगा, कौशल विकास, यहां कई तरह के इनोवेशन होंगे। और इसमें जो कच्चा माल है तो उसमें दूसरी चीज कैसे बनाए, वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, इसका काम भी यहां शुरू किया जाएगा। यहां कोई नौजवान अगर स्टार्टअप चालू करना चाहेगा, कोई नया काम खेती का, तो उसको भी मदद दी जाएगी और उद्यमता को बढ़ावा देने का काम होगा। यहाँ एक कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेंगे, कई तरह की नई नई मशीनें आ रही हैं। अब किसान खरीद तो नहीं सकता, छोटा किसान हर मशीन कैसे खरीदे, और इसलिए यहाँ मशीन बैंक बनाएंगे। अब रेजर लेबरल की बात आ रही है, जरूरत पड़ेगी किसान करवाएंगे, ऐसा किराया इतना जो किसान सहन कर सके उतना देंगे और अपना काम हो जाएगा। खरीदने की जरूरत नहीं है, काम पड़े तो ले जाओ और जिसका जो नॉमिनल चार्ज है जो जरूरी है वो दे जाओ। और सबसे बड़ी बात है बीज, उत्पादन के लिए अच्छे बीज भी चाहिए, अच्छा खाद भी और पेस्टिसाइड भी चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, अब अच्छा बीज यहीं तैयार करवाया जाएगा ताकि भटकना ना पड़े। और उसके साथ साथ हम अभियान चलाएंगे कि किसान अच्छा बीज लगाएं, और बीज के साथ साथ भैया ये पेस्टिसाइड की बात अभी आपको बताई, और मेरी बहनों, नकली खाद, बीज और पाउडर पेस्टिसाइड बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पहचानने के लिए अभी आपको बताया गया है, पक्का बिल लो और QR कोड का उपयोग करो तो आपको पाउडर खराब नहीं मिलेगा, उसकी पहचान की भी यहां व्यवस्था की जाएगी कि कैसे पहचाने। तो अलग अलग तरह की गतिविधियां करनी पड़ेगी, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी मॉडल यहां बनाया जाएगा। 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ खेत में कैसे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है, उसका मॉडल भी हम यहां बनाएंगे ताकि किसान देखे और सीखे। ये कृषि विज्ञान केंद्र आपके लिए वरदान बनेगा, और जल्दी सीहोर में भी कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, रायसेन बाले को और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, ये केंद्र विदिशा जिले के ग्राम बेरखेड़ी जेतु में खोला जा रहा है, स्थापित किया गया। और इसकी जो खास विशेषता है वो ये है कि ये फसलों का अस्पताल होगा। इस केंद्र में एक विशेष एग्री क्लिनिक बनाया जाएगा, जहाँ किसान अपनी फसलों या मिट्टी से नमूने लेकर वैज्ञानिकों से सटीक इसका इलाज करा पाएंगे, और कोई सलाह होनी चाहिए तो वो भी ले पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एक लाइव प्रयोगशाला होगी, जैसे कि लेबोरेटरी कहते हैं। किताबों के बजाय किसानों को खेतों पर सीधे नई और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रदर्शन करके दिखाया जाएगा, जिससे कि वो उसका लाभ सीधे सीधे अपने खेतों को मतलब अपना लाभ इसका लाभ वो खेतों से ले पाएं। आधुनिक सुविधाएं होंगी, केंद्र पर 25 से अधिक प्रदर्शनी स्टॉल होंगे, और किसानों को मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि अभी मंत्री जी ने बताया कि 1-5-5-2-6-1 के जरिए कृषि से जुड़ी समस्याओं का वो समाधान पा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और ये कृषि विज्ञान केंद्र, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें। और देखिए, केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र ने जीविका से आगे बढ़कर तकनीक संचालित आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। किसानों की आय सुनिश्चित करने, लागत कम करने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले 12 वर्षों में कृषि विकास और किसान कल्याण की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम किसान मानधन योजना। और इसके अलावा उन्नत तकनीक और डिजिटल क्रांति ने भी बहुत कुछ आगे इस तकनीक को सशक्तिकरण दिया है। छोटे किसानों तथा मौसम का पूर्वानुमान लगाकर कृषि सलाह और बाजार की जानकारी मोबाइल के जरिए पहुंचाई जा रही है, और इस उन्नत तकनीक से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं, जैसे पीएम कुसुम योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, महिलाओं को कृषि में आधुनिक ड्रोन तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे खेती की निगरानी और जो उर्वरक है उनका छिड़काव आसान हुआ है। इसके अलावा उपज मूल्य और सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान फसलों का MSP उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना यानी 1.5 तय किया गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से विपरीत मौसम के कारण होने वाले नुकसान पर करोड़ों किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इस तरह से तमाम बहुत सारी चीज़ें, बहुत विकास हुआ है पिछले 12 वर्षों में। उसी से संबंधित एक आपको वार्ता सुनाते हैं, सरकार के 12 साल कृषि विकास के। इस वार्ताकार है अनिल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार।
2: दुनिया भर के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ कालखंड ऐसे रहे हैं जो केवल शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के लिए याद किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीता 12 वर्षों का दौर ऐसा ही एक कालखंड है। यह केवल एक प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जिसने स्वयं को नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई पहचान के साथ स्वयं को स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह उपलब्धि केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता के उस विश्वास का प्रमाण है जो बार बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त हुआ है। भारत जैसा विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश किसी नेतृत्व को लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेश दे, यह अपने आप में असाधारण एवं ऐतिहासिक घटना है। इस कालखंड की सबसे बड़ी विशेषता केवल विकास नहीं, बल्कि विकास और विश्वास का समन्वय है। नेहरू युग को आधुनिक भारत के निर्माण का काल कहा गया, तो वर्तमान युग को उस भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। इस कालखंड में केंद्र की राजग सरकार ने केवल सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि भारत किसी से कम नहीं है और भारत विश्व मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। इस कालखंड की सबसे विलक्षण विशेषता यह रही है कि सरकारी योजनाओं को केवल प्रशासनिक दस्तावेज तक नहीं रहने दिया गया, बल्कि उन्हें जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सफाई का विषय जो कभी सरकारी विभागों तक सीमित था, उसे राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया है। वर्तमान समय को भारत की गुम होती सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए भी

याद किया जाएगा। सदियों से उपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों, तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा मिली है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना के सम्मान का प्रतीक बना है। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और सोमनाथ जैसे तीर्थों का विकास यह संकेत देते

यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का संकट हो, G20 का नेतृत्व हो अथवा वैश्विक दक्षिण की आवाज़ उठाने का प्रश्न हो, भारत ने हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में खड़ा माना जाता था, लेकिन आज दुनिया इसकी आर्थिक प्रगति रफ्तार को आंकते हुए समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में देख रही है। इन 12 वर्षों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि शासन के केंद्र में पहली बार अंतिम व्यक्ति को रखने का गंभीर प्रयास दिखाई दिया है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। शासन की पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका सीमित हुई है। डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखा बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया है। भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश है। बीते 12 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि एक नए दौर में पहुंच गई है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता थी कि देश में अनाज की कमी न हो और कोई भी आदमी भूख से पीड़ित न रहे। आज किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र तक सीमित न रहकर किसान की समृद्धि, जोखिम सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बन गई है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियां फसल उत्पादन के बजाय किसान की वास्तविक आय, टिकाऊ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती जैसे पहलुओं पर केंद्रित है। इसी सोच से दलहन तिलहन मिशन, काटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, पीएम धन धान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोध नवाचार सबको व्यापक दृष्टि से जोड़ा जा रहा है। समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3,765.63 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने किसान की जोखिम सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 22 किस्तों के जरिए किसानों के खाते में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि और संरचना, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज चेन में निवेश ने उत्पादन, भंडारण और बाजार तक पहुंच को मजबूत किया है। दालें, खाद्य तेल और कपास जैसे क्षेत्रों को रणनीतिक प्राथमिकता देते हुए अलग अलग मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय दलहन तिलहन और काटन मिशन इस दिशा में बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन अभियानों का उद्देश्य है किसानों को उत्पादन के साथ साथ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य गुणवत्ता, बेहतर मूल्य और स्थिर आय भी मिल सके। रासायनिक तत्वों पर बढ़ती निर्भरता, मिट्टी की दुर्बलता और भूजल पर दबाव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्राकृतिक खेती को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज कर इनमें से लगभग 18 लाख किसानों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाए और चरणबद्ध रूप से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए। असमानता को दूर करने के लिए पीएम धन धान कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत लगभग 100 कम उत्पादन वाले जिले चिन्हित किए गए हैं जहां प्रति हेक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को जोड़कर उन्हें समग्र पैकेज में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके तहत सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज, उर्वरक,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर आप हमें सुन रहे हैं और कार्यक्रम है गजलों का समय। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:42 हो चुके हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और आखिरी गजल चित्रा सिंह की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गज़लों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
5: अच्छा
4: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
5: वो क्या है मम्मी जी?
4: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
5: आम भी ना मम्मी जी।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर विशाल सफाई अभियान चलाया। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शास्त्री नगर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू। दिल्ली पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। और दिल्ली सरकार जल्द ही एक पेड़ माँ के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी। और राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के तहत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर एक विशाल सफाई अभियान चलाया। इस जन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मां यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना था। इस अभियान में 15,000 से अधिक नागरिकों, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान यमुना के घाटों, नदी तटों और आसपास के सार्वजनिक क्षेत्रों की व्यापक सफाई की गई। 116 से अधिक मीट्रिक टन कचरे को इकट्ठा कर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: अभियान के दौरान एकीकृत किए गए कचरे को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारित किया गया, जबकि पूजा सामग्री और खंडित मूर्तियों का अनुकूल तरीके से विसर्जन सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता और जन भागीदारी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर यमुना पुनर्जीवन के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 8 ट्रस्ट स्कीमर, 28 नावे, 28 GCB मशीनें, 84 लोक निर्माण विभाग की मेंटेनेंस वैन और 1 एम्बुलेंस तैनात की गई थी। श्री सिंह ने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ यमुना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
8: दिल्ली सरकार जल्द ही एक पेड़ माँ के नाम दिल्ली मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में

0: अभियान की तैयारियों की समीक्षा की एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का पहला चरण 22 जून को डिजिटल शुभारंभ के साथ शुरू होगा। दूसरा चरण जुलाई के पहले सप्ताह में मेगा रिज वृक्षारोपण अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जुलाई के मध्य में तीसरा चरण होगा, जिसमें जन भागीदारी के साथ बड़े स्तर पे पौधारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लगभग 11,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। अभियान को सफल बनाने के लिए वृक्ष रथ चलाए जाएंगे। ये रथ कॉलोनियों, आवासीय परिसरों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त पौधे पहुंचाएंगे। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभियान के तहत ई फॉरेस्ट, ग्रीन ड्राइव पोर्टल, वृक्ष रथ, जियो टैग पौधारोपण और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाले पर्यावरण रक्षक प्रमाण पत्र जैसी पहले शुरू की जाएंगी, जिससे लोगों की भागीदारी और आसान तथा प्रभावी बनेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी के विकासपुरी में एक नए आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि यह आधुनिक सुविधा दिल्ली के नागरिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री संधू ने कहा कि यह सुविधा हजारों स्थानीय निवासियों के लिए जरूरी डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच और सुरक्षित तथा तेज प्रसंस्करण को सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी क्षेत्र से विधायक डॉ. पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि अब दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद संस्थानों में आधार नामांकन की सुविधाओं को जन्म पंजीकरण सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है।
2: आधार के माध्यम से नवजात शिशुओं के लिए नई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अब एनसीडीएस एनडीएमसी में नवजात शिशुओं के जन्म पंजीकरण के साथ आधार नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इससे नवजात बच्चों के जीवन के प्रारंभिक चरणों में ही विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं का जोड़ना संभव होगा।
0: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मेट्रो मंडे पहल के तहत आज मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जनकपुरी पश्चिम मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की और उसके बाद स्कूटी के माध्यम से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इस अवसर पर श्री सूद ने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया कि वे पेट्रोल और ईंधन बचाने के लिए मेट्रो और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को भी मेट्रो से सफर करने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है।
3: राज्य सरकार ने सोमवार को मेट्रो मंडे का दिन दिया है, अपने सब कर्मचारियों को एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने का भी निर्णय किया है। अगर उसमें से 25% पैसा वे लोग अपने मेट्रो कार्ड में डालेंगे, प्रधानमंत्री जी की जो अपील है कि हम ईंधन को बचाएं, इसको राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानते हुए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मैं हर मंडे सफर करता हूं।
0: केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
4: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। पहली उड़ान आज सवेरे लखनऊ से पहुंची। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया।

0: और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज शास्त्री नगर में स्थित एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मॉनसून से पहले तैयारियों का आकलन करने के लिए इस बाढ़ नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखे हैं, जिससे वर्ष 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
2: हमारा प्रशासन व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में हमारे अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी हैं 24 घंटे। तो सारे बैराज से, सारे यमुना के ऊपर में जो ब्रिजेस हैं, पीछे से कितना फ्लो में पानी आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना है, अपर स्ट्रीम में कितना है, तो ये हर घंटे की मॉनिटरिंग उस पर रहती है। तो हर स्थिति से सरकार हमारी तैयार है।
0: आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। आयुष मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से पहले कल विशेष योग कार्यक्रम के लाइव योग सत्र में 4,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विकसित भारत युवा सांसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल इसका उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह पहल युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से युवा नागरिकों को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की समझ प्राप्त होगी। दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों से देश और आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वन नेशन वन कार्ड योजना, लाखों लोगों को मुफ्त राशन और रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर लोगों, खासकर बुजुर्गों से ठगी करने वाले एक फर्जी बीमा गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी पहचान को छिपाते थे और खुद को विभिन्न बीमा कंपनियों का अधिकारी बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,00,000 रुपये नकद, 3 कीपैड मोबाइल और 7 एंड्रॉयड फोन बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान रहा 37.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में कल भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान रह सकता है 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अंत में लीजिए सुनिए।

0: बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर दिल्ली सरकार ने यमुना तट स्वच्छता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी के 28 प्रमुख घाटों पर विशाल सफाई अभियान चलाया। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहब सिंह ने शास्त्री नगर में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें हुई शुरू और राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पापा
2: लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों
7: कार्यक्रम में आपके साथ 40 से 45 मिनट तक करेंगे ढेर सारी बातें और इंतजार रहेगा हमें आपकी मैसेजेस का। जिंदगी से शिकायत क्या करें, ये तो वो आईना है जो हम खुद अपने आप बनाते हैं। मुस्कुराते रहो तो खूबसूरत लगती है और रोते रहो तो दर्द का बहाना बन जाती है।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी मुझे दिखा दे रास्ता। भाई अगर ज़िंदगी रास्ता ही दिखा दे तो फिर मुश्किलें ही क्यों, ऐसा हम सभी कहते हैं जानते हैं। लेकिन ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने हाथ में होता है कि हम कैसे जीना चाहते हैं।

फिलहाल आपने गीत सुना सांझ और सवेरा फिल्म से, और इस गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। आंखों में सपने सजाकर तो देखते हैं हम लोग, रात पर उन्हें हमें बुनना भी तो पड़ता है। जो मेहनत से सींचे जाते हैं वही सपने आसमान को छूते हैं, ये हम सभी जानते हैं, पर कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। खैर, सपनों से जुड़ा एक और अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

जी हाँ श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस चैनल से और समय और कार्यक्रम है गीत मालिका का और मैं हूँ आज कार्यक्रम में आपके साथ चेतना।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

आनंद फिल्म से अभी आपने गीत सुना मुकेश की आवाज़ में, और आप जुड़े हुए हैं गीत मालिका से और कार्यक्रम में खूबसूरत गीतों के नगमे जारी हैं आप सभी के लिए। आप भी हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पर ip.radio@gmail.com पर, हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल अगला गीत लेते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साथ में आशा भोसले।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका और अभी आपने गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। और कस्मों की बात अगर करें तो भाई कसम कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर खा ली जाए तो लगता है बिल्कुल सच है, लेकिन कई बार कस्में और वादे ना टूट भी जाते हैं। और इस पर कुछ लाइंस अगर कहना चाहूँ तो, तेरी याद की कसम भूल जाना मुमकिन नहीं, तेरी याद की कसम भूल पाना तुझे मुमकिन नहीं, लेकिन हर सांस के साथ साथ तेरा नाम मेरे साथ चलता है, और इससे ज़्यादा मोहब्बत को जताना मुमकिन नहीं।

जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कि ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है तो जो आपका हमसफ़र है, जो आपका दोस्त है, भाई गम जो है वो आधा आधा बांट ले, खुशी जो है वो बांट ले, तो फिर ज़िंदगी जो है ना वो आसान बन जाती है। ये गीत रहा आज़ाद फिल्म से किशोर कुमार और लता की आवाज़ में, संगीत दिया आडी बर्मन ने।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे।

ऊंट जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: कसम कसम से लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे।

आशा भोसले की आवाज़ में, साथ में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने गीत सुना। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीत आप पसंद कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना ना भूलें, हमें इंतज़ार रहता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका,

जी हाँ दोस्तों, रूठना भी उसी का हक है जिसे भाई मनाना ज़रूर आता हो, वरना खामोश फासले बढ़ जाते हैं और रिश्ते यूं ही टूट जाते हैं। तो रूठे भी तब जब मनाने के लिए कोई हो या फिर आपको मनाना आता हो।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म अनजाना से लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और कार्यक्रम गीत मालिका है। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात की 8:40 हो चुके हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत लता मंगेशकर की और मुकेश की आवाज़ में ही। और ये जो गीत है, उम्मीद करते हैं आप सभी पसंद करेंगे। इस गीत को लिया गया फिल्म अनाड़ी से। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को इस कार्यक्रम से अनुमति दें। हम आपसे मिलेंगे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 8:45 पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूट

0: स्थिति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों

0: में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
3: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार।

0: प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
3: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
1: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. We have a report.
4: During the delegation-level talks, 11 agreements were signed in the fields ranging from labor migration, defense, digital technologies, higher education, audiovisual production, establishment of an AI chair, quantum communication, cooperation in student exchange programs, and tourism development. Agreement was also signed on scientific cooperation between the Indian National Science Academy and the Slovak Academy of Science. Both the countries also agreed to set up joint working group for

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर इवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। DRDO ने अंदरून मुल्क तैयार तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसराइल ने कहा है कि अमरीका ईरान अमन समझौते के बावजूद उसकी फौज लबनान, शाम और गजा में अपने ठिकानों पर गैर मुयना मुद्दत तक तैनात रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप में आज अमरीका के एटलांटा में ग्रुप एच मुकाबले में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए। ब्रैतिस्लावा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब रॉबर्ट फिको के दरमियान बातचीत के बाद बहुत से शोबों में इन माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। फरीकैन ने एक समाजी तहफ्फुज़ के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने से भी इत्तेफाक किया। यह माहदा भारत और स्लोवाकिया के दरमियान आमद रफ्त में मसरूफ काम करने वाले पेशावर अफराद की बहबूद और समाजी सलामती को तहफ्फुज फराहम करेगा। बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया ने अपने ताल्लुकात को जामे शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई तावुन गहरे बाहमी एतमाद और जामे तब्दीली की एक मिसाल है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि AI का मुस्तकबिल न सिर्फ इख्तिरा पर मबनी होना चाहिए बल्कि यह एतमाद, जिम्मेदारी और इंसानी वकार पर भी मबनी होना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मुफाहमतनामे पर भी दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और मसनूई जहानत के मैदान में गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मुस्तकिल रुकन की हैसियत से शामिल किया जाना चाहिए। दोनों लीडरों ने भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती माहदे को जल्द से जल्द नाफिज करने के तय काम करने से भी इत्तेफाक किया, जो तवक्को है कि

हमें इक्तसादी मसरूफियात को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। बाद में सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि वजीर आजम फीको के साथ उनकी मीटिंग भारत स्लोवाकिया दोस्ती के लिए एक इंतहाई मखसूस लम्हा है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत में ऑटोमोबाइल्स, रेलवेज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और माहौल साजगार टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तआवुन का अहाता किया गया। पेश है एक रिपोर्ट।

0: शेयर का क्याम, क्वांटम मवासलात, तालिब इल्मों के प्रोग्राम में तआवुन और सियाहत की फरोग के शोबे शामिल हैं। भारतीय कौमी साइंस एकेडमी और स्लोवाकिया की एकेडमी ऑफ साइंसेज के दरमियान साइंसी तआवुन से मुतालिक समझौते पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने इंसदादी दहशतगर्दी और कौंसिल सतह के मुजाकरात के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। नई दिल्ली से रूपेश राठौर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: ब्रेतिस्लावा में सदारती महल में स्लोवाकिया के सदर पीटर प्लेजरिनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। दौरे के दौरान दोनों लीडरों ने पंचतंत्र फोटो नुमाइश देखने से कबल महल के ग्राउंड में योगा का एक खसूसी मुजाहरा देखा। महल के बाहर भारतीय नजाद अफराद की बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। 52वां G7 सरबरा इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों G7 मुल्कों के रहनुमाओं का बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम करेंगे। भारत, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, कीनिया और मिस्र को इस सरबरा इजलास में शराकतदार ममालिक के तौर पर मदु किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की सदारत के तहत G7 सरबराह इजलास ने रवां साल के लिए कुछ कलीदी तरजीहात का इंतखाब किया है। इनमें मैक्रो मईशत के बढ़ते हुए अदम तवाजुन में कमी करना, मुश्तरका तरक्की को फरोग देना और बैन अल-अक़वामी शराकत दारी की तजदीद करना शामिल है। तवक्को है कि तबादला ख्याल में हसास और मादनियाती अकदारी सिलसिले को मुस्तहकम करने, छोटे बच्चों को ऑनलाइन तहफ़ फराहम करने और अहम जोग्राफियाई सियासी बहरान को हल करने पर भी गौर वख़ौज किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म फ्रांस का ये दौरा सदर इमैनुएल मैक्रों की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये इजलास आलमी रहनुमाओं से मिलने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां वो सिर्फ भारत के मामलात ही नहीं बल्कि आलम जुनूब के भी मामलात पर बातचीत कर सकेंगे। भारत में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में लगातार शिरकत अमन, सलामती, तरक्की और पायदार माहौलियात के शोबे में भारत के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी करती है। फ्रांस के एवियान से अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से मुल्क में तैयार करदा लंबी दूरी तक जमीन पर वार करने वाले क्रूज मिसाइल LRLACM की आजमाइशी परवाज कामयाबी से अंजाम दी। इस क्रूज मिसाइल के सभी जैली निजामों के मुल्क की मुख्तलिफ DRDO लेबोरेटरियों और भारतीय सनअती शराकतदारों के जरिए तैयार किए जाने के साथ ही ये मुकम्मल तौर पर मुल्क में तैयार किया गया मिसाइल है। वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल ने मिशन के सभी मकासिद हासिल किए और भारत की लंबी दूरी तक दुरुस्त निशाने पर वार करने की अहम टेक्नोलॉजी पर मबनी सलाहियत को साबित कर दिया। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब तजर्बा आत्मनिर्भर भारत और एक मजीद मजबूत कौमी दिफाई इको निजाम की जानिब एक और अगला कदम है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने LRLACM की कामयाब आजमाइशी परवास पर DRDO टीम और सनअती शराकतदारों को मुबारकबाद दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क के शहरी हवाबाजी के शोबे में एक नुमाया संगे मील तय करते हुए आज उत्तर प्रदेश के जिला जेवर में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाजों का आगाज हो गया। आज सुबह लखनऊ से आने वाली इफ्तिताही परवाज के साथ इंडिगो नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: यह हवाई अड्डा दिल्ली के वसी इलाके और मगरबी उत्तर प्रदेश को मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ता है। यह आलमी मेयार का हवाई अड्डा मुसाफिरों को जदीद और जामे तिजारती सहूलियात और खिदमात फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इब्तदाई मरहले में यहां से घरेलू परवाजें चलाई जाएंगी, नीज आइंदा महीनों में बैन अल-अक़वामी परवाजें चलाए जाने का भी मनसूबा है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा कि पहले मरहले में यह हवाई अड्डा 1,20,00,000 मुसाफिरों को हवाई सफर की सहूलियात फराहम करेगा, जो कि हवाई अड्डा मुकम्मल होने के बाद तवक्को है कि 7 करोड़ मुसाफिर सालाना यहां से सफर कर सकेंगे। आज पहली परवाज के जरिए सफर करने वाली एक मुसाफिर ने मीडिया से बातचीत करते हुए हवाई अड्डे के आगाज पर खुशी का इजहार किया। मुस्तकबिल में मुसाफिरों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दस्तियाब होंगी जो बजट और सफरी खिदमात को पूरा करेंगी। इस हवाई अड्डे पर फजाई माल बर्दारी की खसूसी सहूलत भी दस्तियाब होगी जो इब्तदाई तौर पर 2 लाख मेट्रिक टन सालाना होगी जिसे बाद में 15 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाने का

0: सूबा है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: अमरीका और ईरान की जानिब से मगरबी एशिया जंग को खत्म करने के लिए एक माहदे के ऐलान करने के कुछ घंटों बाद ही इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स ने ऐलान किया है कि इसराइली फौज सरहदों पर अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगी। इसराइल की सलामती की पॉलिसी की बात करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि आईडीएफ इसराइली शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए लबनान, शाम और गजा में सलामती जोन्स में गैर मुहैया मुद्दत के लिए तैनात रहेगी। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इसराइल ने फौजों की वापसी के लिए बैन अल-अक़वामी वक्त की मुद्दत पर अमल करने के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इनकार से बराह रास्त मुत्तला किया। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई खत्म करने और आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत का खैर मकदम किया है। आबनाए हुरमुस एक तंग बहरी रास्ता है जिसे आलमी तेल सप्लाई के पांचवें हिस्से की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ये उम्मीद करता है कि इस मुफाहमत पर अमल दरामद होने से खित्ते में अमनो इस्तेहकाम बहाल करने में मदद मिलेगी और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमद रफ्त हो सकेगी। अमन के इस माहदे पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमत ने कहा है कि सभी रिफाइनरियां आला सलाहियत के साथ काम कर रही हैं, उनके पास खाम तेल के वाफिर जखायर मौजूद हैं और पेट्रोल और डीजल के खातिर ख्वाह जखायर को बरकरार रखे हुए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहतरमा सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बारे में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए ये इंकशाफ किया। फर्टिलाइजर के महकमे में ज्वाइंट सेक्रेटरी वंदना प्रियाशी ने कहा कि मुल्क में फर्टिलाइजर्स का जखीरा मामूल के मुताबिक है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा कार्गो दिशा बहिफाजत आबनाए हुरमुस पार कर गया है। तवक्को है कि जुमेरात को ये दहेज बंदरगाह गुजरात की दहेज बंदरगाह पहुंच जाएगा। रेलवेज की वजारत ने शिमाली रेलवे की अंबाला डिवीजन के लिए 201 करोड़ रुपए मालियत के कवच प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कवच मुल्क में तैयार करदा खुदकार रेल तहफुजाती निजाम है जिसे ऑपरेशनल सेफ्टी को मजीद बेहतर बनाने के लिए वजा किया गया है। रेलवे की वजारत ने गुजरात में अहमदाबाद डिवीजन के लिए भी 140 करोड़ रुपए के कवच प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अहमदाबाद के साइबर जराइम से मुतालिक महकमे ने नीट इम्तिहान में हुई धोखाधही में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्जाम में राजस्थान और बिहार से 3 अफराद को हिरासत में लिया है। अहमदाबाद के साइबर जराइम के महकमे में ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस शरद सिंघल ने मीडिया को बताया कि राजस्थान से हिरासत में लिए गए 2 मुलजिमान जाली सोशल मीडिया चैनल चला रहे थे जिनमें वो नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान के पर्चे बेचने का दावा कर रहे थे। वजारत दिफा ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए रियासती डायरेक्टोरेट्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। इस फैसले से मुल्क में एनसीसी रियासती डायरेक्टोरेट्स की कुल तादाद बढ़कर 19 हो गई है। वजारत ने वाजे किया है कि नए डायरेक्टोरेट्स की तश्कील से मरकजी सतह पर मुनाकिद होने वाले बाकायदा कैंप्स जैसे योम जमहूरिया की परेड का कैंप और ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप में शिरकत करने वाले कैडेट्स की तादाद में इजाफा होगा। मुल्क के हसिस बाजार के अहम इशारिया आज के कारोबारी सेशन के अख्तिताम पर तकरीबन 1% इजाफे के साथ बंद हुए। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के ऐलान के बाद सरमायाकारों का रुझान मुस्बत हुआ है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको में ग्रुप एफ के मैच में स्वीडन ने ट्यूनेशिया को 1-5 5 गोल से करारी शिकस्त दी। आज के दीगर मैचों में अमरीका में ग्रुप एच में स्पेन का मुकाबला कैबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने आज अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हुए इसे जामे शराकतदारी की शक्ल दी है। फरीकैन ने लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा समेत कलीदी शोबों में बहामी तावुन को तौसी देने की गरज से 11 समझौतों पर भी दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हम मनसब ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने से भी इत्तेफाक किया। 52वां G7 सरबराह इजलास आज रात फ्रांस के शहर एवियान में शुरू हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। डीआरडीओ ने अंदरून मुल्क तवील दूरी तक मार करने वाले लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे ही आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अपने आपको, थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जो अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहाँ तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको इसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा, जैसे मौसम के बदलते हुए उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो किसी हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
1: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो आप प्रश्न है उसमें ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी ज़रूर रखें, क्योंकि पानी अगर हम बीच बीच में ज़्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। तो आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियाँ।
2: हाँ, हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है। और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए जी।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफ़ी कम हो जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे सांस धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका।
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
0: जी,
5: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है
0: जी, बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
0: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
0: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
1: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
0: जी,
1: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
0: वो
1: उसको हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे
6: जी। धन्यवाद। मैं राकेश कोटखाई शिमला।

0: और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या आपकी को कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए।
1: बताइए।
2: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है? और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है? और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना। और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात
2: है।
1: में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि
1: जी
2: आपको कुल्ला नहीं
1: नहीं
2: करना
1: करना
2: पानी
1: है।
2: पीने से
1: जी जी
2: पहले,
1: जी
2: तो वो लार आपके लिए, उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
3: हेलो, नमस्कार। मैं मुकेश जी, दोनों
1: जी नमस्कार
3: विशेषज्ञ, मेरा नाम नमस्कार है।
1: जी, सवाल पूछिए।
3: कि
1: शायद कहीं फोन लाइन
3: प्रॉब्लम
1: में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
2: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है,
1: जी
2: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है।
1: जी और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में
4: हाँ
1: बहुत बहुत
4: जी,
1: स्वागत है।
4: मुकेश कुमार जी,
1: जी, क्या सवाल है
4: मुकेश
1: आपका?
4: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
4: डॉक्टर डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
2: नमस्कार नमस्कार,
1: नमस्कार,
2: नमस्कार,
1: नमस्कार, नमस्कार।
4: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है,
1: जी
4: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में।
1: जी
5: जी
4: और योगा करने से वो ये होगा
5: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफ़ी लाभदायक है। और बैठ करके कटिसौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
1: जी,
2: प्राणायाम और आसन।
1: जी,
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: जी,
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग हैं।
1: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
6: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर।
1: जी बताइए
6: सर, जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए, स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान

0: होना चाहिए। दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
1: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि है ना, वो तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या लंबे, देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
2: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
1: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर 2 घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
2: जी।
1: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। 2-3 तरह की अब तो आंखों की दवाइयाँ आ गई हैं। और जहाँ तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, 1 घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातःकाल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
2: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोग नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, सवाल पूछिए।
3: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
2: प्रधानमंत्री शुभकामनाएं जी। सवाल पूछिए।
3: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
4: धन्यवाद रशीद जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी ना लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज़्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले भी बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
2: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी ज़रूरत है कर सकते हैं?
1: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
2: जी,
1: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो है ध्यान का, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
2: जी,
1: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
2: बिल्कुल करेंगे तो होगा।
1: हाँ।
2: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
4: देखिए डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
2: जी।
4: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
2: जी।
4: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज़ भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना बहुत तेज करने लग जाते हैं, उनका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है।
2: जी जी जी।
4: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
2: जी।
4: और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
2: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
5: सर हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
2: बहुत अच्छा सवाल,
1: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेटकर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपालभाति नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम हैं जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
4: इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
2: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
6: नमस्कार।
2: नमस्कार।
6: मैं धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
2: धन्यवाद।
6: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो वे बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है, इस बारे में आप बताएं। धन्यवाद।
2: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
1: घर घर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए, जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें, और आसन ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूँगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है उन पर नियंत्रण करना।
2: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे ज़रूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना ज़रूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
4: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
2: जी,
4: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है, तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
2: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी।
7: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग एक तो बहुत गणित कठिन है और जो है ये दंड बैठक ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
4: जी रामाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें क्योंकि जब शरीर के अंदर जानी नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज़्यादा लाभ देगा।
2: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
8: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कोई ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल्स रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर हम लोगों ने ये इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या? या फिर या 10 दिन या एक महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
1: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी ज़रूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके उस संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
2: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
1: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
2: कमल जी बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
4: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है जो इस विशेष नस बोलते हैं उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी किया करें, जैसे बदल बदल के क्या करें। और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज़्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं हैं तो उसकी याददाश्त पर असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फ़ायदेमंद रहेंगे।
2: और श्रोताओं घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपनी सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारी को बधाई दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। रेल मंत्री ने कहा कि पुनर्विकास कार्य के दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और रेल का संचालन भी प्रभावित न हो। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और काबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

TRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। सुनते हैं सुमिता दत्ता की आवाज में ये गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनीशा रे का राग बागेश्री में गायन।
1: नमस्कार, मैं अनीशा रे, मैं राग बागेश्री प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धन्यवाद।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनिशा रे का राग बागेश्वरी में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वे 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले

0: कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आपके दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात की खामोशी में जब यादों के दीप जलते हैं ना, तो दिल के कोने कोने में कई अनकहे किस्से पलते हैं। दोस्तों, कुछ लोग पास होकर भी दूर रह जाते हैं और कुछ दूर होकर भी हर धड़कन में बसते हैं। तो देरी ना करते हैं इस कार्यक्रम में और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आशा भोसले और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म अंदाज़ अपना अपना से। इस गीत की फरमाइश की थी चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से प्रियाशी, एस पी सिंह, बेबी, वेदांशी और नीलम ने।
1: और श्रोताओं, आज प्रिया ही आपके साथ नहीं है, मैं हूँ आपके साथ चेतना। हम दोनों हैं आज आपके कार्यक्रम में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ हुई है प्रिया।
0: बिल्कुल
1: और आप बिल्कुल मस्ती के मूड में हैं आज प्रिया और मैं भी आके आपको ज्वाइन कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम बहुत रोचक रहेगा और बहुत बेहतरीन नगमे सुन सकेंगे, अपनी पसंद के, कुछ हमारी पसंद के भी होंगे, है ना?
0: तो
1: तो हाँ,
0: देरी नहीं करते, गाना सुनाते थे और
1: ठीक है
0: अपनी
1: जी
0: बात कंटिन्यू रखते हैं।
1: जी

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बेचारा से। प्यार में खोई आंखों का भी अलग ही हाल होता है। हर चेहरे में बस एक ही चेहरा नजर आता है, चाहे लाख छुपाए दिल की बातें, नजरें अक्सर सब कुछ बता जाती है। दोस्तों, इस गीत की फरमाइश की थी एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायणा खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक और परी साथ ही स्वाति प्रयाग चौधरी ने।
1: और बहुत अच्छी शायरी प्रिया तुमने कही कि जैसे अभी तुमने गीत प्ले किया खोई खोई आंखों में, तुम आंखों के ऊपर कुछ कहना चाहोगी क्या? आंखें वाकई में बोलती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, अगर जो हमारे लफ्ज नहीं बोल पाते ना चेतना, वो हमारे आंखें बातें कर
1: हाँ
0: पाती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और समझने वाले की बस ये होनी चाहिए, एक पार की नज़र होनी चाहिए, तो आंखें भी बोलती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने लिसनर हमें सुन रहे हैं वो भी इस पे कोई ना कोई टिप्पणी या फिर कमेंट करने की पूरी कोशिश करें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का कि वाकई में हमारी जो राय है कि आंखें बोलती हैं, आंखें अक्सर बातें करती हैं, बोल नहीं बोले जाते लेकिन इशारों इशारों में कुछ तो बातें होती हैं।
0: चाहे वो हमारा गुस्सा हो चाहे प्यार हो, सारी
1: बिल्कुल
0: बातें ना हमें बिना
1: आंखें।
0: बोले बिना हमारी आंखें बयां कर देती हैं।
1: तो आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से, कार्यक्रम है फिल्म संगीत का, हमें आपके साथ प्रिया और चेतना।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सुहाग से। दोस्तों, प्यार किताब से नहीं सीखा जाता, ये वो है जो जिंदगी को एक सबक देता है और दिल लगाना सिखाता है। ये रिश्तों का अहमियत बताता है और अपनों के आगे झुकना और प्यार करना सिखाता है। इस गीत की फरमाइश की थी गांव लोहागढ़ ठाकुरा से स्वर सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल और अफीराज सिंह ने।

नींद से अब क्या शिकवा करे दोस्तों, नींद से अब क्या शिकवा करे दोस्तों, जब ख्वाबों से ज़्यादा किसी की याद प्यारी लगने लगे।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दिल से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज हुसैन, रिफाकत हुसैन ने। दोस्तों, लोग चांद में खूबसूरती ढूंढते हैं, हमने तो अपने महबूब में चांद देखा है। वो जब भी नज़र उठाकर देख ले, लगता है आसमां जमीन पर उतर आया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, GRM 810 पर। आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल का पता नोट कीजिए, IP रेडियो दिल्ली @gmail.com।

दोस्तों कहते हैं ना, चांद सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन मोहब्बत में पड़े दिल के लिए उसके महबूब से बढ़कर कोई चांद नहीं होता। कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मिस्टर आशिकी से, आशिक से। इस गीत की फरमाइश की है अकोला से विजय वडालकर, लता और अजिंक्य, साथ ही गन्नौर से मोहम्मद कमर ने। दोस्तों सावन की बारिश और दिल की चाहत दोनों का अपना ही रंग होता है, एक धरती को महका देता है और दूसरा जिंदगी को।

हरिहरन की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म द हेक से। इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल, यश सवी, साथ ही चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सरोदर, नारायण, दिनेश और कालेंद्री लहरे ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म करसेज। गीत की फरमाइश की थी महाराज से सहदेव दामोदर, शशिकला सुमेत और साना पवन पाटिल ने।

0: मैं तुझे प्यार।
1: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं ये गीत फिल्म प्रेम कहानी से, इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।
0: हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो

0: इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर। हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी कल सम्मेलन में एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए। श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस में मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आर्थिक साझेदारी को और गहरा करने पर सार्थक बातचीत भी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक, वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। और क्रिकेट में दांबुला में खेली जा रही 50 ओवरों की त्रिकोणीय श्रृंखला के एक रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया है। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान को हराना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Kiran Jha. India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। रात के 12:10 हो चुके हैं और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आज की ये महफिल है उस गीतकार के नाम जिसने अपने शब्दों से हिंदी फिल्म संगीत को एक नई मिठास दी, एक नए मुकाम तक पहुंचाया, एक नई दिशा प्रदान की, और वो गीतकार हैं गौहर कानपुरी। गौहर कानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1932 को कानपुर में हुआ था। बचपन से ही इन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था और जैसे जैसे ये बड़े होते चले गए, इनकी कविताओं के माध्यम से इन्हें एक पहचान मिलने लगी और युवा होते होते इन्होंने निश्चय कर लिया कि ये फिल्मों में गीतकार ही बनेंगे।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म प्यार की बाजी से। गायक थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी और गीतकार थे गौहर कानपुरी। तो हम बात कर रहे थे गौहर कानपुरी पर। गौहर कानपुरी का जो फिल्मी सफ़र था वो वाकई में आसान नहीं था। उन्हें भी मुंबई आकर बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा था, तब जाकर उन्हें 1967 में फिल्म प्यार की बाजी में एक गीत लिखने का मौका मिला। गौहर कानपुरी ने अपने संघर्ष, मेहनत और प्रतिभा के बल पर फिल्मी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया। इन्हें कई वर्षों तक एक उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 1975 में बप्पी दा ने इन्हें फिल्म जख्मी में गीत लिखने का अवसर दिलवाया। इस फिल्म के सभी गीत इन्होंने ही लिखे थे। आइए सुनते हैं इस फिल्म से इनका लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, गौहर कानपुरी की प्रतिभा को पपीदा ने ही अच्छे से पहचाना था और शायद यही वजह थी कि जख्मी फिल्म के बाद गौहर कानपुरी ने ज़्यादातर गीत उन्हीं फिल्मों के लिए लिखे जिनमें पपीदा ने संगीत दिया था। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक गीत फिल्म शिक्षा से।

श्रोताओं, गौहर कानपुरी ने 120 फिल्मों के लिए 300 से भी अधिक गीत लिखे थे। उनके लिखे हुए गीतों में न केवल प्रेम था बल्कि संवेदनाएं भी झलकती थी। उनके लिखे गीतों में सुनने वाले को एक उम्मीद नज़र आती थी और साथ ही इंसानी रिश्तों की मिठास भी उनके गीतों में झलकती थी। सुनते हैं गौहर कानपुरी का लिखा यह गीत फिल्म दूल्हा बिकता है से। गायक हैं अनवर और मीना पाठकी, संगीत दिया है बप्पी लाहिरी ने।

श्रोताओं कहते हैं कि फिल्मी गीत केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं होते, बल्कि वे समाज की भावनाओं का आईना भी होते हैं। गौहर कानपुरी ने अपने गीतों के माध्यम से प्रेम, विरह, आशा और जीवन के अनेक रंगों को अभिव्यक्ति दी। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं, फिल्म बहारों की मंजिल से, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं कहते हैं कि एक बेहतर गीत न केवल फिल्म में बल्कि दर्शकों और श्रोताओं के दिलों में भी अपनी जगह बनाता है। एक दिल को छू लेने वाला गीत किसी की आत्मा को भी झकझोर कर रख सकता है। ऐसे ही गीतकार थे गौहर कानपुरी। इनका लिखा ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो से। गायक हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा और साथी।

श्रोताओं, गौहर कानपुरी ने अपने कार्यकाल में अनेकों फिल्मों में बेहतर से बेहतर गीत लिखे। उनकी प्रमुख फिल्मों में जख्मी, सावन को आने दो, जान तेरे नाम और बाजीगर जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के गीतों ने श्रोताओं के बीच अपना एक विशेष स्थान बनाया। सुनते हैं फिल्म बाजीगर से ये गीत अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ में।

श्रोताओं, आज भी जब पुराने गीतों की बात होती है तो गौहर कानपुरी का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। साहित्य और संगीत की दुनिया में ऐसे रचनाकार कभी विदा नहीं होते। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव जीवित रहते हैं और हमारे बीच मौजूद रहते हैं। फिलहाल श्रोताओं, आइए सुनते हैं गौहर कानपुरी का लिखा ये गीत फिल्म आजा सनम से, अनुराधा पौडवाल की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, 29 जून 2002 को गौहर कानपुरी का निधन हो गया था। हालांकि आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनके लिखे हुए गीत आज भी करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में गूंजते हैं। आइए हम उस महान गीतकार को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, और इसी के साथ सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम का अंत होता है। गौहर कानपुरी के लिखे हुए इस गीत से, जो कि है फिल्म जान तेरे नाम से, कुमार सानू की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियों पहुंच गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज एवियों पहुंचेंगे। वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में G7 देशों, साझेदार देशों, विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। बाद में वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत

0: जनता को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार विश्व स्तरीय संस्थान विकसित करने, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4-5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart, Robert Fico, in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." He said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility.
1: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर एमओयू को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
2: President of Slovakia Peter Pellegrini has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross, First Class, upon Prime Minister Modi. Mr. Modi expressed gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor. He said the award is a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring friendship between India and Slovakia. Prime Minister Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. He will be formally welcomed by the French President Emmanuel Macron upon arrival. Meanwhile, the 52nd G7 summit is underway in Evian, where leaders of the world's leading economies are discussing major global challenges. President Macron is

गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना फिल्म आर पार से। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मुनीम जी से, गीता दत्त और साथियों की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा

चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें बीएमएल मुंजल पुरस्कार समारोह में कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्राचीन और जीवंत सभ्यता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्रगति का लाभ केवल देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय खेल बोर्ड राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनके प्रशासनिक वित्तीय तथा नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दे, संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एवियों पहुंचेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे एक विशेष सत्र में शामिल होंगे जिसका विषय है नई साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीस्तो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: इस बीच स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के मोनाको के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, निवेश के अवसरों और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक

0: मुद्दे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पदों के लिए योग्य नामों की सिफारिश करेगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। केप वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस नतीजे को अब तक टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 से 5 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। India and Slovakia have elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also yesterday inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, "Elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future." In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said, both the countries have signed a letter of intent in the field of defence sector.
2: AI ka bhavishya keval innovation se nahi, balki trust, responsibility aur human dignity par aadharit hona chahiye. Raksha sahyog, hamare gehre aparichit vishwas aur strategic convergence ka pramaan hai. इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: President of Slovakia Peter Pellegrini has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Modi. Mr. Modi expressed gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour. He said the award is a tribute to the 1.4 billion people of India and to the enduring friendship between India and Slovakia. Prime Minister Modi is arriving in Evian, France today to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. He will be formally welcomed by French President Emmanuel Macron upon arrival. Meanwhile, the 52nd G7 summit is underway in Evian, where leaders of the world's leading economies are discussing major global challenges. President Macron has hosted a working dinner on the theme, Working Together to Address Major International Challenges. Earlier, he formally welcomed the leaders of the G7 countries, including US President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer. European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Antonio Costa are also attending the summit. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Monaco's Minister of State, Christophe Mermand, Minister of Foreign Affairs and Cooperation Isabella Barro-Amadi, and Minister of Finance and Economy Frederic Cotolarada in France yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said the discussions focused on strengthening bilateral trade, exploring new investment opportunities, and deepening economic cooperation between India and Monaco. Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defense Ministry said the

0: इसी के साथ श्रोताओं, गजलों और गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: भूपेन हजारिका को आवाम का शायर कहना कितना जायज है। जिस व्यक्ति जिस फर्द की बात करते हैं लगता है वो खुद कह रहा है। उसके लबों से निकली हुई आह अपने आप शायर के होंठों का मिसरा बन जाती है। उसमें कोई फासला महसूस नहीं होता। हाँ, असमिया से हिंदी होने तक जरूर कुछ फासला आ गया है। काश भूपेंदा की जबान के वो छोटे छोटे नुएंसेस अनुवाद हो सकते। जैसे वो ब्रह्मपुत्रा में नाव लेके जाते हुए मांझी की बात करते हैं।

ब्रह्मपुत्र को वहां लोकगीतों में लोहित कहते हैं। लोहित तो सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन सागर सारे साहिल छू सकता है। रमैया मांझी सब जगह पहचाना जा सकता है, और उसकी बावली रमणी वो तो कहीं भी पहचानी जाएगी। भूपिंदा उन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बजे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभू।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से अन्नमाचार्य की रचना नारायण ते नमो।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। सुबह के 4:54 और 5 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर बाद ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुन सकते हैं। 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस का, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 88। 6:55 पर आप संस्कृत न्यूज सुन सकते हैं। 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। 7:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गीतों भरी। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: 8:30 का समय होगा उर्दू समाचारों का, और 8:45 पर आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे, स्वर गंगा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जहां वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संकट, बच्चों से जुड़े मुद्दों, संगठित अपराध और अवैध धन प्रवाह को रोकने जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता को समर्पित है। इससे पहले भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। डिजिटल इंडिया भाषिणी और सरकारी ई मार्केट प्लेस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य सरकारी क्रय सेवाओं को भारतीय भाषाओं में अधिक सुलभ बनाना है। इस पहल के माध्यम से 22 भाषाओं सहित अन्य भारतीय भाषाओं में जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने कल मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह जांच समिति बनाई है। SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान ने लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के अधिकारियों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगी। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिनों की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड के लिए खोज सह चयन समिति का गठन किया है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के पदों के लिए योग्य

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन।

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें, तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांग पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।